मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 मई सन 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने

0: पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कर घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षत वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां, 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इसराइली सैनिक घायल हो गए। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आजादी हर व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार और अनमोल उपहार है। यह हमें अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने, अपने सपनों को पूरा करने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने की शक्ति देती है। भारत की आजादी अनेक वीर सपूतों के बलिदान का परिणाम है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आजादी केवल अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और संस्कृति की रक्षा करें।

भक्ति मानव जीवन की वो दिव्य अनुभूति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। ये केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि एक गहरा आंतरिक भाव है जिसमें प्रेम, समर्पण और विश्वास का अद्भुत संगम होता है।

भक्ति का वास्तविक अर्थ है निस्वार्थ प्रेम, जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के ईश्वर को याद करता है, वही सच्ची भक्ति कहलाती है। इसमें न कोई दिखावा होता है, न कोई बाहरी आडंबर। एक सच्चा भक्त अपने हृदय की सरलता और पवित्रता से ईश्वर को प्राप्त करता है।

संतों और भक्तों ने अपने जीवन के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि भक्ति से ही परम शांति और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। मीरा की कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा, तुलसीदास जी की राम भक्ति और कबीर की निर्गुण उपासना, ये सभी भक्ति के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाते हैं।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: नैतिकता, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में सत्य, ईमानदारी, आदर्श, चरित्र जैसे भाव आ जाते हैं। हम सब नैतिकता की बातें करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, समाज से अपेक्षा रखते हैं, दूसरों में खोजते हैं, लेकिन एक प्रश्न है, क्या नैतिकता केवल शब्दों में है? क्या केवल अच्छे विचार, अच्छे भाषण, अच्छी सलाह ही नैतिकता है? या नैतिकता वहां शुरू होती है जहां शब्द समाप्त होते हैं और कर्म बोलने लगते हैं? नैतिकता किताबों का अध्याय नहीं है, यह कोई मंच से दिया गया भाषण नहीं है। नैतिकता वह है जब कोई देख ना रहा हो फिर भी हम सही करें, जब अवसर छल का हो और हम सत्य का साथ दें। नैतिकता विचार नहीं, व्यवहार है। एक छोटा बालक स्कूल से लौटते समय रास्ते में एक बटुआ पाता है, उसमें बहुत पैसे थे, वह घर ले जा सकता था, कोई देख भी नहीं रहा था, लेकिन वह सीधे पास के थाने गया और बटुआ जमा कर दिया। लोगों ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बालक बोला, अगर मैं इसे रख लेता तो पैसे तो मिल जाते लेकिन मैं खुद को खो देता। यह है नैतिकता, जब बाहरी लाभ से अधिक भीतर की सच्चाई महत्वपूर्ण हो। हम सब कहते हैं ईमानदार बनो, सत्य बोलो, दूसरों की मदद करो, पर प्रश्न यह है क्या हम स्वयं ऐसा करते हैं? बच्चा हमारे शब्दों से कम, हमारे कर्मों से अधिक सीखता है। समाज भी उपदेश से कम, उदाहरण से बदलता है। नैतिकता समाज सुधार से पहले घर से शुरू होती है। माता पिता का सम्मान, घर के काम में सहयोग, वचन निभाना, बच्चों के सामने सही उदाहरण देना। यदि घर में सत्य नहीं तो बाहर की छवि केवल दिखावा है। एक गरीब माँ अपने बेटे को बाजार भेजती है, दुकानदार गलती से एक सिक्का अधिक लौटा देता है। बेटा खुश होकर घर आता है, माँ गिनती है और कहती है, यह हमारा नहीं है। वह बेटे को वापस भेजती है। बेटा कहता है, माँ दुकानदार को पता भी नहीं चलेगा। माँ मुस्कुराती है, उसे नहीं चलेगा पर हमें तो चलेगा। यही नैतिकता है, क्योंकि गलत रास्ता अक्सर आसान दिखता है। झूठ बोलना आसान है, बहाना बनाना आसान है, लाभ लेना आसान है, लेकिन आसान मार्ग हमेशा सही मार्ग नहीं होता। एक राजा रात्रि में अपने मंत्री के साथ राजकीय कार्य कर रहा था। कार्य समाप्त हुआ फिर राजा ने राजकीय दीपक बुझा दिया और अपना निजी दीपक जलाया। मंत्री ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों? राजा बोले, अभी तक राज्य का कार्य था इसलिए राज्य का दीपक जल रहा था, अब निजी वार्ता है इसलिए निजी दीपक। यह छोटी घटना नहीं, महान नैतिकता है। काम केवल कमाई नहीं, चरित्र की परीक्षा भी है। एक बस चालक रोज समय पर आता था। एक दिन उसे सड़क पर एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। बस लगभग भर चुकी थी, फिर भी उसने बस रोकी, उतरा, महिला को सहारा देकर चढ़ाया। किसी ने कहा, इतनी देर क्यों की? चालक बोला, यदि समय बचाकर इंसानियत खो दूं तो समय पर पहुंचना व्यर्थ है। नैतिकता की असली परीक्षा भीड़ में नहीं, अकेले में होती है। जब कोई नहीं देख रहा तब हम क्या करते हैं? क्या हम नियम मानते हैं? क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम किसी का हक नहीं लेते? यही चरित्र है। अब अपने भीतर पूछिए, क्या मेरे शब्द और कर्म एक जैसे हैं? क्या मैं सुविधा के लिए सिद्धांत बदल देता हूँ? क्या मैं अकेले में भी वैसा ही हूँ जैसा दुनिया के सामने दिखता हूँ? क्योंकि हम सब चाहते हैं ईमानदार नेता, सच्चा समाज, न्यायपूर्ण व्यवस्था, पर शुरुआत दूसरों से चाहते हैं, जबकि परिवर्तन हमारे छोटे कर्मों से शुरू होता है। नैतिकता मंच पर बोले गए शब्द नहीं, वह है लौटाया हुआ अतिरिक्त पैसा, निभाया हुआ वचन, रोका हुआ झूठ, किया हुआ न्याय और निभाई हुई इंसानियत। नैतिकता की आवाज़ शब्दों से नहीं कर्मों से सुनाई देती है। जीवन में प्रतिष्ठा लोग देते हैं, पर चरित्र हम स्वयं बनाते हैं, और चरित्र बनता है रोज के छोटे छोटे कर्मों से। नैतिकता बोलती नहीं, दिखाई देती है।
0: तो ये था आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। खेती की बातें, इसमें जैविक खाद, इसके बारे में जानकारी दे रही हैं तुलसा दरगैया।
3: किसान भाई नोनी राम राम। किसान भाई नोनी, हमारो देश एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ किसान भाई ने की मेहनत से अन्न को कटोरो भरेल रहे। पर आज का समय में रासायनिक खाद न का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने से हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति कम हुई रही, जेखा से फसल उत्पादन भी प्रभावित हुई रही। असम किसान भाई जैविक खाद एक उम्मीद छे उनका लेना, तो जाना कि जैविक खाद का ही हो। जैविक खाद प्राकृतिक स्रोत न से प्राप्त होने वाली खाद है, जो कि पौधा न जंतु न का अवशेष का सड़ना गलने से बना। एका में किसी भी तरह का रासायनिक तत्व न को प्रयोग नहीं होते है। जैविक खाद की बात करा तो एक गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब खाद जैविक खाद का अंतर्गत आवे। गोबर की खाद बनौना लेना पशु न का गोबर से तैयार होने वाली ये खाद, पशुना का गोबर से तैयार होने वाली गोबर की खाद जेमा नाइट्रोजन, फास्फोरस न पोटेशियम साथ सभी जरूरी पोषक तत्व भरपूर रहे। कंपोस्ट खाद का रसोई न बगीचा का अवशिष्ट पदार्थ सूखी पत्ती न मिले न हम तैयार करी सका, जेका में सूक्ष्म जीव मट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करे। वर्मी कंपोस्ट केचुआ की मदद से तैयार होने वाली खाद है, जो की पोषक तत्व न का साथ साथ मट्टी का हवादार भी बने न रखे। न हरी खाद हरी फसल का मट्टी में मिले न बने सका, जो की जमीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का भी बढ़ावल न नाइट्रोजन को संधारण भी करे। अब जाना एक महत्व का बारे में। किसान भाई नोनी, जैविक खाद मट्टी में कार्बनिक पदार्थ न की मात्रा बढ़ावा, जिका से हमारी मट्टी उपजाऊ बढ़ा न पोषक तत्व लंबा समय तक टिकेल रहे। जैविक खाद का प्रयोग से मट्टी स्वस्थ बढ़ा, जिका में पौधा तेजी से बढ़ा न उनकी उपज भी अच्छी हो। जैविक खाद मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीव न की संख्या बढ़ावा, जो की पौधा न ख बीमारी न से बचाने में मदद कर। रासायनिक खाद का विपरीत जैविक खाद हमारा पर्यावरण का भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। एक अलावा जैविक खाद से उगवना वाली जो फल सब्जी न रहे न वो ज्यादा स्वादिष्ट न पौष्टिक भी रहे। अब जाना एक बनौने की विधि के बारे में। तो भाई बहन होनी, कंपोस्ट खाद बनौना का लेना रसोई न बगीचा का जो अवशिष्ट पदार्थ रहे उनका हमें गड्ढा में इकट्ठा करी न सड़ना देवा, न हवा न नमी को सही संतुलन बने न रखा, जेका सी कुछ समय में हमारी कंपोस्ट खाद बनी न तैयार हो जाएगा। केचुआ की मदद से खाद बनौनक लेना उनका एक डब्बा में रखा न ओका में रसोई का अवशिष्ट डाला, केचुआ इन अवशिष्ट पदार्थ का खाई न खाद बनी देगा। एक अलावा कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाई न का जैविक खाद बनौने की जानकारी न प्रशिक्षण भी दे, साथ सरकार जैविक खाद बनौनक लेने का योजना न भी चलाई रही, जेका में किसान भाई न का जैविक खाद सस्ता दाम न पर मिली जाए। भाई बहनों ने जैविक खाद को प्रयोग करना का लेना सबसे पहले हम मट्टी की जांच करी लेवा। मट्टी की जांच से हमको पता चली जाएगा कि हमारे मिट्टी में किना पोषक तत्व न की कमी छे। एका बाद जब मिट्टी की आवश्यकता का अनुसार जैविक खाद को प्रयोग करा। जैविक खाद का मट्टी में मिले न पौधा न की जड़ तक पोषक तत्व पहुंचे सका। जैविक खाद का पौधा का चारो छिड़की न मट्टी का उपजाऊ बनी सका, या फिर जैविक खाद का पानी में घोले न भी पौधा न का दी सका। भाई बहनोनी, जैविक खाद किसान नकल एक वरदान छे। ये केवल मट्टी की उर्वरा शक्ति खत बढ़ावा साथ फसल उत्पादन में भी वृद्धि कर न सबसे बड़ो फायदो है को ये छे कि हमारा पर्यावरण का भी स्वच्छ बने न रखत। जैविक खाद को उपयोग करी न हमारा किसान भाई अपनी खेती का अधिक लाभदायक न टिकाऊ बने सकत। तो भाई बहनोनी, हमारो आपसे यज कहनु थो।
0: खेती की बातें, इसमें जैविक खाद के बारे में आपने जाना। वाचन था तुलसा दरगैया का।
4: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
5: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
4: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
6: ओह, क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

पुण्यात्मा काकभुशुंडी के आश्रम पहुंचकर ही पक्षीराज गरुड़ का संशय, माया जनित मोह और भ्रम दूर हो गए थे। किंतु उनकी ये जिज्ञासा अवश्य बनी हुई थी कि ऐसा क्यों कर हुआ, ये भी कि काकभुशुंडी ने कौवे का शरीर और श्री रामचरित का अक्षुण भंडार कैसे और कहां पाया। उन्होंने अपनी ये जिज्ञासा काकभुशुंडी के सम्मुख प्रकट की। गरुड़ की ये जिज्ञासा सुनकर काकभुशुंडी हर्षित हुए और उन्होंने सविस्तार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाई। फिर ये भी बताया कि कौवे के शरीर वाले जन्म में ही उन्हें श्री राम की अखंड भक्ति के साथ साथ इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसी कारण कौवे के शरीर से उन्हें अत्यधिक प्रेम था और वे अपना ये शरीर त्यागने का विचार भी नहीं करते, क्योंकि ये वेद वर्णित सत्य है कि शरीर के अभाव में भगवान का भजन नहीं हो सकता।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, स्वर था सुरेश वाडकर का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आपको सुनवा रहे हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:20 पर सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। सुबह 8:30 फिल्म संगीत में 40 और 50 के दशक की कुछ जानी मानी अभिनेत्रियों पर फिल्माए गए कुछ पुराने गीत आपको सुनवाएंगे और उन अभिनेत्रियों के बारे में बातें भी होंगी। लोक संगीत में सुबह 9:00 आपको सुनवाएंगे मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री के गाए निमाड़ी लोकगीत। सुगम संगीत में सुबह 9:15 पर कलाकार होंगे पंडित प्रकाश पारनेरकर। शास्त्रीय संगीत में सुबह 9:30 पर आपको सुनवाएंगे उल्लास कशालकर का गाया राग ललित। संगत कलाकार तबले पर किरण देशपांडे और सारंगी पर अब्दुल लतीफ खां। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे सुबह 10:00। सुबह 10:05 से सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन का प्रसारण होगा। दिन में 11:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। दिन में 11:00 सुनिएगा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम होगा। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा दिन में 1:30 पर और सुगम संगीत आपको सुनवाएंगे दिन में 1:45 पर। दिन में 12:00 और दिन में 2:00 होगा फिल्म संगीत। संग्रहालय से कार्यक्रम दिन में 12:30। चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे दिन में 2:30 पर। शाम की सभा में युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:00। इसमें सुनिएगा कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। फिल्म संगीत शाम 5:45 पर। शाम 6:00 आपको सुनवाएंगे एक विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। आज का विषय होगा भारत को दुनिया का फूड बास्केट हब कैसे बने बना के रहेंगे। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, कृषि वैज्ञानिक। विषय आपको एक बार फिर बता दें, विकसित होता भारत इस कार्यक्रम का आज का विषय होगा भारत को दुनिया का फूड बास्केट हब बना के रहेंगे। शाम 6:30 सुगम संगीत में कलाकार होंगे अभय मानके। शाम 6:45 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा। इसमें निमाड़ी लोकगीत सुनिएगा। कलाकार होंगी मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री। खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:20 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात होगी जल संरक्षण और माटी परीक्षण पर। भेंटवार्ता के अंतर्गत सुनिएगा वीणा राठौर से बृजेश जोशी की बातचीत। विषय होगा कृषि विपणन और डिजिटल मंडी प्रणाली। रात 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया रात्रि 8:15। चित्रगीत में सदाबहार फिल्मी गीत रात 9:15 पर। राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:30 और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगालस्य 15 मतदान केन्द्रेषु पुनर्मतदानाय आदेशः प्रदत्तः। मगरहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्रस्य 11 केन्द्रेषु तथा डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रस्य 4 मतदान केन्द्रेषु अद्य पुनः मतदानं भविष्यति। एतेषु केन्द्रेषु प्रातः 7 आरभ्य सायं 6 यावत् मतदानं भविष्यति। आयोगेनोक्तं यत् एतेषु मतदान केन्द्रेषु पुनर्मतदानस्य निर्णयः पर्यवेक्षकाणां निर्वाचनाधिकारिणाञ्च प्रतिवेदनमालक्ष्य प्रदत्तः। एतेषु मतदान केन्द्रेषु बुधवासरे विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणाय मतदानं जातमासीत्। प्रतिवेदनानामाधारे आयोगेन एतेषु मतदान केन्द्रेषु निर्वाचनं निरस्तीकृतमासीत्। आन्ध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ेषु अस्य वर्षस्य जनगणनायाः प्रथमचरणस्य अन्तर्गतम् अद्यारभ्य गृहसूचीक्रमः गृहगणना च प्रारब्धा अस्ति। गृहमन्त्रालयेनोक्तं यत् इदं कार्यम् अस्य वर्षस्य मई मासस्य 30 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। अस्य अन्तर्गतं प्रशिक्षित गणनाकर्तारः प्रति गृहं गत्वा सूचनाः एकत्रितं करिष्यन्ति। एतन्मध्ये दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय, झारखण्डानां नगर निगमेषु अपि स्वगणनायाः सौविध्यं प्रारब्धमस्ति। आभासीय माध्यमेन सौविध्यमिदं अस्य मासस्य 15 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। अनन्तरं अस्य मासस्य 16 दिनांकादारभ्य आगामी मासस्य 14 दिनांकं यावत् प्रति गृहं गत्वा कार्यं प्रचलिष्यति। बिहारे 15 दिवसीय स्वगणनावधि अद्य समाप्तः भविष्यति। अथ क्षेत्र संचालनम् अद्यारप्स्यते। एवञ्च अस्य मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यते। विदेश मन्त्रालयेन गतमासस्य 25 दिनांकादारभ्य 30 दिनांकं यावत् बैंगलोर, कर्नाटक, भुवनेश्वर, ओडिशा चेत्येषु स्थानेषु आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य सहयोगेन युव नेतृभ्यः बिम्स्टेक विनिमय कार्यक्रमस्यायोजनं कृतमासीत्। आसप्ताहं प्रचलिते अस्मिन् कार्यक्रमे 7 बिम्स्टेक सदस्य देशानां सर्वेषां क्षेत्राणां 70+ युव नेतारः भागं गृहीतवन्तः। विदेश मन्त्रालयेनोक्तं यत् अयं कार्यक्रमः गतवर्षे बैंकॉक नगरे 6 बिम्स्टेक शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृता घोषणा प्रख्यापनाय आयोजितः आसीत्। केन्द्रीय पंचायती राज मन्त्रालयः अद्य हैदराबादे आत्मनिर्भर पंचायत उपक्रमे एका आउटरीच इति कार्यशाला आयोजयिष्यते। आउटरीच इति कार्यशाला प्रतिभागेभ्यः राष्ट्रिय ग्राम स्वराजाभियानस्य अन्तर्गतं पंचायती राज मन्त्रालयस्य एकस्य उपक्रमस्य आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रमस्य दृष्ट्या उद्देश्यैः परिचालन अवसंरचनया च परिचयं दास्यति। पंचायती राज मन्त्रालयस्य सचिवः विवेक भारद्वाजः आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रमस्य दृष्टिमालक्ष्य मुख्य भाषणं प्रदास्यति। एतस्य अनन्तरं राष्ट्रिय नीति उद्देश्यानां प्राविधिक मार्ग चित्रस्य अपेक्षित परिणामाणां च विषये विस्तृत प्रस्तुतिः भविष्यति। मोरारजी राष्ट्रिय योग संस्थानम् अद्य तेलंगानायाम् अस्य वर्षस्य योग महोत्सवस्य आयोजनं करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां दिल्ली कैपिटल्स दलेन जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलं 7 पराजितं। तत्रैव अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं सायं 7:30 चेन्नई स्थे एमए चिदंबरम क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान शुरू हो गया है। इन केंद्रों पर आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना केकेएनपी इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने के लिए अनुमति जारी कर दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों की लगाने की अनुमति दी गई है। एईआरबी द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। राज्य में आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: ओहो, क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा,
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।

श्रोताओं आपको याद दिला दें, आज शाम 6 बजे एक विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम का आज का विषय होगा भारत को दुनिया का फूड बास्केट हब बना के रहेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, कृषि वैज्ञानिक। कार्यक्रम MH हॉटलाइन सुनिएगा सुबह 10:05 से। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे फ़ोन नंबर नोट करें 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो कार्यक्रम सुने MH हॉटलाइन आज सुबह 10:05 से।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: मामला। और प्रदेश में गर्मी के बीच मौसम ने ली करवट, दो दिन में 35 जिलों में आंधी बारिश, ओले, आज 21 जिलों में अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। जबलपुर के बरगी डैम क्रूज हादसे में राज्य सरकार ने लापरवाही के दोषी क्रूज पायलट, हेल्पर और टिकट काउंटर प्रभारी को तत्काल बर्खास्त कर दिया। वहीं होटल मैकल रिसोर्ट के मैनेजर को निलंबित किया गया। गुरुवार शाम हुए इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि रेस्क्यू टीम ने 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को खुद घटनास्थल पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। मृतकों के परिजनों को केंद्र सरकार से 2 लाख और राज्य सरकार से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बरगी हादसे की उच्च स्तरीय जांच के भी निर्देश दिए हैं।
1: पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है। ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें क्रूज दुर्घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम अधिनियम नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो एसओपी तैयार करके हम इसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना अब दोबारा न हो।
0: प्रदेश में अब तक 6 लाख से ज्यादा किसानों का 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। उन्हें करीब 4,813 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका है। किसानों को 2,585 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं बेचने का फायदा मिल रहा है। राज्य सरकार ने खरीदी की आखिरी तारीख भी 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में जमीन देने वाले किसानों को मिलने वाली विकसित जमीन का हिस्सा 50 से बढ़ाकर 60% कर दिया है। 2,360 करोड़ रुपए की इस परियोजना के पहले चरण का भूमि पूजन कल इंदौर के ग्राम ननोद में होगा। 20 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से इलाके में उद्योग, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विकास होगा। केंद्र सरकार ने देश भर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए कल 2300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। इसके अलावा औद्योगिक एलपीजी सिलेंडर बुकिंग 98% तक बढ़ गई है। तकरीबन 49,80,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की गई। सरकार का कहना है कि कल 5 किलोग्राम वाले 79,000 एफटीएल सिलेंडरों की आपूर्ति की गई। प्रदेश की स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 की कक्षा 9वीं और 11वीं की द्वितीय परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। दोनों कक्षाओं की परीक्षा 3 जून से शुरू होगी, जिनमें 9वीं की परीक्षा 12 जून और 11वीं की 13 जून को खत्म होगी। जो विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में एक या उससे ज्यादा विषयों में अनुपस्थित रहे या फेल हुए, वे इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के दूसरे चरण की प्रक्रिया 4 मई से शुरू होगी। इस चरण में नया पंजीयन नहीं होगा, केवल वही बच्चे शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया था। जो अभिभावक अवकाश के कारण पहले दस्तावेज सत्यापन नहीं करा पाए, उन्हें एक और मौका दिया गया है। वे अपने जनशिक्षा केंद्र पर जाकर सत्यापन करा सकते हैं। प्रदेश में चल रहे जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत खेत तालाब, अमृत सरोवर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सूखे कुओं को पुनर्जीवित करने के 2,43,000 से ज्यादा कार्य लगभग 6,229 करोड़ रुपए की लागत से कराए जा रहे हैं। 19 मार्च से शुरू हुए अभियान के तीसरे चरण में अब तक 1,64,000 से अधिक कार्य पूरे हो चुके हैं। इस अभियान में खंडवा पहले, खरगोन दूसरे और डिंडौरी तीसरे स्थान पर है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। पंचायती राज मंत्रालय आज हैदराबाद में आत्मनिर्भर पंचायत पहल पर एक आउटरीच कार्यशाला आयोजित करेगा, जिसमें प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम की परिकल्पना और काम करने के तरीके से रूबरू कराया जाएगा। मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज मुख्य भाषण देंगे और आत्मनिर्भर पंचायत पोर्टल का लाइव डेमो भी दिखाया जाएगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत एक अहम पहल है। धार जिले की मशहूर बाग प्रिंट कला इन दिनों पेरिस के ऐतिहासिक व्यापार मेले

क्वेयर डे पेरिस में धूम मचा रही है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री भारत और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए इस प्राचीन हस्तशिल्प कला को वैश्विक मंच पर पहचान दिला रहे हैं। भारतीय दूतावास की थर्ड सेक्रेटरी वर्धा खान ने खुद लकड़ी के ब्लॉक से बाघ प्रिंट बनाकर इस कला की तारीफ की। केंद्र सरकार के हस्तशिल्प विभाग ने इस प्रतिष्ठित मेले के लिए खास तौर पर बाघ प्रिंट को चुना है। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने कल पद्म डोरी नाम की एक अनूठी टेक्सटाइल पहल लॉन्च की, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के एरी सिल्क और प्रदेश की चंदेरी बुनाई की विरासत को एक साथ पिरोया गया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने इस पहल का शुभारंभ किया और कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को साकार करती है। लॉन्च के मौके पर एक फैशन शो भी हुआ, जिसमें दोनों परम्पराओं के मेले से बने कपड़ों की खूबसूरत झलक पेश की गई। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है और बीते दो दिनों में 35 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश और ओले पड़ चुके हैं। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, जबलपुर, छतरपुर, बालाघाट समेत 21 जिलों में बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। हालांकि दोपहर बाद कुछ जगहों पर मौसम बदल सकता है। आईपीएल में कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात देते हुए 226 रनों का लक्ष्य महज 19 ओवर में हासिल कर लिया। दिल्ली के लिए केएल राहुल ने 75 रन की शानदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, जबकि मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट छटके। आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपरकिंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। भोपाल की राज्य शूटिंग अकादमी में आज से 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है, जो 15 मई तक चलेगी। देश के 42 राज्यों और सेना के 3000 से ज्यादा खिलाड़ी 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर राइफल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। उद्घाटन समारोह में खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में चल रहे हेलमेट विशेष अभियान 2026 के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 320 दुपहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। आगरमालवा जिले में जनगणना प्रगणकों और सुपरवाइजर्स को भीषण गर्मी से सुरक्षित रखने के लिए जीवन रक्षक दवाइयों की किट उपलब्ध कराई गई। नर्मदापुरम जिले में संचालित जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत रेवा सेवा समागम कार्यक्रम का शुभारंभ कल विकासखंड माकनगर में किया गया। मंदसौर जिले में नीट परीक्षा 4 केंद्रों पर कल 3 मई दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। बैतूल कलेक्टर ने कल तहसील कार्यालय भैंसदेही का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। अशोकनगर पुलिस ने ऑनलाइन आईपीएल सट्टा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नीमच के ग्रामीण अंचलों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में 10 ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने की अनुमति जारी की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पद्मश्री तपस्वी का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है परवरिश, मन्ना डे लता मंगेशकर की आवाज है, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, दत्ताराम का संगीत।

कार्यक्रम सुनहरे पल का अगला गीत फिल्म है पॉकेट मार, तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ है। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, मदन मोहन का संगीत।

पॉकेट मार, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ में, और अब आपको सुनवा रहे हैं गूंज उठी शहनाई, इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़। गीत के बोल हैं भरत व्यास के लिखे, संगीत वसंत देसाई का।

गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिर वही दिल लाया हूं। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज है। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, ओपी नैयर का संगीत।

आप सुन रहे थे मेरे सनम फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, ओपी नैयर का संगीत था।

लता मंगेशकर की आवाज़ में पूजा के फूल, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, मदन मोहन का संगीत था। और अब कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम सुजाता, तलत महमूद की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, एसडी बर्मन का संगीत।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आवाज मुकेश की है, गीत लिखा है इंदिवर ने, रोशन का संगीत और फिल्म का नाम अनोखी रात।

सुनहरे पल कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म है आखिरी खत, लता मंगेशकर की आवाज, गीत लिखा है कैफी आजमी ने, खय्याम का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आखिरी खत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीत लिखा था कैफी आजमी ने, खय्याम का संगीत था। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम ये रात फिर न आएगी। आवाज़ महेंद्र कपूर की है, गीत लिखा है अजीज़ कश्मीरी ने, ओपी नैयर का संगीत।

महेंद्र कपूर की आवाज में ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीत के बोल लिखे थे अजीज काश्मीरी ने, ओपी नैयर का संगीत था। इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल अब समाप्त होता है। अनुमति दीजिए पद्मश्री तपस्वी को। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC U17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
1: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से LPG की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में LPG उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: LPG की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। एईआरबी द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलते स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देशभर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देशभर में कल 2300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रूपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
4: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमरीका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कोत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चो तेन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चेऊ हिस्यांग चिए और वांग चे लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटे ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाये रहने और हल्की बारिश की संभावना है।

0: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिन्दुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोक सत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की इतिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Repolling begins in 15 polling stations of 2 assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under-17 Women's Asian Cup after 21 years in China. Repolling has started in 15 booths in 2 constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. More details on this from our correspondent.
3: Among these, 11 are in Poshim Ograhat and 4 booths are in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered repolling after irregularities were reported. Meanwhile, in another development, a special bench has been set up by Supreme Court to urgently hear the Trinamool Congress's appeal against the Calcutta High Court order that restricted counting centre staff to central government employees only. The bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamallu Bakhti Bakshi will take up the matter today. Since vote counting scheduled for Monday, the Trinamool Congress requested an urgent hearing. Day before yesterday, Calcutta High Court

गीत को सुनकर आपने पहचाना ये किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया गीत था? जी हाँ, ये अभिनेत्री थी नलिनी जयवंत। फिल्म का नाम था नौजवान, गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत एसडी बर्मन का था। नलिनी जयवंत उस दौर की एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी मुस्कान, अदाओं और सादगी ने लाखों दिलों को अपना दीवाना बना दिया था। साल 1941 में महबूब खान की फिल्म बहन से बतौर अभिनेत्री अपनी पहचान बनाई। फिल्मों में इनके अभिनय और खूबसूरती को देख दर्शक उन्हें देखते ही रह जाते थे और उनकी फिल्में एक नहीं कई बार देखा करते थे। और अब बात करते हैं सन 1935 में अफगानिस्तान में जन्मी फिल्म अभिनेत्री शकीला की। शकीला सन 1949 में बनी फिल्म दास्तान से बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी। शुरुआती दौर बड़ा ही मुश्किलों भरा रहा, छोटे मोटे रोल ही मिले, लेकिन सीआईडी फिल्म से देवानंद के साथ रोल मिलने के बाद बहुत सी फिल्में मिली जिनमें उन्हें उस दौर के सभी जाने माने फिल्म अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। गुरुदत्त की फिल्म आरपार में इन्होंने एक कैबरे डांसर की भूमिका निभाई थी और वो गाना बहुत ही सुपरहिट हुआ और आज भी बहुत सुना जाता है। वही गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, गीता दत्त की आवाज़ है। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, ओपी नैयर का संगीत।

और अब एक ऐसी अभिनेत्री की बात करते हैं जिनके चेहरे से ज़्यादा इनकी आंखें ही खूबसूरत थीं। इनकी आंखें इतनी भावपूर्ण थीं कि वो कुछ बोले उससे पहले ही उनकी आंखें बोल पड़ती थीं। और इन खूबसूरत आंखों वाली अभिनेत्री थी निम्मी, जिनका असल नाम था नवाब बानू। राज कपूर ने अपनी फिल्म बरसात में इन्हें लॉन्च किया और नाम दे दिया था निम्मी। इन पर फिल्माए गए ज़्यादातर बड़े भावुक और रुला देने वाले गीत होते थे। अब एक ऐसा ही दर्द भरा गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है अमर, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत नौशाद का।

और अब एक ऐसी अदाकारा से आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने 98 वर्ष तक जीवित रहकर एक इतिहास बनाया। उनका नाम है अभिनेत्री कामिनी कौशल। इनका फिल्मी करियर बहुत ही शानदार रहा। इन्होंने लगभग 70 वर्षों तक हिंदी सिनेमा में दर्शकों के दिलों पर राज किया और अपने बेहतरीन अभिनय से सबके दिल को जीता। सन 1946 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म नीचा नगर से की, जिसे कान फिल्म फेस्टिवल में पाम डी ओर पुरस्कार मिला। अपने 1946 से शुरू हुए फिल्मी सफर को इन्होंने 2022 में बनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा से खत्म किया, जो अपने आप में एक इतिहास है। इनका इतना शानदार फिल्मी सफर यही दर्शाता है कि ये अपने काम के प्रति कितनी सजग और प्रतिबद्ध थी। अब सुनवाते हैं इन्हीं पर फिल्माया गया फिल्म बिराज बहू का एक गीत, जिसे गाया है श्यामल मित्र और लता मंगेशकर ने। शब्द रचना है प्रेम धवन की, संगीत सलील चौधरी का।

और अब बात करते हैं इराक के बगदाद में जन्मी 50 के दशक में हिंदी सिनेमा में आते ही पैठ जमाने वाली सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नादिरा की, जिनका असली नाम था फ्लोरेंस इज़ेकिल। ये यहूदी थी। बात उन दिनों की है जब फिल्म निर्माता निर्देशक महबूब खान अपनी पहली कलर फिल्म आन बना रहे थे। इस फिल्म में उन्हें दो अभिनेत्रियों की ज़रूरत थी। निम्मी को एक अभिनेत्री के रूप में चुन चुके थे, दूसरी अभिनेत्री की तलाश थी। तभी मुंबई में एक फंक्शन में उनकी मुलाकात नादिरा से हुई। उन्हें देख महबूब खान ने उन्हें फिल्म ऑफर की। चूंकि नादिरा भी काम की तलाश में मुंबई आई थी, उन्होंने तुरंत काम करने के लिए हाँ कह दी और ऐसे शुरू हुआ फिल्मों में काम करने का सिलसिला। इनकी भी पहली फिल्म ही सुपरहिट हो गई थी। फिल्म आन 28 देशों में 17 भाषाओं के सब टाइटल्स के साथ रिलीज हुई थी, जिसका प्रीमियर लंदन में रखा गया था। फिल्म आन ने उस समय जमकर कमाई की थी। राज कपूर की फिल्म श्री 420 में इनके अभिनय को बहुत सराहना मिली और इस फिल्म में इनके नेगेटिव रोल को बहुत पसंद किया गया और इनके सिगरेट पकड़ने के स्टाइल को भी खूब पसंद किया गया। इसी फिल्म के बाद इन्हें नेगेटिव रोल मिलने लगे और अब सुनवा रहे हैं श्री 420 फिल्म का एक गीत, जिसे मन्ना डे, आशा भोसले और साथी ने गाया है। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

और अब एक ऐसी फिल्म अभिनेत्री की बात करते हैं जिसने बहुत छोटी सी उम्र में ही सफलता का परचम लहरा दिया था और सिर्फ 35 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा भी कह दिया था। वो जानी मानी अभिनेत्री हैं गीता बाली। सन 1946 की फिल्म बदनामी में इन्हें फिल्म अभिनेत्री का रोल मिला। अभिनेत्री गीता बाली सर्वगुण संपन्न थी। इन्हें घुड़सवारी भी आती थी और तलवारबाजी भी, इसलिए इस तरह के स्टनिंग रोल इन्हें मिलते थे। फिल्म अभिनेता देवानंद के साथ इनका रोल काफी पसंद किया गया। अब आपको सुनवा रहे हैं सन 1951 में बनी फिल्म अलबेला का एक सुप्रसिद्ध गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और चितलकर ने। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत सी रामचंद्र का, और इस फिल्म में है, इस गाने में है गीता बाली और उनके साथ अभिनय कर रहे हैं भगवान दादा।

और अब एक ऐसी अभिनेत्री की बात कर रहे हैं जो एक मराठी परिवार में जन्मी थी। नाम है शशिकला, यथा नाम तथा गुण। शशिकला यानी चंद्रमा की कला। चंद्रमा की 16 कलाओं की तरह ही ये बड़ी चंचल नटखट अदाओं वाली अभिनेत्री थी। बचपन बड़े ऐशो आराम के साथ गुजरा, लेकिन परिस्थितिवश बाद में न चाहते हुए भी फिल्मों में काम करना पड़ा। पहली फिल्म जीनत, जिसे निर्देशित किया था शौकत अली और नूरजहां ने, और रोल था कव्वाली में ताली बजाने वाली एक लड़की का। उस काम के उन्हें 20 रुपए मिले, जिससे उन्होंने घर के सभी सदस्यों के लिए नए कपड़े ले लिए थे। इन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है, लेकिन ये कभी मुख्य अभिनेत्री नहीं बन पाई। अब सुनवा रहे हैं आपको जंगली फिल्म का एक गीत, जिसमें उन्होंने अभिनय किया है अनूप कुमार के साथ। आवाज़ है आशा भोसले और मुकेश की। गीत लिखा है शैलेंद्र ने।

तो श्रोताओं, आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हमने 40 और 50 के दशक की कुछ उन अभिनेत्रियों की बात की जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अपने अभिनय से नई ऊंचाइयां दी हैं। ये कुछ ऐसी अभिनेत्रियां थीं जिनकी चमक समय के साथ, समय की कसौटी पर कभी फीकी नहीं पड़ेंगी। इसी तरह आपसे आगे भी बात करते रहेंगे और सुनवाते रहेंगे आपको सुमधुर गीत। आज बस इतना ही। अब इजाजत दीजिए पद्मश्री तपस्वी को। नमस्कार। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री के गाए निमाड़ी लोकगीत।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत। कलाकार हैं मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री। इनसे आप सुन रहे हैं निमाड़ी लोकगीत।

लोक संगीत के आखिर में एक और पारंपरिक रचना आपको सुनवा रहे हैं। स्वर है मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री का। इनसे आप सुन रहे हैं निमाड़ी लोकगीत।

पंडित प्रकाश पारनेरकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे गणपति वंदना, और अब इन्हीं के स्वर में सुनते हैं बशीर बद्र का कलाम।

सुगम संगीत में आप सुन रहे थे पंडित प्रकाश पारनेरकर की गाई गजलें। कलाम था बशीर बद्र का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में आपको सुनवा रहे हैं उल्लास कशालकर का गाया राग ललिता गौरी। संगत कलाकार तबले पर आपके साथ हैं किरण देशपांडे और सारंगी पर अब्दुल लतीफ खां।

शास्त्रीय संगीत में आप सुन रहे थे उल्लास कशालकर का गाया राग ललिता गौरी। संगत कलाकार तबले पर आपके साथ थे किरण देशपांडे और सारंगी पर अब्दुल लतीफ खां। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। जिले की चिट्ठी कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीहोर जिले की चिट्ठी। आलेख प्रदीप सिंह चौहान, वाचन स्वर दीपा सिंह। सीहोर जिला इन दिनों भीषण तपन के दौर से गुजर रहा है। अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि बीच बीच में मावठ की हल्की बौछारों ने मौसम को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन कुल मिलाकर इस बार की गर्मी ने जिले में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अब बात करते हैं खेती किसानी की, जो इस गर्मी के बीच भी जिले की पहचान बनी हुई है। अपने स्वादिष्ट और सूर्य जैसी चमक वाले शरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध सीहोर में वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीदी का लक्ष्य 7 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। पिछले वर्ष जिले में 6,32,000 मीट्रिक टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। इसी कड़ी में गेहूं खरीदी की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो इस सीजन में जिले के 240 उपज खरीदी केंद्रों के माध्यम से 33,964 किसानों से अब तक 1,53,595 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इस बार 1,24,085 किसानों ने गेहूं विक्रय के लिए पंजीयन कराया है, जिनमें से 53,450 किसान स्लॉट बुकिंग कर चुके हैं। किसानों को अब तक 254,26,00,000 रूपये का भुगतान विभिन्न बैंकों के माध्यम से किया जा चुका है। कृषि क्षेत्र में नवाचार की दिशा में भी सीहोर लगातार आगे बढ़ रहा है। हाल ही में बुधनी स्थित केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि उद्यम एक्सपो और किसान संवाद का आयोजन किया गया। समापन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया और चयनित किसानों को उन्नत कृषि टूल किट भी वितरित किए। दूसरी ओर विकास और जनकल्याण के मुद्दों पर भी जिले में गतिविधियां तेज हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आष्टा में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शिरकत की और 25 लाख लाडली बहनों के खातों में 1,836 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की। साथ ही 184 करोड़ 92 लाख रूपये लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इसी क्रम में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में भी काम जारी है। जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने मंडी क्षेत्र में 280 करोड़ रूपये की लागत से बने 33 kV विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्र में बिजली व्यवस्था और सुदृढ़ होने की उम्मीद है। जल संरक्षण और पर्यावरण के क्षेत्र में भी जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जोशीपुर गांव में गुंजारी नर्मदा संगम घाट पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं सीहोर

0: की पारंपरिक कला और उद्योग को भी नई पहचान मिल रही है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के एक दल ने बुधने स्थित खिलौना क्लस्टर का भ्रमण किया। दल ने स्थानीय कारीगरों से संवाद कर पारंपरिक निर्माण तकनीकों और व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी ली। प्रशासनिक कार्यप्रणाली में भी सीहोर ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में जिला प्रदेश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मार्च माह की 6057 शिकायतों के निराकरण में 84.13 विरेज स्कोर के साथ जिले को ए ग्रेड मिला है। शिक्षा की बात करें तो कलेक्टर बालागुरु के निर्देश पर जिला शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को उचित मूल्य पर पुस्तकें, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए सभी विकासखंडों में पुस्तक मेलों का आयोजन किया। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विधायक सुदेश राय ने विधायक निधि से स्वीकृत फायर टैंकरों का वितरण किया। 15 ग्राम पंचायतों के लिए 38,64,675 रुपए की लागत से टैंकर उपलब्ध कराए गए हैं। संस्कृति और परंपरा की झलक भी जिले में देखने को मिली। सृष्टि आरंभ दिवस, वर्ष प्रतिपदा और विक्रम संवत 2083 के शुभारंभ पर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में सूर्य उपासना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित नाट्य प्रस्तुति हुई। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो जिले में एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 14 से 15 वर्ष की 2221 बालिकाओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया जलगंगा संवर्धन अभियान भी जिले में जोर शोर से जारी है, जो आगामी 30 जून तक चलेगा। इस अभियान के तहत कुओं, तालाबों और नदियों की सफाई तथा गहरीकरण के साथ आमजन को जागरूक किया जा रहा है। उद्यानिकी क्षेत्र में भी प्रगति का निरीक्षण किया गया। भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने ग्राम जताखेड़ा और कुठारी में उद्यानिकी फसलों का निरीक्षण किया और योजनाओं की जानकारी ली। वहीं धार्मिक आस्था के रंग में भी जिला रंगा नजर आया। रामनवमी का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। कस्बा स्थित प्राचीन राम मंदिर में भगवान राम का जन्मोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। और अंत में खेल गतिविधियों की बात करें तो जिले में युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस एसोसिएशन के निर्देश पर अंडर 14 बालक बालिकाओं के लिए 22 दिवसीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल शिविर स्थानीय चर्च मैदान पर आयोजित किया जा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे सीहोर जिले की चिट्ठी। आलेख प्रदीप सिंह चौहान का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
3: हेलो एमएच हॉटलाइन।
2: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पद्मश्री तपस्वी का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमारे फोन नंबर बता दें। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो जुड़ते हैं पहले श्रोता से। हेलो हेलो
4: हेलो,
2: नमस्कार।
4: नमस्कार, मैं अनिल भंडारे सुजामनगर से बोल रहा हूँ।
2: हाँ हाँ, हमने आपकी आवाज से ही पहचान लिया था आपको। और बताएं, आपके पुराने फिल्मों के पिटारे से आज कौन सी फिल्म आपने चुनी है?
4: आज गायक मन्नारे का यात्रा कल किया था हमने।
2: जी जी जी हाँ,
4: तो उसकी याद में फिल्म दिल ही तो है का गाना सुनना चाहेंगे।
2: दिल ही तो है, जी जी, कौन सा गीत?
4: लगा चुनरी मिला ये छुपाऊ कैसे, लगा चुनरी मिला छुपाऊ कैसे, लगा चुनरी में गाना।
2: जी जी जी जी, और बताएं क्या चल रहा है आजकल?
4: रोशन का संगीत है मधुर, साहिल का गीत है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, आपको गीतकार, संगीतकार, फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री सब कुछ पता होता है आपको। फिल्मों की बहुत जानकारी रखते हैं आप। बहुत पुराने श्रोता हैं। और
4: रात के ऊपर गीत गाया है मन्नारे का, बहुत खूबसूरत गीत बन रहा है।
2: जी जी जी जी, तो सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत।
4: और आपके क्या हाल चाल?
2: बस बढ़िया, हमारे भी अच्छे हाल चाल है। अभी

0: गर्मी बहुत है, गर्मी से परेशान हैं सभी लोग।
1: 12 से 3 घर से निकलना बंद कर दिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी जी
1: बहुत जरूरी हो तो बाहर निकलते घर में बैठे से गाने पुराने गाने सुन के आराम आनंद लेते।
0: हाँ हाँ हाँ, रेडियो ट्यून करके रखिए, पुराने गीत सुनते रहिए और घर में ही रहिए।
1: सुबह 7 से लेकर रात 11 तक चलता है गाना रेडियो।
0: जी जी,
1: पुराने नए गाने सब सुनते रहते
0: हैं। जी
1: आता है, सबको मिलता है, आनंद मिलता है कहीं।
0: जी जी जी जी, चलिए सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: ये गाना हमारे परिवार को बहुत पसंद है।
0: जी सुनिए, अपने परिवार के साथ, दिल ही तो है फिल्म का ये गीत सुनिए।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम
0: गुड मॉर्निंग। कौन बोल
1: जी।
0: रहे
1: मैं
0: हैं?
1: श्रीपाल गोयल, मैम श्रीपाल गोयल दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रहे हैं। जी, आपसे
1: ठीक
0: पहले
1: है।
0: भी बात हो चुकी है।
1: हाँ जी मैम, बिल्कुल हुई होगी।
0: आज छुट्टी है आपके जॉब का, जॉब की?
1: नहीं मैम, अभी बस ड्यूटी पहुंचे ही थे, बस
0: अच्छा,
1: कॉल ट्राई किया तो
0: ड्यूटी।
1: कॉल भी लग गई।
0: अच्छा, ड्यूटी पहुंच गए हैं।
1: हाँ जी
0: और
1: हाँ
0: बताएं,
1: जी,
0: कौन
1: बस
0: सा
1: अभी
0: गीत
1: अभी आया था
0: सुनेंगे
1: सर्विस।
0: आज?
1: जी मैम, फिल्म दो रास्ते से है, बिल्ली चमके की।
0: दो रास्ते फिल्म का, बिंदिया
1: बिंदिया
0: चमकेगी।
1: चमके जी।
0: जी, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको ये गीत। और बताएं, इन दिनों क्या चल रहा है? गर्मी कैसी पड़ रही है दिल्ली में?
1: मैम, जो तापमान जो 40 डिग्री पार कर गया दोपहर के टाइम पे, तो सुबह शाम कोई ठीक
0: फोर्टी
1: होता है।
0: डिग्री 40 डिग्री ही पार हुआ है। हमारे इधर तो अभी
1: हाँ
0: फोर्टी
1: जी हाँ जी
0: टू फोर्टी थ्री चल रहा है मालवा में।
1: मैम, अभी
0: बहुत ज़्यादा गर्मी।
1: दो दिन पहले मतलब बारिश हुई थी, मतलब ओले गिरे थे, इस
0: अच्छा
1: टाइम थोड़ा
0: अच्छा
1: सा मौसम कम हो
0: बारिश।
1: गया है।
0: हाँ, मौसम ठीक
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी अभी नहीं है वहाँ।
1: जी मैम।
0: जी, और क्या करते हैं?
1: मैम बस दिल्ली में काम करते, बस अभी
0: दिल्ली में
1: ड्यूटी
0: काम
1: पहुंचे
0: करते हैं।
1: थे।
0: घर में कौन कौन है
1: हाँ
0: आपके?
1: जी, मम्मी सभी हैं, मम्मी पापा हैं, वाइफ
0: अच्छा,
1: है,
0: वो लोग
1: भाई
0: भी
1: बहन
0: सुनते हैं
1: हैं।
0: क्या रेडियो घर पर?
1: नहीं मैम, उनको शौक नहीं है इतना, वो बस काम में
0: अच्छा,
1: अपने लगे रहते हैं,
0: अरे वाह
1: हमें
0: वाह,
1: सुनते जाना
0: आपको।
1: रहा तो।
0: जी, आपको शौक है और आप सुनते हैं, बहुत अच्छा
1: हाँ
0: लगा
1: जी
0: है ना आपसे बात हुई।
1: जी
0: चलिए सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत। लीजिए
1: धन्यवाद
0: सुनिए,
1: मैम।
0: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो,
1: हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग
0: गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: जी। हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। जी
0: छत्तीसगढ़ से योगेश जांगड़े। जी, कौन
1: फिल्म
0: सा गीत सुनेंगे? गीत बता दें।
1: फूल और कांटे से सुनवा देंगे गीत के बोल हैं, तुमसे मिलने को दिल करता है।
0: जी, तुमसे मिलने को दिल करता है, फूल और कांटे फिल्म का गीत जरूर सुनवाएंगे आपको। क्या
1: जी
0: करते हैं योगेश जी आप?
1: हमारा मूल काम खेती बाड़ी का है।
0: अच्छा, खेती बाड़ी का काम है। और इस समय क्या कर रहे हैं आप?
1: अभी तो फ्री हो गए हैं, सब जो फसल लगाए थे सब
0: हाँ, काट
1: तैयार
0: दी
1: हो
0: है।
1: गया है।
0: हाँ,
1: और
0: कौन
1: एक
0: सी फसल?
1: नीचे गेहूं की फसल थी सभी,
0: जी,
1: और इतनी तेज गर्मी में घर में आराम करना ही सबसे
0: हाँ,
1: ज्यादा
0: अभी तो तेज
1: सही लग
0: गर्मी है।
1: रहा है।
0: छत्तीसगढ़ में कितना रहता है पारा? 40 के पार तो होता ही होगा।
1: हाँ, अभी हो जाता है, अभी 43-44 तक आ रहा है।
0: हाँ, तो क्या करते हैं, बस घर में बैठे रहते हैं, कूलर या एसी की ठंडी हवा में, पंखे की।
1: जी।
0: जी, घर
1: हाँ
0: आपका गांव में ही है, खेत के पास ही, या शहर में?
1: जी,
0: घर
1: नहीं गांव में है
0: गांव में ही
1: अपना
0: घर है।
1: खतियाना जी।
0: पानी की, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है वहां पर, हैंडपम्प वगैरह?
1: मतलब वहाँ नदी का पानी फिल्टर होके भी मिलता है नल के जरिए,
0: अच्छा,
1: और
0: हाँ,
1: आसपास मतलब जैसे हमारे यहाँ तो नलकूप भी है
0: अच्छा।
1: जी, और बांध भी है बड़ा बड़ा।
0: कौन सा
1: तो
0: बांधे?
1: मतलब यही कि अपना गांव के नाम से ही जाना जाता है उनको, मतलब बहुत पुराना है एक, और एक
0: नहीं,
1: बड़ा पुराना है।
0: कौन सी नदी? नदी का नाम तो होगा ना?
1: नदी नहीं बोला, बांध है
0: अच्छा,
1: बांध।
0: बांध है, किसी
1: हाँ
0: नदी
1: जी,
0: से पानी आकर वहाँ इकट्ठा होता है, मतलब बांध है वहाँ।
1: ये
0: जी,
1: सुनार में है
0: अच्छा अच्छा
1: हमारे
0: अच्छा अच्छा
1: जी।
0: चलिए, अच्छा लगा आपसे बात हुई।
1: जी हमें
0: रेडियो
1: भी
0: सुनते
1: काफी अच्छा
0: हैं?
1: लगा।
0: रोज ही सुनते हैं
1: रेडियो
0: या
1: के तो, रेडियो के तो बहुत बड़े प्रेमी
0: नहीं?
1: हैं
0: प्रोग्राम
1: मेरे
0: कौन कौन
1: पास
0: से
1: तो है।
0: सुनते हैं आप? ये फोन इन प्रोग्राम ही सुनते हैं या और दूसरे?

0: हेलो,
1: नमस्ते पद्मश्री जी।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: क्या दुआ करूं मैं पद्मश्री जी आपके लिए? बस यही दुआ है कि आप कभी किसी चीज के लिए मोहताज न हो और जैसे ही आप सोचें वैसे ही वो चीज हाजिर हो जाए।
0: ओहो, वो बहुत अच्छा बोला आपने तो। आज
1: जी,
0: कौन सा गीत सुनेंगे बताएं?
1: मैं सबसे पहले बता दूं, पालदा नाका इंदौर से आपका जाना पहचाना तोता, मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ।
0: जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है ना।
1: जी,
0: हसीना भी और अमीना भी से जी से तो होती रहती है, आपसे कम
1: हाँ
0: होती बात।
1: जी,
0: आप कम करते हैं,
1: हाँ मैं काम लगाता हूँ।
0: कम लगाते हो आप।
1: पहले उनको मौका देता हूँ क्योंकि लेडीज फर्स्ट है ना।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ये बात भी सही
1: मेरे
0: है।
1: लिए सबसे बड़ी, मेरे लिए सर्वोपरि मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर ही है मैडम,
0: जी,
1: उसके बाद में।
0: आप सब मिलजुल के काम करते हैं ना? क्या काम करते
1: हाँ,
0: हैं?
1: अम्मी तो घर पे रहते हैं, सिस्टर और हम साथ में जाते हैं काम पे।
0: अच्छा, जी। और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: बस अभी तो सिलाई कर रहे थे और आपको फोन कर रहे थे।

0: अच्छा
1: जी, गर्मी का मौसम तेज पकड़ रही है, गर्मी अपने
0: गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, यानी इंदौर में इतनी गर्मी पहले पड़ती नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा पड़ रही है आजकल।
1: देखिए ना, अभी मतलब निर्माण इतना होता जा रहा है कि ना तो पेड़ कहीं दिखाई देते हैं,
0: हाँ
1: इसी वजह से ज्यादा गर्मी।
0: खास कारण वही है कि निर्माण करने के चक्कर में हम लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिए, उसका परिणाम यह है कि गर्मी सहन करना पड़ रही है अब।
1: आज भी कहीं हम जाते हैं देखते हैं तो राहगीर उनका है कि पेड़ उनका इंतजार करते कहीं छाया मिल जाए, बस के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम खुद भी इंतजार करते हैं, तीन मिली के पेड़ के नीचे खड़ते हैं, छाया में अच्छा लगता है।
0: पेड़ की छाया में अच्छा लगता है, हाँ गर्मी सुख थोड़ा सुकून मिलता है और छाया से जैसे बाहर। हाँ हाँ
1: जी, ऐसे अगर हर जगह पर पेड़ मिल जाए तो थोड़ी बहुत राहगीरों को राहत तो मिले जो दूर से आते हैं बेचारे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब यही कर सकते हैं कि हम आपको भी ये कोशिश करनी होगी कि हम लोग भी अपनी तरफ से पेड़ लगाएं जहाँ भी जगह मिले वहाँ, यही कर सकते हैं। और क्या,
1: साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, जैसे कोई मान लो रोड पे कई लोग केले के छिलके वगैरह फेंक देते हैं तो मैं खुद उसको उठा के एक साइड में फेंकता हूँ और लोगों को समझाता हूँ कि इसके चलो कोई फिसल जाएगा तो नुकसान हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है।
0: नहीं नहीं, अपना नंबर वन है इंदौर स्वच्छता के, इसमें तो ये तो
1: मैडम लोग फेंकते हैं, मेरे सामने फेंकते हैं तो मैं उनको,
0: हाँ कुछ लोग इस बात को
1: करता हूँ तो उठा के, हाँ अपने को नहीं अगर लग रही किसी दूसरे को लग सकती।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई, है ना। सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत। आपने आपने किस फिल्म, हाँ आप फिल्म फिल्म कौन सी बताई थी आपने?
1: बजरंगी भाईजान और इसी कव्वाली अदनान सामी की आवाज में भर दो झोली मेरी या मोहम्मद।
0: जी जी जी जी, भर दो झोली अदनान सामी की आवाज में सुनवा देते हैं आपको आपकी पसंद का।
1: बहुत
0: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार
1: जी, नमस्कार पद्मश्री जी को।
0: नमस्कार नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ मैं। धन्यवाद।
0: जी, अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी आज फिल्म का नाम रहेगा कभी कभी।
0: कभी कभी फिल्म का कौन सा गीत?
1: मेरे घर आई एक नन्ही परी। आज मेरी एक बिटिया बिटिया का जन्मदिन है, इसलिए
0: अच्छा, कितने साल की हो गई
1: ये
0: वो?
1: फिल्म अभी उसने 23 तारीख को अभी यूपी बोर्ड का रेजल्ट करा था। 10वीं में उसके 88% नंबर आए हैं,
0: ओहो
1: पास हो
0: हो,
1: गई है।
0: बहुत बहुत बधाई हो आपको।
1: जी
0: बेटियां
1: धन्यवाद।
0: इतने अच्छे नंबर लाती हैं और अच्छे नंबरों से पास होते हैं, हमें बड़ा गर्व होता है ना?
1: जी उसके लिए दुआ करें सब कि वो बाबा उसका जीवन आनंद पूर्ण गुजरे।
0: जी। कौन सा सब्जेक्ट लेने का सोचा है उन्होंने?
1: मैथ लेगी जी।
0: मैथ्स लेंगी। बहुत अच्छा लगा। आज उनका जन्मदिन है तो सुनवा देते हैं। आप वो सुन रही हैं? वो सुनेंगी ये गीत?
1: जी
0: आपके साथ हैं?
1: हाँ, घर
0: जी।
1: में ही मेरी दुकान है ना, मैं यहीं रहता
0: अच्छा
1: हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा तो चलिए, उनको डेडिकेट किया है आपने, तो उनके साथ सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गीत। बहुत प्यारा गीत है, सुनते हैं।
1: जी धन्यवाद मैम
0: धन्यवाद
1: फोन लेने के लिए।
0: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो।
1: अरे दीदी सारा सब प्रेम प्यार
0: हेलो।
1: परम अरे दीदी सारा सब प्रेम प्यार है। नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी, मैं आपका वही जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
0: मैं बढ़िया हूँ, और आप कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। रेडियो सुनने में रहता व्यस्त हूँ, आप लोगों से वार्तालाप करने का इच्छुक रहता है। जब फोन लग जाता है बहुत ही खुशी प्रसन्नता होती है और मेरा हृदय तो गदगद होता
0: अच्छा, चलिए बता दें आज कौन सा गीत सुनेंगे।
1: है। दीदी आज अनुताओं फिल्म का नाम है अराउंड द वर्ल्ड।
0: अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आप सुनेंगे? जी जी
1: मुकेश
0: जी
1: और शारदा जी ने गीत गाया है।
0: जी बहुत अच्छा गीत है ये, और काफी दिनों बाद सुनने मिलेगा ये। वैसे
1: ये
0: ज्यादातर
1: गीत के बोल हैं,
0: हाँ,
1: चले जाना जरा ठहरो किसी का दम निकलता है। ये प्यारा सा सुरराग
0: हाँ
1: भक्ति
0: जी
1: वाला
0: जी
1: गीत
0: जी
1: आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।
0: जी
1: एम
0: जी
1: एस
0: जी
1: हॉटलाइन इंदौर से।
0: जी जी जी बिल्कुल सुनवाएंगे आपको ये गीत, सुनवा देते हैं। आपने गाना गा भी दिया है तो अब जी
1: जी, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मथुरा में तो इस वक्त काफी गर्मी हो रही है, चिलचिलाती हुई गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं, धूप खिली हुई है, और ऐसे वातावरण में आपसे वार्तालाप करके बहुत ही सुखद अनुभूत हो रही है।
0: जी जी जी जी थोड़ा सा रेडियो सेट, शायद आपने रेडियो पर सुन रहे हैं क्या प्रोग्राम?
1: नहीं दीदी, मैं तो बाहर खड़ा हूँ, नहीं चल रहा है, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन पर सुनता हूँ।
0: अच्छा, नहीं, थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब आ रही है इसलिए सब पूछा।
1: हाँ हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी।
0: हाँ, आप सड़क पर हैं
1: जी
0: शायद,
1: जी बिल्कुल, मैं सड़क पे हूँ। क्या है कि नेटवर्क,
0: नेटवर्क आता जाता रहता है।
1: जी, इसीलिए प्रॉब्लम होती है
0: जी
1: थोड़ी।
0: जी
1: दीदी
0: जी चलिए सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: हम कोशिश करते रहते हैं आप लोगों से वार्तालाप हो जाए और हम अपनी पसंद के गीत सुन सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बैठे ही हैं आपके पसंद के गीत सुनवाने के लिए।
1: दीदी बिल्कुल,
0: जी
1: आप तो श्रोताओं को मनोरंजन करती हैं, उनका हृदय को गदगद कर देती हैं, खुश कर देती हैं, और जब श्रोता अपने वास्तव में बड़ी खुशी प्रसन्नता होती है, हमारा एकदम दिन बन जाता है।
0: जी जी जी जी चलिए अपना दिन बनाइए, अपनी पसंद का गीत सुनिए। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: जी

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, एमएच हॉटलाइन,
0: एमएच हॉटलाइन, स्वागत
1: परीक्षा
0: है
1: जी,
0: आपका।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से मोहम्मद तस्लीम शेख बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ, आप सुनाइए, आपके
0: अभी
1: क्या?
0: तो आप शायद ड्यूटी पर होंगे, या फिर शायद जनगणना में ड्यूटी है आपकी।
1: नहीं, वो फहीम मोहम्मद के मेरे बड़े भाई
0: अच्छा,
1: हैं।
0: आपके बड़े भाई साहब की है।
1: हाँ, वो
0: ओके।
1: मेरे तो फ्लोर मिले हैं,
0: अच्छा,
1: बाकी जो
0: आपकी
1: आए थे।
0: आपकी फ्लोर मिले। हाँ,
1: जी,
0: आज
1: हीरो
0: कौन सा गीत पसंद किया है आपने, बताएं।
1: फिल्म में गीते मन्नर उदास और अनुराग पोरवार की आवाज में, तू
0: जी।
1: मेरा जानू तू मेरा दिलबर है, मेरी
0: आप
1: प्रेम कहानी का तू हीरो है।
0: जी, आप पुरानी के साथ साथ थोड़े नए टाइप के गाने भी पसंद करते हैं, ये है आपकी।
1: जी, जो अच्छे खूबसूरत गीत होते हैं
0: जी
1: और बहुत कम बचते हैं।
0: हाँ, ये गीत तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत दिनों बाद सुनाई देगा रेडियो पर, काफी दिनों से सुना नहीं है ये गीत।
1: ये फिल्म रिलीज हुई जब मैं 7 ही पढ़ता था,
0: हाँ अच्छा,
1: और कुछ गीत ऐसे रहते हैं जिनसे यादें जुड़ी हुई होती और यादें जीने का सहारा
0: जी
1: होती है। जी,
0: आप शायद पढ़ते होंगे उस समय ये फिल्म जब रिलीज हुई थी,
1: 7ही में, 7ही में था
0: सातवीं
1: इसलिए।
0: में। हाँ, नहीं, ये गीत तो हमने भी देखी थी
1: और
0: और बहुत सुपरहिट फिल्म थी, यानी ऐसा कोई भी नहीं
1: सुपर
0: होगा जिसने
1: सुपर
0: देखी
1: डुपर
0: ना
1: हिट,
0: हो।
1: हाँ सुपर डुपर हिट फिल्म होती, सारे गीत हिट
0: सारे
1: होते।
0: गीत बहुत अच्छे थे इसमें।
1: जी, उस वक्त तो में बहुत धूम मची थी इसके गीतों में।
0: बहुत बहुत, इसलिए तो वो फिल्में उस समय इस तरह की बनती थी, जो अभी भी हम देखेंगे तो अभी भी हमको बहुत मजा आएगा देखेंगे तो।
1: हाँ, ये बात सही है, बहुत
0: अब वैसी फिल्में बहुत कम बनती हैं, उस समय बहुत
1: कम
0: मेहनत
1: बनती,
0: से डायरेक्टर लोग बनाते थे, गीत
1: सब सब
0: संगीत
1: मेहनत
0: भी
1: करते थे, गीतकार
0: हाँ
1: संगीतकार गायक सब सब मेहनत
0: सही
1: करते
0: बात है। सुभाष घई की फिल्म है ये,
1: थे।
0: और बहुत मेहनत से बनाते थे वो फिल्म।
1: जी,
0: चलिए चलिए, सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। जी,
1: शुक्रिया।
0: शुक्रिया।

0: हेलो
1: हाँ
0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: भूपेंद्र कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से।
0: जी, नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। पहले बता दें कौन सा गीत सुनेंगे?
1: दहलीज का सुना दो आपको।
0: दहलीज
1: मेरी
0: का
1: बहुत बढ़िया गाया है।

0: महेंद्र कपूर और भूपेंद्र सिंह ने.
1: अच्छा अच्छा अच्छा. हसन कमाल के बोल हैं.
0: हसन कमाल के बोल हैं. रवि का संगीत है क्या?
1: रवि का संगीत बिल्कुल सही. पुराने पुराने गीत पसंद करते हैं आप कि मिडिल मतलब पुरना
0: मैं जुड़ूंगा तो बहुत गीत सुनूंगा पुराने पुराने. आप देखे जाओ.
1: हाँ हाँ हाँ हाँ. आपके पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होगी जिसमें पुराने गीत अच्छे वाले होंगे.
0: दिमाग में इतनी उथली हो रही है खूब लंबी लिस्ट है.
1: हाँ. कितने सालों से सुन रहे हैं रेडियो?
0: अरे बचपन से यही शौक है अपने को.
1: अच्छा तो रेडियो है आपके पास या अभी मोबाइल से सुन रहे हैं?
0: रेडियो भी है मोबाइल भी है जितने मर्जी आए उससे सुन रहे
1: हैं. अच्छा और रेडियो कितना पुराना है आपके पास?
0: मोबाइल में मजा नहीं आता.
1: मोबाइल में मजा नहीं आता सही कहा. मेरे पास भी है रेडियो. मैं रेडियो पर ही सुनती हूँ. जी जी. आपके पास कितना पुराना रेडियो है?
0: मेरे पास 41 साल पुराना रेडियो.
1: 41 साल. ओहो.
0: 45 फिलिप्स का है.
1: फिलिप्स का. और अच्छा चलता है अभी? उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती?
0: बढ़िया चल रहा है. उसे सर्कस की कार की तरह हो रहा है टूट फूट के.
1: हाँ. अब उस रेडियो को चलाने वाले इतने प्यार से चलाते हैं तो वो खराब कैसे हो सकता है?
0: नहीं कर लेते थोड़ा वो ठीक है.
1: हाँ हाँ हाँ. बीच बीच में कुछ सुधार करना पड़ता है तो वो हो जाता होगा.
0: हाँ हो जाता है सुधार.
1: चलिए बहुत अच्छा लगा. अब आपने आपने कहा है कि पूरा गाना सुनवाए. गाना पूरा सुनवा देते हैं है ना. अच्छा गाना है बिल्कुल. सुनिए सुनिए रेडियो सेट पर. जी धन्यवाद. धन्यवाद
0: आकाशवाणी इंदौर को भी बहुत बहुत धन्यवाद.
1: जी धन्यवाद आपको भी.

0: हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ, देवास से।
0: रानू जी देवास से बात कर रही
1: जी
0: हैं। अच्छा, कौन सा गीत सुनेंगे? गीत बता दें।
1: मूवी का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे, वो उसी का टाइटल ट्रैक सुनना।
0: टाइटल सॉन्ग सुनेंगे आप? जी, बिल्कुल
1: जी
0: सुनवाएंगे आपको। ये फिल्म देखी है आपने?
1: हाँ, बहुत अच्छी मूवी है। ऋतिक
0: अच्छा, कौन कौन है इसमें?
1: रोशन, अमीषा पटेल, मतलब अच्छी मूवी है, मतलब मुझे बहुत पसंद आई।
0: अच्छा हाँ,
1: हाँ
0: गाने भी
1: जी,
0: बहुत सारे हैं इस फिल्म में।
1: और मूवी भी अच्छी है वैसे, मतलब मोहब्बत के ऊपर है लेकिन है बहुत अच्छी।
0: अच्छा।
1: जी
0: और इसी तरह की फिल्में देखती हैं आप? नई फिल्में पसंद करती हैं?
1: वैसे तो हाँ, मैं ज्यादा नहीं भी सुनती हूँ, बट कभी कभी आपके यहाँ मिलते नहीं सॉन्ग तो फिर 90s के सॉन्ग भी सुन लेती हूँ
0: अच्छा, नहीं
1: ऐसा।
0: नहीं हमारे पास तो 40 के दशक से अभी तक के सभी गाने
1: नहीं,
0: हैं,
1: बट
0: मिल
1: कभी कभी
0: जाते हैं।
1: नेटवर्क इश्यू रहता है ना, तो हो जाता है ऐसा। वैसे तो मिल जाते हैं लेकिन कभी कभी नहीं मिल पाते हैं ऐसा।
0: कभी कभी फोन नहीं लग पाता आपका, तो
1: हाँ, फोन
0: आप
1: नहीं,
0: जुड़ नहीं।
1: फोन तो लग जाता है लेकिन आपके यहाँ 2 नंबर है ना, तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती कि इस नंबर पे लगाऊं कि इस नंबर पे लगाऊं
0: दो फोन रख लीजिए, दोनों पे चालू,
1: ऐसा।
0: दोनों पे लगा लीजिए, किसी में तो लग ही जाएगा।
1: नहीं, फोन तो हमारा अगर हम लगाने बैठे तो लगता है,
0: लग
1: लेकिन
0: जाता
1: बस
0: है।
1: ये है कि कभी कभी सुबह का टाइम है ना, थोड़ा सा बिजी रहते हैं, मतलब ऐसा।
0: इस समय खाना बन रहा होगा घर में?
1: जी, खाना तो बन चुका है, बस खाने की देरी है। तो मैंने वो भी मैंने सोचा चलो लगाती हूँ, बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब रिसीव हो जाएगा, क्योंकि 2 रिंग मेरी कंटिन्यू जा चुकी
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छा हुआ
1: थी।
0: आपका फोन लग गया, है ना। और आज
1: हाँ
0: आज क्या बनाया है आपने खाने में?
1: देखो, आज तो मैंने कैरी का पना है
0: अच्छा
1: और कद्दू की सब्जी बनाई हुई है और रोटियां हैं। वैसे दाल चावल मेरे यहाँ शाम को पर डे ही बन रहा है अभी गर्मी में तो।
0: दाल चावल शाम को
1: जी
0: अच्छे लगते हैं, हल्का खाना
1: हाँ हाँ बस
0: अच्छा
1: वही
0: लगता
1: वही
0: है
1: है,
0: गर्मी
1: खिचड़ी
0: के
1: है
0: दिन
1: या
0: में।
1: फिर दाल चावल है ना ऐसा।
0: और
1: बट
0: पना
1: शाम को पना
0: पना कैसे बनाया आपने?
1: मैंने क्या किया था, जो कैरी को मतलब कभी कभी तो सेक लेती हूँ और कभी कभी पानी में उबाल लेती हूँ, फिर उसको मतलब अपने हाँ उसको मिक्स ऐसे कर लेती हूँ, उसका रस निचोड़ लेती हूँ। फिर
0: जी
1: जिसको तीखा खाना है तो नमक मिर्च डाल देती हूँ, जिसको मीठा खाना है तो मतलब मीठा मिर्च ये कि मुझे चावल के साथ बहुत पसंद है कैरी का बना, वो
0: अच्छा
1: चावल खाओ तो सिंपल वाले
0: हाँ, यानी खट्टा
1: ऐसा।
0: मीठा भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं,
1: हाँ
0: या
1: मीठा
0: तीखा
1: भी
0: भी
1: खा
0: खा सकते हैं,
1: सकते
0: किसी
1: हैं।
0: तरह से भी खा
1: हाँ
0: सकते हैं।
1: और गर्मी में बहुत अच्छा है ना, लू से बचाता है
0: इसीलिए पूछा
1: इसलिए। हाँ
0: कि पना आपने बनाया है, तो ये गर्मी का उपाय ही है बहुत बड़ा इन
1: हाँ हाँ
0: दिनों
1: सही बात है।
0: केरी
1: और
0: का
1: वैसे भी
0: उपयोग।
1: कहीं जाना चाहिए तो प्याज रख कर ही जाना चाहिए, ये भी मैं बहुत बड़ा उपाय मानती हूँ, उसको भी बिलीव करती हूँ इस बात पर भी।
0: बिल्कुल नहीं है ना, आयुर्वेद
1: हाँ
0: में इतनी ताकत है कि किसी भी बीमारी को दूर कर सकता है।
1: जी,
0: जी,
1: और आपकी तारीफ सुन रही थी प्रोग्राम में, और क्या है, तो मुझे भी मतलब अच्छा लगा कि यार मैडम अच्छी है
0: नहीं
1: इसलिए
0: नहीं
1: क्या।
0: आप हैं तो हम हैं,
1: जी
0: आप
1: जी
0: जी
1: सही
0: जी
1: बात है,
0: श्रोताओं
1: मतलब
0: के कारण ही हम हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं।
1: नहीं, कोई कोई अनाउंसर इतने अच्छे से बात करते तो एकदम जहन में रह जाते। एक आपके यहाँ वो शीला मैम आती हैं, मतलब मेरी उनसे एक ही बार बात हुई है, बट उन मतलब आज तक उनका एक तो उनका नाम भी याद रह गया और उनकी बातें भी याद कर लेती हूँ कभी कभी।
0: हाँ नहीं, हमारे सभी सहपाठी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं।
1: हाँ,
0: हाँ जी,
1: तो प्ले कर
0: चलो
1: दीजिए मेरा
0: चलिए,
1: सॉन्ग
0: बिल्कुल बिल्कुल प्ले करती हूँ आपका सॉन्ग, सुनिए
1: और
0: अपने रेडियो सेट।
1: डेडिकेशन आपको रहेगा। ओके
0: जी, धन्यवाद।

0: तो ये था आज का MH हॉटलाइन कार्यक्रम। अब अनुमति दे पद्मश्री तपस्वी को, नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन,
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
2: है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है छाया पाठक ने।
3: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, इन दिनों हम सभी भयानक गर्मी से जूझ रहे हैं। तापमान दिन ब दिन अपना विकराल रूप लेकर हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि शायद कहीं न कहीं इस बढ़ते तापमान के जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, कंक्रीट की सड़कें, गगनचुंबी इमारतें, एसी, कूलर और पानी का दुरुपयोग निश्चित तौर पर हमें बढ़ते तापमान की ओर धकेल रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और हमारे इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आज हमने अपनी बातचीत का विषय भी यही कुछ रखा है। हमारी बातचीत का आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण किसकी जिम्मेदारी, या इसके प्रति हमारा दायित्व क्या है। तो आइए बात करते हैं हमारे सबसे पहले कॉलर से। हेलो,
4: हेलो,
3: फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताएं कौन बोल रहे हैं?
4: मैडम,
3: आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, मैं हूँ छाया।
4: अच्छा, तो मैम आज का विषय क्या है? मैम,
3: हमारा आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण किसकी जिम्मेदारी। जी, इस बारे में कुछ बताएं और अपना नाम भी बताएं।
4: हाँ मैडम, पर्यावरण के बारे में साफ सफाई होनी चाहिए, थोड़ा सा दूषित घर के बाहर कचरे वगैरह नहीं होने चाहिए।
3: जी, होनी चाहिए वाली बात नहीं है, हम ये कह रहे हैं जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है ना।
4: हेलो,
3: हाँ, जिम्मेदारी इसमें हमारी ही है ना।
4: नहीं मैडम, जिम्मेदारी हमारी है कि हम जो है घर के आसपास पेड़ों को लगाएं। हम लोग ने तो बहुत पेड़ वगैरह, पेड़ों को लगाना चाहिए। और बताइए
3: जी, और इसके अलावा
4: पानी की थोड़ी व्यवस्था, जो बरसात वगैरह आते हैं वैसे पानी जो है कम इस्तेमाल करते हैं। गर्मी के टाइम है तो पानी कुएं वगैरह बहुत सूख जाते हैं, तो पानी जितना हो सके कम इस्तेमाल करना चाहिए। कपड़े के पानी जो धुले पेड़ों में डालना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। मैडम, कचरे वगैरह जो है थैलियों में डाल के डस्टबिन वाला आता उसमें डालना चाहिए।
3: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने ये। चलिए, आपका नाम तो बता दीजिए।
4: मैडम, मेरा नाम बॉबी टंडन है।
3: जी,
4: बॉबी टंडन।
3: बॉबी टंडन कहाँ से?
4: सतना, MP।
3: सतना से बोल रही है, MP से। जी, चलिए, आपके विचार जानकर बहुत अच्छा लगा।
4: तो मैडम
3: जी,
4: और कुछ पूछना चाहती है तो पूछ सकती है?
3: नहीं नहीं, बस बस इतना ही, आपके विचार जान लिए।

0: हेलो
1: हेलो जी मैडम, नमस्ते। थोड़ी
0: नमस्ते।
1: आवाज कम आ रही है। ओम
0: हम जान सकते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं?
1: प्रकाश नेमा जी, विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम
0: ओम प्रकाश नेमा जी।
1: जी।
0: जी बताएं, कार्यक्रम आज है हमारा बात आपकी गीत हमारे, जिसमें आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण, किसकी जिम्मेदारी?
1: ये सब अपन की जिम्मेदारी है मैडम।
0: बिल्कुल अच्छी बात बताई, अपनी ही जिम्मेदारी है, तो हमें क्या करना चाहिए?
1: अपन को क्या करना चाहिए? अपन को ये करना चाहिए, पेड़े ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए।
0: इसके अलावा
1: जितने भी मतलब तुम्हारी जैसे जन्मदिन उत्सव है, बहाना होना चाहिए पेड़ लगाने का। सीधी सी बात कहने का मतलब ये है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहाना कोई ना कोई चाहिए इससे,
1: हाँ
0: और
1: चाहिए,
0: बहाना भी
1: थोड़ा
0: होगा,
1: पर्यावरण
0: पेड़
1: की
0: भी रहे।
1: सुरक्षा के लिए। जी
0: इसके अलावा अकेले
1: इसके
0: पेड़
1: अलावा एक बात और है कि सारी जिम्मेदारी जो सरकार के ऊपर है कि कहीं सफाई होती है या कुछ भी होती है ना, तो वो सरकार तो करवाती है, लेकिन अपन को उसको सुरक्षा करने के लिए अपन को वहाँ कचरा नहीं डालना है। अपनी अपनी भी तो कुछ जवाबदारी है उसमें। जी
0: कचरा यहाँ वहाँ ना फेंके, वो भी तो
1: हाँ, कचरा
0: पर्यावरण
1: यहाँ वहाँ ना
0: प्रदूषित।
1: डाले और वायु प्रदूषण भी ना होने दें, कोई पनी वगैरह पॉलिथीन है जो उसको न जलाएं,
0: प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक भी छोड़ना
1: प्लास्टिक
0: है।
1: वगैरह
0: हाँ
1: उसको ना जलाएं। जैसे ये खेतों में वो पराली जला देते हैं उसको भी ना जलाएं। माने जो भी अपन को लोग बोलते हैं पर्यावरण से सुरक्षा के लिए, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए।
0: जी बिल्कुल सही, ये पंक्ति भी फिर बहुत सही बैठती है कि प्लास्टिक छोड़ो, आदत बदलो, प्रकृति से फिर नाता जोड़ो। चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: सोनू तंतुवाय जी शोर से थोड़ा दूर हो जाएं।
1: जी मैडम, जी मैडम, हो गया, दूर हो गया।
0: हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं, जगह का नाम बताएं।
1: ग्राम पटेरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: मध्य प्रदेश से जी, बताएं
1: जी,
0: और क्या
1: जिला
0: हाल चाल
1: दमोह।
0: है।
1: और मैडम, हाल चाल तो ठीक है मैडम, अभी तो मौसम ठीक है, बारिश हुई है कल रात में।
0: मौसम थोड़ा सुहावना हो गया है ना।
1: हाँ, सुहावना
0: हाँ,
1: मौसम हो गया
0: वैसे
1: मैडम।
0: हम लोग देखिए कितनी गर्मी अभी इतने दिनों से पड़ रही थी, अभी भी वापस
1: जी
0: भी फिर से गर्मी आ जाएगी। तो हमने आज का
1: हाँ
0: विषय भी रखा है कि जो पर्यावरण संरक्षण है या
1: जी
0: पर्यावरण
1: मैडम,
0: को हम प्रदूषित कर रहे हैं उसके कारण गर्मी से भी हम जूझ रहे हैं, तो
1: जी
0: इसमें
1: मैडम,
0: किसकी जिम्मेदारी है।
1: इसमें मैडम अपनी अपनी समाज की जिम्मेदारी है, अधिक से अधिक पौधे लगाएं, पर्यावरण को बचाएं, और पेड़ पौधे का मतलब काटने से रोकें, और कहीं जंगल में आग लगी तो आग बुझाने के प्रयास करें, जिससे हरियाली रहेगी तो बारिश होगी, बारिश होगी तो आगे भविष्य में
0: अच्छा,
1: आने वाली पीढ़ी को
0: कुछ
1: भी ठीक रहेगा।
0: बिजली वगैरह का उपयोग भी, जो हम उपयोग तो कम दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, एलईडी बल्ब वगैरह का उपयोग आप लोग करते हैं।
1: जी मैडम, एलईडी बल्ब भी लगाते गाँव में, हम लोग एलईडी बल्ब का उपयोग करते हैं।
0: एलईडी बल्ब का उपयोग करते हैं
1: जी मैडम,
0: जी। चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: जी नमस्कार मैम, मैं
0: नमस्कार, आज का
1: अनिता बोल
0: विषय
1: रही हूँ
0: है।
1: रीवा
0: जी,
1: से।
0: दा बोल रही हैं रीवा से। आज हमारे कार्यक्रम का नाम है बात आपकी गीत हमारे, जिसका विषय है पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी।
1: जी
0: बताएं कुछ इस विषय पर, आप क्या पर्यावरण के लिए करती हैं? पानी से, बिजली से, पर्यावरण से, पेड़ से, कुछ भी जिस संबंध में आप बताना चाहें।
1: पेड़ों की सुरक्षा, पेड़ लगाना, पौधे लगाना, हमारे यहाँ ये बेल के पेड़
0: काय के
1: लगा
0: पेड़
1: दिए उसकी
0: लगाए आपने?
1: सुरक्षा। जी
0: काय के पेड़ लगाए? बेल।
1: बेल बेल
0: बेल, अच्छा। बेल का
1: जी
0: शरबत
1: बहुत
0: भी गर्मियों में बनाते हैं लोग, ठंडा होता है
1: बनता
0: ना?
1: है मैम। हमारे यहाँ सामने जो जगह रहती है रोड के पास में, तो वहाँ पर बेल के पौधे छोटे भी लगे हैं और बड़े भी हो गए, कुछ पहले लगाए थे। और जो फूलों के पेड़ वगैरह रोड के बगैर रोड में जो जगह रहती है बाजू में हमारे यहाँ, तो वहाँ लगाते रहते हैं हम लोग, और उस पानी भी देते हैं उसमें।
0: पानी भी देते हैं। चलिए, मतलब आप घर के अलावा, घर के बाहर, रोड के उस पार पेड़ लगाती हैं ताकि आने

0: जाने वालों
1: छोटी
0: को
1: बगिया
0: भी।
1: है मेरी जो घर के सामने गार्डन है,
0: अच्छा, घर के सामने।
1: उसमें भी फूल पौधे लगाती रहती हूँ।
0: क्या काय के पेड़ लगे हैं आपके यहाँ?
1: जैसुन का लगा है,
0: अच्छा, तो आप ये मानती हैं कि
1: आम वगैरह
0: पर्यावरण के
1: के
0: लिए
1: पेड़ भी
0: हमारी
1: लगे हैं
0: जिम्मेदारी है,
1: जी।
0: पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, उसका संरक्षण करने में जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है, ये मानती हैं आप?
1: जी मैम, बहुत जी, बहुत ज्यादा।
0: हाँ, बिल्कुल, बात अच्छी कही आपने। भाई, हम ही नहीं ध्यान रखेंगे तो हम ही परेशान हो रहे हैं, हो भी कौन रहा,
1: पेड़
0: और हम आने वाली पीढ़ी
1: पौधे
0: को और
1: लगाते
0: क्या दे
1: रहना चाहिए,
0: जाएंगे?
1: और पानी, जैसे पानी की भी सुरक्षा करना चाहिए
0: पानी
1: पीने।
0: की सुरक्षा करना चाहिए।
1: जी
0: जी।
1: मैम, अगर पानी चल रहा है तो उसको अपने हिसाब से मतलब बंद कर देना चाहिए,
0: हाँ, नल यहाँ वहाँ लोग
1: फैलाना नहीं
0: खुला भी
1: चाहिए।
0: छोड़ देते हैं, बह रहा है बह रहा है, हमें क्या करना, हमारे यहाँ तो बहुत पानी है। कई लोग ये भी सोच
1: जी,
0: रहती है
1: छोड़
0: कि
1: रहे
0: भाई
1: हैं खुला।
0: पानी हमारे यहाँ तो बहुत आता है तो क्यों बचाएं, ये सोच गलत है ना?
1: जितनी जरूरत है उतना पानी वेस्ट करें।
0: जी, नमस्कार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बात आपकी गीत। हमारी ये रिकॉर्डिंग होती है प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660902, एसटीडी कोड है 0755। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, नाम बताएं अपना। इसमें हमारा आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण करने में हमारी क्या जिम्मेदारी है, आप कुछ बताएंगे इस बारे में?
1: इस बारे में यही है कि मतलब जंगलों में ये ज्यादा आग लगती है, ये आग ना लगे और पानी वानी बचाए।
0: जंगलों में जो आग लगती है उसके पीछे कौन जिम्मेदार होता है, क्या सोचना है आपका?
1: उसके पीछे भी मतलब
0: कहीं ना कहीं
1: हम ही वाला जिम्मेदार है उसके पीछे भी।
0: बिल्कुल, हम ही जिम्मेदार होते हैं, है ना। हम यहाँ वहाँ कभी कुछ भी इस तरह का ज्वलनशील पदार्थ फेंक देते हैं जिससे हम अनजान रहते हैं
1: जंगल में। उसने एक सींक डाल दी,
0: बस डाल दी,
1: नहीं चिलक जाती है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: कई बार शहरवार बोल रहा हूँ उसमें।
0: कौन बोल रहे हैं आप?
1: मिथिलेश अहिरवार, जिला रायसेन, मेरे गांव का नाम है ग्राम चीखली।
0: मिथिलेश अहिरवार जी,
1: हमारे इधर पानी की बहुत परेशानी होती है, दूर से लाते हैं भर के, फिर नहीं आता। तो
0: अब बताइए, तब भी लोग इसका महत्व नहीं जानते, और जब बहुत होता है घर में या बारिश के समय भी देखिए कितना दुरुपयोग करते हैं, लगता है अब तो पानी पानी है। या जिसके घर बहुत पानी है, जिसके घर पानी की कमी नहीं है, मान लीजिए हैंडपंप है, तो वो वो इतना उपयोग नहीं इसका समझता कि भाई इसका कितना महत्व है, इसके बिना सारा संसार सूना है।
1: जब उसके घर पर तो पानी की कमी नहीं है तो उसे नहीं होती दिक्कत।
0: और
1: सोचता है हमारे इधर तो बहुत पानी है तो हमें दिक्कत नहीं है, ये सोचते हैं।
0: हाँ, जो हो रहा है परेशान वो जाने उसके यहाँ कम आ रहा है
1: जी,
0: है ना।
1: ये जानते हैं ये तो जिनके इधर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है।
0: भाई जल है जीवन, इसे बचाओ, है ना। हर बूंद की कीमत सबको समझाओ, ये बात अगर सब लोग समझ जाएं तो फिर कहने ही क्या है, फिर किसी को भी परेशानी नहीं होगी। जितना जल है,
1: पानी बचाए, बिजली अपने हिसाब से खर्च,
0: बिजली अपने हिसाब से खर्च,
1: हर चीज नियम के अनुसार ही चलाए तो बहुत अच्छा।
0: बस ऐसी सोच सब रखें तो बहुत अच्छी बात है। फोन करने के लिए धन्यवाद मिथिलेश जी। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे।
1: हेलो
0: हाँ,
1: हेलो,
0: हमारी बात किससे हो रही है, हम जानना चाहते हैं।
1: मुकेश प्रजापत निसरपुर से बोल रहा हूँ मैं।
0: मुकेश प्रजापति जी कहाँ से?
1: हेलो, निसरपुर से बोल रहा हूँ मैं।
0: निसरपुर, ये कहाँ
1: हाँ
0: पर
1: जी,
0: है?
1: धार जिले में।
0: अच्छा, अभी धार में कैसी गर्मी पड़ रही है?
1: बहुत भयंकर, 40 डिग्री समथिंग पड़ रही मैम।
0: तो फिर गर्मी में पानी की व्यवस्था आपके यहाँ बराबर है कि नहीं है?
1: जी, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था बराबर है, नदी पास में है ना मैम,
0: नदी पास है, बिजली?
1: बिजली भी बराबर है।
0: अच्छा, बिजली भी है। तो फिर आप इसको कुछ बचाने के लिए, कुछ इसको सहेजने के लिए कुछ करते हैं?
1: जी, हमारे पास मतलब 150 किलोमीटर पे डैम बना हुआ है मैम, वहाँ पे पानी बहुत सारा रोका हुआ था। जो हमारा निसरपुर है ना, ये भी पूरा डूब में चले जाता है मैम, ये भी पूरा डूबा हुआ रहता है
0: अच्छा,
1: जी, इतना मतलब पानी
0: इतना पानी
1: रहता
0: रहता।
1: रहता है।
0: हाँ, हमने आज की हमारी बातचीत का विषय कुछ यही रखा है कि पर्यावरण संरक्षण में हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो आपके यहाँ तो पानी पानी रहता है,
1: हाँ,
0: तो
1: पानी
0: आप
1: पानी
0: पानी के
1: रहता है,
0: अलावा
1: यहाँ तो पानी
0: बिजली,
1: हमेशा भरा हुआ ही रहता है।
0: जी, तो तब भी आप उसको सहेजने में कुछ, या उसका दुरुपयोग करते हैं पानी बहुत है तो?
1: हाँ करते हैं, जैसे नल खुला नहीं रखना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको बचाओगे तो पानी बचेगा, नहीं तो कैसे बचेगा।
0: कैसे बचेगा? और
1: हाँ,
0: बिजली के लिए क्या करते हैं?
1: बिजली के लिए जैसे अपन बाहर चले गए, लाइट को बंद रखो, पंखे बंद करके रखो, हाँ ऐसा बचा के रखिए, तब बचेगा, और
0: भाई,
1: बिजली
0: जहाँ
1: की
0: तक
1: भी
0: हो
1: बचत
0: सब
1: होगी।
0: एक ही कमरे में बैठे, अलग
1: हाँ,
0: अलग कमरों में पंखे लाइट जलाकर जो बैठते हैं, कूलर चलाकर, वो
1: एक
0: थोड़ा
1: ही
0: सोच
1: कमरे में
0: समझ कर
1: बैठे तो वो
0: करें।
1: भी अच्छा रहेगा।
0: हाँ, मिलजुल कर रहे हैं भाई, एक साथ भी रहेंगे तो इससे साथ भी बना रहेगा और ऊर्जा भी बचेगी।
1: आप कौन कौन मैम बोल रहे हो?
0: जी, मैं छाया पाठक बोल रही हूँ।
1: मैम, आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है हमें।
0: धन्यवाद बात करने के
1: जी
0: लिए, आपके विचार आपके जाने बहुत अच्छा लगा हमें भी। चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
1: आपको भी धन्यवाद।

0: कार्यक्रम बात
1: हेलो,
0: आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, हम जान सकते हैं आपका नाम? तो
1: मैं सुमत कुमार जैन पिंडरी जिला मंडला से बोल रहा हूँ मैडम।
0: आप फिर हमारे
1: हाँ
0: कार्यक्रम से और हमारे इससे सबसे वाकिफ होंगे कि आज हमारे कार्यक्रम का नाम है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी। तो कुछ इस बारे में अपने विचार बताएं।
1: पर्यावरण मनुष्य के जीवन का प्रमुख अंग है मैडम। अगर ये नष्ट हो जाएगा तो ये मनुष्य भी नष्ट की ओर पहुंच जाएगा। पेड़ पौधे, ये वायु, हवा, तूफान, जल, जीवन, सारे की सारी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। इन्हें हमें संजो कर रखना चाहिए। जैसा पानी का उपयोग है तो उसे जितनी जरूरत उतना ही उपयोग करना चाहिए। पेड़ पौधों को अनावश्यक रूप से काटना नहीं चाहिए। ये जीवन के बहुत बहुमूल्य अंग है मैडम। इनको अगर संजो के रखेंगे तो हमारा जीवन सुखमय व्यतीत होता रहेगा। पशु पक्षी, जीव जंतु, ये सारे की सारी चीजें हमारे पर्यावरण के अंग हैं,
0: और सब हमारे लिए प्रकृति की अमूल्य धरोहर है,
1: अमूल्य धरोहर है।
0: अमूल्य
1: जी
0: है। हाँ,
1: बहुत
0: जिसका
1: अच्छी,
0: कोई
1: बहुत
0: मूल्य
1: अच्छी,
0: नहीं है, लेकिन
1: जी
0: हम
1: जी
0: उसे नष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, और सबकी जिम्मेदारी है बराबर से। कोई ये ना
1: जी
0: सोचे
1: जी
0: मेरे अकेले से क्या हो रहा है।
1: नहीं, सबकी
0: हाँ,
1: जिम्मेदारी, बिल्कुल
0: थोड़ा
1: सत्य
0: छोटी
1: मैडम।
0: छोटी जिम्मेदारी सब निभाएं और
1: जी
0: मिलकर
1: जी
0: हम यदि इस
1: हाँ,
0: दिशा में
1: सरकार के
0: सोचे।
1: ऊपर ही पूरा
0: बिल्कुल,
1: बोझ डाल दें या ग्राम पंचायत के ऊपर पूरा बोझ
0: बस
1: डाल
0: बस
1: दें तो ये
0: बस,
1: भी गलत है।
0: सबको
1: हमें
0: लगता है
1: अपनी
0: हम क्यों
1: जिम्मेदारी
0: करें।
1: स्वयं निभाना
0: हाँ,
1: पड़ेगा।
0: हम
1: जी
0: क्यों करें, सब ये सोचते हैं। इस तरह से ही तो बर्बादी होती है बहुत सारी चीज़ों की।
1: बहुत अच्छी,
0: चलिए, फोन करने के लिए
1: बहुत अच्छा
0: धन्यवाद।
1: विषय रखा है आपने।
0: जी
1: आपको साधुवाद है, आपकी पूरी टीम को साधुवाद है।
0: चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी जी

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे।
1: नमस्कार,
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: मेरा नाम नितेश आर्यन, प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। कैसे
0: प्रयागराज से जी। चलिए
1: हैं आप?
0: बस बढ़िया है, आप बताएं आप कैसे हैं।
1: बहुत ही अच्छा, आपके कार्यक्रम सुनते रहते हैं फोन कार्यक्रम। जी,
0: चलिए
1: आप
0: आज के
1: कौन बात कर?
0: जी मैं छाया पाठक बोल रही हूँ। आज के कार्यक्रम का नाम है बात आपकी गीत हमारे, और जिसमें आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है कि
1: हाँ, ये
0: नहीं
1: आपने
0: है।
1: सही कहा।
0: जी आप
1: हाँ
0: इस पर क्या सोचते हैं, आप किस तरह से पर्यावरण बचाने में अपना सहयोग देते हैं, कुछ बताएंगे।
1: सुनते
0: जी
1: हैं आकाशवाणी, हम उनसे यही कहेंगे कि कहीं दूर ना जाना, अगर अगर पास में जाना तो पैदल जाएं, गाड़ी का ना इस्तेमाल करें, और
0: बहुत।
1: जो प्लास्टिक है उसको कम इस्तेमाल करें।
0: घर से एक थैला लेकर निकले, है ना,
1: जी
0: कपड़े का एक थैला हमेशा अपने पास रखें, वाहन का
1: जी
0: उपयोग कम से कम करें,
1: पैदली का सफर
0: आसपास
1: जाएं।
0: पैदल ही जाएं, या दूर जा रहे हैं आप तो एक ही दिशा में जाना है तो दो तीन लोग मिलकर भी जा सकते
1: साथ
0: हैं।
1: में ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर बहुत दूर का सफर है तो एक ही वाहन से सफर करें। हम कह रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसको बचाना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हमारा जो आने वाला समय उसको फिर क्या। जी
0: कुछ नहीं दे पाएंगे हम, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं।
1: बिल्कुल सही आता आपने। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
0: चलिए नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार, किससे बात हो रही मेरी?
0: मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ मैडम, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय डोंगरगांव महू जिला इंदौर से।
1: जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक बार नाम फिर से बताएंगे?
0: डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय डोंगरगांव महू जिला इंदौर से बोल रहा हूँ मैं मैडम। मेरा नाम है विवेक व्यास।
1: विवेक व्यास, तो आप वहाँ पढ़ाते हैं?
0: नहीं, मैं यहाँ पे हूँ मैडम, टेलीफोन ऑपरेटर हूँ यहाँ पे।
1: अच्छा, चलिए, आपके विचार हमें जानना है कि पर्यावरण संरक्षण में हमारी कितनी जिम्मेदारी है।
0: पहले तो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए, है ना। और आजकल ये हो गया है कि बहुत से लोगों के पास फोर व्हीलर है, तो
1: फोर
0: सब
1: व्हीलर,
0: अपनी अपनी गाड़ियों में अलग अलग। तो मेरा ये निवेदन है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक ही गाड़ी में जितने लोग हैं आ सके उसमें, है ना,
1: जी
0: वो एक ही गाड़ी का यूज करें, है ना। क्योंकि आज की स्थिति भी आप समझ सकती है ऐसी चल रही
1: बिल्कुल।
0: है हमारे यहाँ पे, है ना, ये युद्ध की वजह से, है
1: ट्रैफिक
0: ना।
1: नहीं,
0: दूसरी बात ये
1: ट्रैफिक
0: है
1: भी
0: कि
1: नहीं
0: सही
1: होगा,
0: बात।
1: ईंधन भी बचेगा आपका, पैसा भी बचेगा आपका, पर्यावरण भी बचेगा, बहुत सारी चीजें हैं यदि हम सोचें ये बात। पर क्या होता
0: दूसरी
1: है, कोई किसी के लिए समय नहीं देना चाहता, सबको
0: हाँ
1: लगता है
0: ये
1: कि
0: है
1: नहीं
0: ना,
1: भाई।
0: क्योंकि देखिए ऐसा है मैडम, शायद लोगों को ये बात थोड़ी सी चुभ सकती है, लेकिन हम आजकल क्या है कि हम दिखावा ज्यादा करते हैं, ये गलत
1: ये
0: है ना।
1: बात तो, हाँ
0: और एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार हम जैसे बच्चे वगैरह को लेकर, हम बच्चों को लेकर पिकनिक जाते हैं, है ना, तो ये बहुत से अपन ऐसा खाने का सामान ले जाते हैं, चिप्स ये सब चीजें हैं, तो क्या करते हैं अधिकतर लोग कि वहीं पे वो पानी की बोतल भी फेंकाएंगे, है
1: फेंक
0: ना,
1: आएंगे।
0: वो पैकेट वगैरह भी फेंक देते, तो ये भी गलत है ना।
1: बिल्कुल,
0: आप उसको एकत्रित कर लें और जो उचित जगह है वहाँ उसका मतलब उसको डालें। तो अभी ये छोटे छोटे प्रयास हैं जिससे हम अपने पर्यावरण की बहुत हद तक रक्षा कर सकते हैं।
1: नहीं, छोटे छोटे प्रयास ही तो बड़े उसमें परिवर्तन में बदलते हैं, ये सबको
0: क्या
1: सोचना
0: होता है
1: होगा।
0: मैडम कि मतलब क्या होता है कि कई बार मेरी लोगों से इस बारे में बात भी होती है, तो कहते हैं अरे यार हमारे एक करने से क्या होगा। तो मैंने कहा
1: हमारे कर
0: भैया बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ऐसा सब सोचने लगेंगे तो कोई करेगा ही नहीं ना।
1: बहुत
0: शुरुआत
1: बहुत
0: तो कहीं ना कहीं से होनी चाहिए।
1: बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। अब आपके माध्यम से हमारे बहुत सारे श्रोता इस बात को सुनेंगे और समझेंगे शायद, तो कुछ निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। और देखिए, जागरूक करते रहना हमारा सभी का काम है, सब एक
0: और ये
1: दूसरे को
0: जो
1: जागरूक करें, स्वयं तो हो, सबको करें।
0: पर ये जो गर्मी जो हम भुगत रहे हैं अभी, इसके लिए हम ही जिम्मेदार है
1: हम ही
0: क्या?
1: जिम्मेदार हैं, बिल्कुल, ये
0: क्योंकि ना
1: बात
0: आपको
1: मैंने
0: 45-40 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा
1: जा रहा
0: है
1: है, बिल्कुल।
0: ना जी। और मैं आपका नाम जानना चाहता था
1: जी,
0: मैडम।
1: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा
1: जी, आपसे
0: जी।
1: बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके विचार जानकर अच्छा लगा, आपने अपने इतने अच्छे विचार हमसे साझा किए, उसके लिए आपका धन्यवाद।

0: मित्रों, यदि हमको पर्यावरण बचाना है तो हमें खुद से इसकी शुरुआत करनी होगी। एक कदम तुम आगे बढ़ाओ, धरती माँ का कर्ज चुकाओ। आज संभालो ये अनमोल धरोहर, कल का भविष्य खुद ही संवारो। इसी संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे। ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया था छाया पाठक ने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
3: पंचायती राज मंत्रालय आज हैदराबाद में आत्मनिर्भर पंचायत पहल पर एक आउटरीच कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम की परिकल्पना और काम करने के तरीके से रूबरू करा रहा है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरम्भ हो गई। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने पद्म डोरी नाम की एक पहल लॉन्च की, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के एरी सिल्क और प्रदेश की चंदेरी बुनाई की विरासत को एक साथ पिरोया गया है। केंद्र सरकार ने देश भर में एलपीजी की काला बाजारी रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए कल 2300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में जमीन देने वाले किसानों को मिलने वाली विकसित जमीन का हिस्सा 50 से बढ़ाकर 60% कर दिया है। भोपाल के मानस भवन के पीछे करीब 70 साल पुरानी बस्ती को हटाने की कार्रवाई आज जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग कर आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है। और भोपाल की राज्य शूटिंग अकादमी में आज से 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है, जो 15 मई तक चलेगी। उद्घाटन समारोह में खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, इसमें आपके पत्रों के माध्यम से भेजी पसंद हम शामिल कर रहे हैं। तो पहली ख्वाहिश शामिल कर रहे हैं यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान की। लाप्रिया भेरू इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की पसंद है। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, मोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम की। सर फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने इसे गाया है। अलका याग्निक की भी आवाज़ है साथ। धुन बनाई है अनु मलिक ने और बोल लिखे हैं कतील शिपाई ने।

कार्यक्रम में अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया। उपाध्याय नगर से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। मेंढकी रोड से राघु सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत। राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन और मुकेश महाजन के। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव की। अमरपुर पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लभी श्रीवास्तव की। आशिकी फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है। अनुराधा पुडवाल और कुमार सानू ने इसे गाया है। रानी मलिक ने बोल लिखे हैं और स्वरबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

अगले गीत की फरमाइश शामिल कर रहे हैं सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े ज्योति नरवाड़े आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की, तेलंगाना भोंगीर विद्यानगर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन यूसुफुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समीरा आजमीन गुड़िया मोहम्मद

अब्दुल बाबा अनजाना छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो की, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया की दिल, ये दिल आशिकाना फिल्म का ये गीत है। कुमार सानू अलका याग्निक ने गाया है, समीर का लिखा, धुन बनाई नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम में ये आखिरी फरमाइश शामिल कर रहे हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक, मीका बिरक, तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर की, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और तड़वी परिवार के सभी सदस्य। उदित नारायण का गाया डर फिल्म का गीत शिवहरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने लिखा है।

उदित नारायण के गाए फिल्म डर के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक जादूगर को सलाम की तीसरी कड़ी।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओ, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की तीसरी कड़ी के रूप में प्रस्तुत है उनकी एक कहानी आबे हयात का नाट्य रूपांतरण। ये कहानी 16 अप्राप्य कहानियों के नाम से संकलित है। डॉक्टर घोष एक अजीबोगरीब आदमी थे। आए दिन उनकी प्रयोगशाला में कोई ना कोई तजुर्बा होता रहता था। एक बार अपने किसी खास तजुर्बे को दिखाने के लिए डॉक्टर घोष ने अपने 4 करीबी मित्रों को अपनी प्रयोगशाला में आने का न्योता दिया। इनमें से 3 इतने बूढ़े हो चले थे कि उनकी दाढ़ियां तक भी सफेद हो चुकी थी और उनकी चौथी मित्र थी एक बेवा, किसी जमाने में बेहद हसीन, लेकिन अब बुढ़ापे ने उनके जिस्म पर भी सिलवटें डाल दी थीं। बाबू दयाराम, विक्रम सिंह, करौड़ीमल और श्रीमती चंचल कुंवर एक के बाद एक डॉक्टर घोष के यहां पहुंचते हैं।
1: 50 साल बीत गए, इतना लंबा अरसा, लेकिन कुछ भी तो नहीं बदला। पुराने ढंग का अंधेरा कमरा, खिड़कियों पर पर्दे का काम करता मकड़ियों का जाला और धूल से सना ये आदमकद शीशा, भैरव की वही पुरानी मूरत। पता नहीं डॉक्टर साहब आज भी इससे सलाह मशवरा करते हैं या नहीं। ओफो, कितनी धूल जमी है। कम से कम इन बेश कीमती किताबों का तो ख्याल रखा होता। लगता है बरसों से किसी ने सफाई नहीं की है।
2: अरे सफाई करे भी तो कौन चंचल कुंवर।
1: अरे दयाराम जी, आप भी।
2: जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। ये आदमकद हसीना की तस्वीर देखती है ना, मुझे आज भी याद है। कभी इस हसीना से डॉक्टर घोष की शादी होने वाली थी।
1: अच्छा,
2: लेकिन सगाई से पहले ही ये बीमार पड़ गई और डॉक्टर साहब की दवाई खाते ही इस दुनिया से कूच कर गई।
1: अरे,
2: और ये तो आप भी समझती हैं चंचल कुंवर कि घर को संभालने के लिए एक बीवी की जरूरत होती है।
1: हाँ, ठीक कहते हैं दयाराम जी, ये बात भला मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। अरे, अपनी जवानी के दिनों में चाहने वालों के दिलों में माशूका बनकर रही, लेकिन बुढ़ापे की दहलीज तक साथ निभाने वाला हम सफर मुझे नहीं मिल सका, और जो मिला वो बीच में ही साथ छोड़कर चला गया।
2: अरे आइए बैठते हैं। एक बात कहूं, किसी जमाने में आपके हुस्न के चर्चे जोरों पर थे, और अगर आपको याद आता हो आपके चाहने वालों की फहरिस्त में हमारा भी नाम था। नाम क्या, यूं कहिए वकील दयाराम बदनाम ही रहे।
1: लेकिन वकील साहब, आपका ज्यादातर समय तो धार्मिक सभाओं में ही गुजरा करता था। हाँ, ये भी सच है कि हम भी आपको पसंद करते थे। खैर, सुनाइए आजकल क्या चल रहा है।
2: बस ये समझिए कि नाकामी में दिन गुजर रहे हैं।
3: हाँ साहब, अब तो दिन ही गुजारने हैं और रखा ही क्या है।
2: अरे सेठ करोड़ी मल जी, आप आइए।
1: एक लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई है आपसे।
3: क्या बताऊं, व्यापार ठप हो गया, आप तो समझती हैं। ये सट्टेबाजी का शौक आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता, राजा से रंक बना देता है। हमने पीछे सुना था कि आजकल आप बहुत तीरथ कर रही हैं।
1: आपने ठीक सुना है, अब कोई हमसे मिलने तो आता नहीं। अब ना वो रंगों सास की महफिलें हैं और ना ही वो शामें, यहाँ तक कि अपने सगे वाले भी नजर बचा कर चलते हैं। ले देकर बस एक ऊपर वाले का ही तो सहारा है।
2: यदि मेरा अनुमान सही है तो डॉक्टर घोष ने ठाकुर विक्रम सिंह जी को भी अवश्य ही बुलाया होगा, उनसे मिले भी एक मुद्दत बीत गई।
3: डॉक्टर घोष की यही तो निराली बात है कि जब भी वो कोई नया प्रयोग करते हैं,
1: हाँ।
3: हम सभी को कभी नहीं भूलते। वो देखिए ठाकुर साहब चले आ रहे हैं।
1: अरे आइए ठाकुर साहब,
2: अभी आप ही का ही जिक्र चल रहा था।
1: हाँ हाँ।
4: अरे जिक्र करने लायक तो अब कुछ रहा नहीं दयाराम जी। वो सामने डॉक्टर घोष की अलमारी में रखा अस्थि पंजर देख रहे हैं, उसमें और मुझ में कुछ ही कदमों का फासला है। अरे वो मिर्जा गालिब का शेर तो आपने सुना ही होगा कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अब शरीर साथ नहीं देता, बीमारी का नाम आप बोलो और गिनती मैं करवाऊंगा। लेकिन आज इस बात का एहसास और अफसोस जरूर होता है कि अपनी इस गलती के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। वरना क्या नहीं था मेरे पास, इज्जत शोहरत दौलत, अरे सभी कुछ तो था। चंचल कुंवर तो गवाह हैं इस बात की कि ऐसी कोई शाम न थी जब विक्रम सिंह चंचल कुंवर की महफिल की सीढ़ियां ना चढ़े हो।
1: हाँ, मुझे तो आप तीनों की दोस्ती पर हमेशा से ही फख्र रहा है। याद है आप तीनों को, एक बार मेरी खातिर आप तीनों में खून खराबे की नौबत तक आ गई थी। हाँ।
3: कुछ ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, लेकिन आपके लिए हमारी आशिकी में क्या अब भी पहले जैसा जज्बा है या वक्त की दीमक ने

0: के जूस को चाट लिया है।
1: अच्छा छोड़िए इन सब बातों को, ये बताइए कि क्या किसी को मालूम है कि डॉक्टर घोष ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है?
2: अरे भाई ये तो नहीं मालूम, लेकिन अनुमान जरूर लगा सकता हूँ कि शायद कोई नया तजुर्बा किया होगा। मसलन किसी खाली शीशी में किसी चूहे की मौत का तमाशा दिखाया जाएगा।
1: अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है खुर्दबीन से मकड़ी के जाले को देखा जाएगा और डॉक्टर घोष उसकी तफसील बयान करेंगे।
3: अरे भाई मैं तो ऐसा समझती हूँ कि इस बार किसी खास मकसद से हमें यहाँ बुलाया गया है। अगर मेरा अनुमान सही है तो वो सामने रखी धूल से सनी जादू की किताब देखते हैं, शायद इसी में उनके तजुर्बे का कोई रहस्य छुपा है।
4: चंचल कुमार आप सही फरमाती हैं। दोस्तों आपको मालूम है मैं अपना वक्त छोटे मोटे तजुर्बे में गुजारता हूँ और आज मुझे तजुर्बे में आपकी जरूरत है।
3: हमारी जरूरत?
4: हाँ, इस किताब में रखा ये 55 साल पुराना गुलाब का फूल अब बिल्कुल मुरझाया हुआ है और छूने से चूर चूर हो सकता है, पर कभी सुर्ख और खिला हुआ था। ये उस हसीना का तोहफा है जिसकी तस्वीर हो सामने लटक रही है और मैं इसे शादी के दिन अपने कपड़ों में लगाना चाहता था। क्या ये फूल फिर से हरा हो सकता है?
3: अरे डॉक्टर घोष, ये तो ऐसा हुआ कि जैसे किसी बूढ़ी औरत का झुर्रीदार चेहरा फिर से चिकना हो सकता है।
4: अब इस मुरझाए फूल को मैं मटके में रखे पानी में डाल देता हूँ।
5: कुछ देर फूल पानी में तैरता रहा और सभी लोग उत्सुकता से ये सब देखते रहे। फूल पर पानी का कुछ असर नहीं हुआ, मगर अगले क्षण ही आश्चर्यजनक परिवर्तन नजर आने लगा। चिपटी और सूखी हुई पंखुड़ियां हिलने लगीं और उनका रंग आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होने लगा। ऐसा मालूम होता है कि फूल एक गहरी नींद से जाग रहा है। पतला डंठल और पत्तियां हरी होने लगीं और देखते देखते वो 50 साल पुराना फूल बिल्कुल ताजा मालूम होने लगा।
1: तमाशा तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन ये हुआ कैसे?
4: दोस्तों आपने जुल्बात का नाम कभी नहीं सुना?
1: डॉक्टर घोष, सुना तो जरूर है, मगर वहां का पानी किसी को मिला कहां? सिकंदर भी कहां पहुंच पाया था वहां तक?
4: हाँ, इसीलिए नहीं मिला कि किसी ने उसे सही तरीके से तलाश नहीं किया। अब खोजने से मालूम हुआ कि जुल्मात में आबे हयात का एक चश्मा है। जुल्मात में आबे हयात का एक चश्मा है और हाँ, उसके किनारे बड़े बड़े दरख्त हैं जो कई सदियों पुराने होने पर भी आज भी हरे भरे हैं। और मुझे इन खोजों का प्रेमी समझकर मेरे एक दोस्त ने थोड़ा सा पानी मेरे पास भेजा है। और वो इस प्याले में भरा हुआ है।
2: हाँ होगा डॉक्टर साहब, लेकिन ये बताइए कि इस पानी का असर इंसान के जिस्म पर भी हो सकता है?
4: मेरे प्यारे और मौसिस दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? गिलास हाजिर है? लीजिए, पी लीजिए, पीजिए। खुद ही तजुर्बा करके देख लें। लेकिन हाँ, मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना है कि इस आबे हयात यानी पानी को पीने से पहले कुछ ऐसे उसूल जिंदगी के तय कर लीजिए ताकि जवानी की तकलीफें दोबारा आपको बर्बाद ना करें और आप इस अंधकार भरी घाटी से कुशलता पूर्वक पार हो जाएं। मैं चाहता हूं कि आप सभी नौजवानों के लिए अच्छे चरित्र का उदाहरण पेश करें। अब आप लोग इसे शौक से पिए।
3: हाँ हाँ भाई हाँ।
4: मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अपने तजुर्बे के लिए आप जैसे लायक साथी मिल गए।
3: हाँ भाई।
4: तो आप सभी पानी पी चुके और अपने शरीर में निश्चित ही एक परिवर्तन का अनुभव कर रहे होंगे। मैं साफ साफ देख सकता हूँ आपके चेहरे रोशन होने लगे हैं, आपके चेहरे की झुर्रियां सुर्खियों में बदल रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस पानी को पीकर आप जवान महसूस कर रहे हैं?
6: पानी और दीजिए।

0: हम कुछ जवान जरूर हो गए हैं।
1: लेकिन अभी कुछ कसर है?
2: नजर ना लगे, अगर ये कोई सपना नहीं तो इस आबे हयात का असर मैं अपने दिलो दिमाग और जिस्म में पूरी तरह महसूस कर रहा हूँ। शायद आबे हयात की मुझे ज्यादा जरूरत पड़ेगी।
3: अरे अरे लाइए ना, जल्दी से एक गिलास और पिला दीजिए।
4: सब्र कीजिए सब्र कीजिए, आप लोगों को बूढ़ा होने में बहुत दिन लगे थे, अब जवान होने में आध घंटा लग जाए तो आपको बेसब्र नहीं होना चाहिए। पानी हाजिर है, आप लोग जितना चाहे पी सकते हैं। अरे वाह, ये तजुर्बा तो वाकई कामयाब हो रहा है। मैं सभी दाढ़ी चुल्लीदार चेहरे और उदास मायूस गमगीन बूढ़ों की जगह ताजा तरीन नौजवान देख रहा हूँ, और साथ ही देख रहा हूँ बेपना हुस्न की मलिका, गुजरे जमाने की चंचल कुमार।
2: तारी चंचल, अब इस वक्त तुम्हारे हुस्न में बला का जादू है। जिस तरह सुबह का सूरज अंधेरे को मिटा डालता है, उसी तरह तुम्हारे चेहरे पर रौनक उतर आई है।
3: जनाबे आली, मेरा तजुर्बा तो ये कहता है कि आपकी तारीफें हमेशा सच्ची नहीं होती हैं। लेकिन मैं ये सोचकर आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। हकीकत तो आईना ही बयां करेगा। खुदा कसम, मुझे तो अभी भी डर है कि बुढ़ापे की सूरत कहीं नजर ना आ जाए। देखूं तो अरे वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कहीं मुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। डॉक्टर साहब, मेहरबानी करके मुझे एक गिलास और दे दीजिए। जवानी के दिनों में मेरा हुस्न अब से कहीं ज्यादा कशिश वाला था। शायद एक गिलास और पी लेने के बाद मेरे पुराने दिन वापस आ जाए।
4: लीजिए, शौक से लीजिए। ये देखिए, मैं ये गिलास भरे देता हूँ।

0: सूरज डूब चुका था, इसलिए कमरे में ज्यादा अंधेरा हो चुका था, लेकिन खिड़की से चांद की हल्की सी रोशनी निकलकर डॉक्टर और उनके दोस्तों के चेहरों पर पड़ रही थी। तीसरा गिलास पीते ही इन चारों आदमियों की रगों में जवानी की उमंगें लहरें मारने लगीं। अब उनकी जवानी की उठान शबाब पर थी। प्रसन्नता और जोश का आवेग उनके दिल में नहीं समाता था। उन्हें अब हर एक चीज में एक खास रौनक नजर आने लगी थी। उन्हें ऐसा मालूम होता था कि हम एक नई दुनिया के नए अस्तित्व हैं। उनके उन्माद की पराकाष्ठा ये थी कि इन लोगों को डॉक्टर घोष के चेहरे की झुर्रियां देखकर इस बुढ़ापे और निर्बलता का उपहास उड़ाने की दिली तमन्ना होने लगी थी, जिससे अभी अभी उनको छुटकारा मिला था।
1: मैं? हाँ, डॉक्टर साहब इस बूढ़े को देखिए। हाँ, डॉक्टर साहब बताइए जरा, अच्छा खासा नौजवान हूँ और इन लोगों ने बिना वजह बूढ़े मियाँ कहना शुरू कर दिया है।
2: डॉक्टर साहब, मैं जरा आपकी ऐनक लगा लूं, फिर पढ़ता हूँ। आपकी जादुई किताब, भला क्या लिखा है इस किताब में?
1: अरे भाई, आप नौजवान हैं, आपको बुढ़ापे की बातें अब शुभा नहीं देती हैं।
3: अरे प्यारे डॉक्टर, उठकर जरा खड़े हो जाओ। अरे जरा मेरे साथ नाचो।
1: मोहतरमा, हम भी देखें बूढ़े डॉक्टर के साथ आपकी हसीन और चुलबुली अदाएं। इस फर्श पर अपना जादू बिखेरेंगी तो कैसा नजारा होगा।
3: हाँ भाई।
4: मुझे तो माफ कीजिए, मैं बूढ़ा हूँ, गठिया ने नाक में दम कर रखा है। मेरे नाचने के दिन अब के बीत चुके हैं, लेकिन इन तीन नौजवानों में से कोई भी तुम्हारे साथ नाचने के लिए जान देगा?
5: चल मेरे साथ नाचो।
1: नहीं नहीं, ये मेरे साथ नाचेंगी।
5: नहीं, ये मेरे साथ नाचेगी।
2: 50 साल पहले इन्होंने मेरे साथ नाचने का वादा किया था, ये मेरे साथ नाचेंगी।
0: तीनों नौजवानों ने जवानी के नशे में चूर चंचल कुंवर के साथ अटखेलियां करना शुरू कर दी। नृत्य चल रहा था, हर एक चंचल कुंवर को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, खींच रहा था। उन्माद इस हद तक बढ़ा कि हाथापाई तक की नौबत आ पहुंची और कमरे में रखी हुई मेज उलट गई। कांच का मर्तबान टूटकर चूर चूर हो गया और इसके साथ ही जवानी देने वाला वो आबे हयात जमीन पर बह निकला। एक अधमरी तितली जो फर्श पर सिसक रही थी, आबे हयात को छूकर फुर से उड़कर डॉक्टर घोष की टोपी पर जा बैठी।
4: बस बस बस बस यारो, मुझे हंगामा कते ही पसंद नहीं है। अफसोस, ये फूल फिर से पहले की तरह खुश और चरमरा चुका है। आबे हयात के फर्श पर बिखरने के बाद लगता है सारा जादू टूट गया। ये बात और है कि मेरे लिए ये फूल अब भी ताजा है। आपने ये भी देखा कि ये तितली जिसे आबे हयात ने छू लिया था, मुस्कुराते हुए मेरी टोपी पर आ बैठी थी। ये भी उसी फर्श पर जा गिरी, बेदम बेजान हो।
2: अरे अरे अरे अरे, ये मेरे जिस्म को क्या होने लगा? ये इतना कांप क्यों रहा है?
6: ऐसा मालूम होता है कि मेरी जवानी विदा हो रही है और कमबख्त बुढ़ापे ने मुझे फिर से आ दबोचा है।
7: जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से जवानी और फिर जवानी से बुढ़ापा, बड़ा ही खौफनाक।

0: अरे मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। अरे
1: या अल्लाह, ये मनहूस दिन दिखाने से तो अच्छा था मेरी जान ही।
2: क्या क्या हमारी जान सिर्फ इतने ही समय के लिए थी?
3: दोस्तों, अफसोस कि आप फिर से बूढ़े हो गए। आबे हयात से जमीन तर हो गई, लेकिन मुझे इसका कोई गम नहीं, क्योंकि अगर आबे हयात की धारा मेरे दरवाजे पर ही लहरें मारती तो भी मैं उससे अपने होंठ तर न करता। चाहे लम्हों के बदले उसका नशा बरसों तक क्यों ना कायम रहे। आप लोगों से आज मुझे भी तजर्बा हासिल हुआ है।
2: आया हमारी जवानी,
4: सब खत्म हो गया,
2: सब कुछ खत्म।
5: लेकिन डॉक्टर साहब के दोस्तों को अब भी यह सीख ना मिल सकी, बल्कि उन्होंने तो उस जगह को ही ढूंढने का पक्का इरादा कर लिया जहां आबे हयात मिलता है, जहां वो सुबह दोपहर शाम आबे हयात पी सकें और सदा बहार जवानी का मजा उठा सकें। अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जादूगर को सलाम, तीसरी कड़ी आबे हयात। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे सतीश कक्कर, गौहर परवेज, साहिल सैयद, शिमाइला, कुणाल राय, साक्षी राय, मनोज कुमार शर्मा और अशोक शर्मा। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक की तीसरी कड़ी अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम था संग्रहालय से। यह प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: जबलपुर के बरगी डैम क्रूज हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि रेस्क्यू टीम ने 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। केंद्र सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और राज्य सरकार से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रदेश में अब तक 6 लाख से ज्यादा किसानों का 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और उन्हें करीब 4,813 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका है। धार जिले की बाघ प्रिंट कला इन दिनों पेरिस के ऐतिहासिक व्यापार मेले फॉयर डे पेरिस में धूम मचा रही है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री भारत और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए इस प्राचीन हस्तशिल्प कला को वैश्विक मंच पर पहचान दिला रहे हैं। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 की कक्षा 9वीं और 11वीं की द्वितीय परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। दोनों कक्षाओं की परीक्षा 3 जून से शुरू होंगी। प्रदेश में आरटी के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के दूसरे चरण की प्रक्रिया 4 मई से शुरू होगी। इस चरण में वही बच्चे शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया था। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में बारिश और आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। मैच चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

न थके हैं कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, हौसले हैं जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी सफर जारी है। बहनो, इसी जोश और उमंग के साथ हम फिर हाजिर हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो बहनों, स्वीकार कीजिए अर्चना का नमस्कार। बचपन किसी का यूं ही अधूरा न रह जाए, बाल विवाह के बोझ तले कोई नन्हा फूल न मुस्कुराए। बहनों, बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जो हमारे समाज में आज भी कहीं कहीं प्रचलित है। यह वह प्रथा है जिसमें लड़के और लड़कियों की शादी उनकी उचित आयु से पहले कर दी जाती है। बाल विवाह के कारण बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास प्रभावित होता है। मैंने बाल विवाह के कई दुष्परिणाम होते हैं। सबसे पहले तो बच्चों की शिक्षा बाधित हो जाती है, क्योंकि शादी के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इसके अलावा कम उम्र में विवाह होने से लड़कियों को गर्भधारण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में न बच्चा स्वस्थ रहता है, न माँ स्वस्थ रहती है। बहनों, बाल विवाह से महिलाओं का आत्मसम्मान भी कम होता है और वे अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। बहनों, सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए कई कानून और अभियान शुरू किए हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत इसे गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसके बावजूद जागरूकता की कमी और सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण यह प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है। बहनों, हमें अपने परिवार और समाज में इस बुराई के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और बच्चों को उनकी उचित उम्र तक पढ़ने और विकसित होने का अवसर देना चाहिए। बहनों, सरकार ने विवाह की उम्र तय कर दी है, जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि इससे कम उम्र होगी तो बाल विवाह घोषित कर दिया जाएगा, जिसमें लड़की पक्ष और लड़के पक्ष को दोनों को 2 साल की जेल और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना देने का प्रावधान है। यह अधिनियम देश में बाल विवाह को रोकने और इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। बहनों, बाल विवाह न केवल बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक है, बल्कि समाज की प्रगति में भी बाधा डालता है। हमें इसे समाप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा, ताकि हर बच्चा एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। आइए बहनों, अब सुन लेते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

बहनों, गर्मियों के मौसम में गर्मी होना स्वाभाविक है, लेकिन जब लगातार कई दिनों तक तेज गर्मी पड़ती है तो यह गंभीर समस्या बन जाती है। बहनों, भीषण गर्मी और आग उगलती धूप से बचने के लिए शरीर को अंदर और बाहर

0: बाहर दोनों तरफ से ठंडा रखना बहुत जरूरी है। भरपूर पानी पिए, प्यास न लगने पर भी रुक रुक कर पानी पिए। तरल पदार्थों का सेवन करें, जैसे नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी और सत्तू का। बहनों, गर्मियों में कमजोरी महसूस हो तो ORS का घोल पिए या नमक और शक्कर का घोल पिए, इससे कमजोरी थोड़ा दूर होगी। शराब, चाय, कॉफी और कार्बोहाइड्रेट सॉफ्ट ड्रिंक से बचें, क्योंकि शरीर को ये डिहाइड्रेट करता है। बहनों, घर से बाहर निकलते समय विशेष ध्यान रखें कि दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच घर से बाहर ना निकलें। यदि निकलना ही पड़े, जरूरी काम हो, तो हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, छाता, टोपी, चश्मा जरूर लें और स्टॉल का प्रयोग करें। बहनों, त्वचा की सुरक्षा के लिए सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं आप। बहनों, गर्मियों के मौसम में अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, जैसे हल्का भोजन करें, ज्यादा मसालेदार तला भोजन न करें, पानीदार फल का सेवन करें, तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, संतरा खाएं। बहनों, ठंडा भोजन करें, दही और चावल का उपयोग दोपहर के खाने में जरूर करें। बहनों, गर्मियों के मौसम में घर को ठंडा रखें, जैसे दिन में खिड़कियों और दरवाजों में पर्दे लगाकर रखें ताकि गर्म हवा अंदर ना आए। कूलर AC का प्रयोग करें, छत पर सफेद चूना पुतवाएं, जिससे घर ठंडा रहे। बहनों, दिन में 2 बार ठंडे पानी से स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। बहनों, अगर आपको गर्मी से जुड़ी किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, खासकर लू लगने का संदेह है, तो प्रभावित व्यक्ति को तुरंत छायादार ठंडी जगह पर ले जाएं, उसे ढीले कपड़े पहनाकर त्वचा पर बर्फ की पट्टियां रखें, उसे ठंडा करने की कोशिश करें। हीट स्ट्रोक यानी लू से उचित उपचार के लिए बिना देर किए हुए डॉक्टर से सलाह लें। आइए बहनों, लू से बचाव और उपचार के लिए आज हम बातचीत करते हैं डॉक्टर निधि त्रिपाठी से, जो हमें बताएंगी कि किस प्रकार हम इस भीषण गर्मी में लू से बच सकते हैं। आइए बहनों, हम जानते हैं लू क्या है, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और बाहर निकलते ही गर्माहट इतनी ज़्यादा होती है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि लू क्या चीज़ है। आइए बहनों, बातचीत करते हैं और जानते हैं डॉक्टर निधि त्रिपाठी से।
1: मैं ये बताना चाहूँगी कि आजकल बहुत ही तपन का मौसम चल रहा है, गर्म हवाएं चलती हैं, सन एक्सपोजर ज़्यादा रहते हैं, सूर्य का जो है प्रकाश, लाइट, बहुत ही हीट और गर्म हवाएं हैं, तो मतलब आफ्टर में लोगों को कम से कम निकलने की कोशिश कर, अगर ज़्यादा काम हो तो ही, ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ही निकलें, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे पसीने के थ्रू निकलता रहता है। अगर पानी की कमी होती है और हम धूप निकल रहे हैं तो ऐसे में हम बीमार पड़ सकते हैं। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और कपड़े ऐसे पहने कि हमें जिसमें मतलब कंफर्ट फील करें और तपन ज़्यादा ना महसूस हो। मतलब कपड़े ढीले होने चाहिए, कॉटन कपड़े का यूज और सफ़ेद कपड़ों का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अपने आप को ढक के निकलो और मतलब डॉक्टर के कांटेक्ट में भी रहें लोग, अगर उनको ऐसा फील होता है कि धूप में निकलने से चक्कर आ रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ भी फील होता है तो।
0: और लू यदि लग गई है तो हम क्या उपचार कर सकते हैं, कौन कौन से काम करें कि हम उससे बच सकें?
1: तो आप अगर लू लग गई है तो अपने आप को सबसे पहले तो हाइड्रेट ही रखना है और डॉक्टर के पास जाना है। जैसे लू लगती है तो हमें चक्कर आना या लूज मोशन कुछ भी गर्मी की वजह से होता है तो डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में आना है।
0: कैसे पहचाने कि व्यक्ति को लू लग गई है?
1: जो लू लगने का टेम्परेचर होता है 104 या 40 डिग्री के ऊपर का होता है, या इतना ही समझ ले समथिंग, और इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं कि जैसे आपको बेहोशी आएगी, है ना, आपकी त्वचा जो है डिहाइड्रेट या त्वचा सूखी दिखने लगेगी, और आपका जो है लक्षण दिखते हैं कि आप मतलब जो सोचने की क्षमता आपकी है थोड़ा कम होती है और आपकी पल्स जो है बहुत स्पीड से चलने लगती है, तो आप ऐसे पहचान कर सकते हैं कि आपको लू लग गई है।
0: लू लगने के बाद कौन कौन से प्राथमिक उपचार किए जा सकते हैं?
1: लू लगने के बाद प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? मतलब प्राथमिक उपचार में अपन ठंडी छांव या एसी या कूलर के सामने लेट जाएं, ठंडी हवा ले और कपड़े जो है तंग नहीं होने चाहिए, ढीले होने चाहिए, ठंडा पानी डालें, गीली पट्टियां रख सकते हैं और गर्दन बगल और कमर के आसपास बर्फ की सिकाई करें। यदि होश हो तो ठंडा पानी ORS छाछ पिए, तरल पदार्थ लें घर पर।
0: कौन कौन से पदार्थ हैं जो हमें इस भीषण गर्मी में बचा सकते?
1: हम तरल पदार्थ में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, जैसे वो लेते हैं छाछ वगैरह हो गया, नींबू पानी पीते हैं, नारियल पानी भी पी सकते हो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट चीज़ों का यूज करो, अगर ORS घोल हो गया, ये सारी चीज़ें आप घर पे आपके पास जो भी अवेलेबल है ठंडी और तरल चीज़ों में आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो।
0: डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, हमारी बहनों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपसे जानकर, धन्यवाद। बहनों, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, चारों तरफ सहनाइयाँ सुनाई दे रही हैं, तो आइए बहनों लता मंगेशकर की आवाज में सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

पैनो गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और शरीर को बाहर से ठंडा रखने के साथ साथ शरीर को अंदरूनी ठंडक की भी जरूरत होती है। पैनो आम का पन्ना सदियों से भारतीय घरों में लू से बचाव का एक रामबाण उपाय है, लेकिन आज के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक दौर में सफेद चीनी का इस्तेमाल इसे थोड़ा अनहेल्दी बना देता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिना चीनी और बिना चाशनी के आम का पन्ना बनाने की विधि, जिसमें गुड़ की मिठास और भुने हुए जीरे की खुशबू इसे एक नया आयाम देती है। यह न केवल आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, बल्कि आपको दिन भर तरोताजा रखता है और आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। मैनो आम का पन्ना बनाने के लिए आपको चाहिए सामग्री इस प्रकार: कच्चे आम 2 से 3 मध्यम आकार के, गुड़ का पाउडर कद्दूकस किया हुआ आधा कप, ताजे पुदीने के पत्ते 1 मुट्ठी भर, काला नमक स्वादानुसार, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, ठंडा पानी और बर्फ के टुकड़े। बहनों, आम का पन्ना बनाने का तरीका इस प्रकार है। सबसे पहले आमों को प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी आने तक उबाल लें। ठंडा होने पर छिलके उतार लें और सारा पल्प निकाल लें। एक बर्तन में आम का पल्प और गुड़ का पाउडर मिलाएं। गुड़ की तासीर गर्म होती है, लेकिन आम और पुदीने के साथ मिलने पर यह बहुत लाभकारी हो जाता है। अब इस मिश्रण को मिक्सर में डालें, साथ ही पुदीने के पत्ते, काला नमक, भुना जीरा, काली मिर्च पाउडर डालें और स्मूथली पेस्ट बना लें। इस गाढ़े पेस्ट को एक जग में निकाल लें और इसमें ठंडा पानी मिलाएं। अब गिलासों में डालें आम का रस और पुदीने के पत्तों से सजाकर बिल्कुल ठंडा ठंडा सर्व करें। बहनों, आप लीजिए आम के पन्ने का आनंद और साथ ही सुन लीजिए यह प्यारा सा गीत, जिसे आवाज दी है महेंद्र कपूर ने।

श्रोता बहनें अभी सुन रही थीं कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: अरुणा मिश्रा के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। पेश है सुगम संगीत, कलाकार है अहमद रजा।

अहमद रजा की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, जिसका आरंभ कर रहे हैं जावेद अली के गाए फिल्म मेजर के गीत से। इस गीत को लिखा है रितेश राजवाड़ा ने और संगीत श्रीचरण का है।

और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बधाई दो से। आवाज साशा तिरुपति, नक्श अजीज और अमित त्रिवेदी की है। इस गीत को लिखा है वरुण ग्रोवर ने।

गंगूबाई काठियावाड़ा। इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे अर्चना तरन्नुम दीप्ति और अदिति की आवाज में। कुमार की रचना है और संजय लीला भंसाली का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हाल में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार इनोवेशंस इन ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस में शामिल हुए। सेमिनार में निर्माण क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट कम करने के प्रभावी उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही आधुनिक तकनीकों जैसे 3D प्रिंटिंग, स्मार्ट ग्लास और पुनर्नवीनीकरण सामग्री के उपयोग पर भी विशेषज्ञों द्वारा मंथन किया गया। सेमिनार में इमारतों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग, प्राकृतिक रोशनी और बेहतर वेंटिलेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण प्रणालियों को अपनाने पर भी फोकस किया गया। केंद्र सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। यह संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। पंचायती राज मंत्रालय आज हैदराबाद में आत्मनिर्भर पंचायत पहल पर एक आउटरीच कार्यशाला आयोजित कर रहा है। इस कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम की परिकल्पना, उद्देश्य और कार्यप्रणाली से परिचित कराया जाएगा। यह कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है। आत्मनिर्भर पंचायत पोर्टल का एक लाइव संपूर्ण प्रदर्शन प्रतिभागियों को आवेदन प्रक्रिया और डिजिटल डैशबोर्ड के बारे में जानकारी देगा। इसके अलावा एक संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र सभी हितधारकों को मंत्रालय के साथ सीधे जुड़ने और भागीदारी के बारे में स्पष्टता प्राप्त करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करेगा। दूरदर्शन केंद्र भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश ने उर्दू कैजुअल एसआईनी के पैनल में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती सीजी ऑपरेटर, न्यूज रीडर और कॉपी एडिटर पदों के लिए की जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए प्रसार भारती की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विवरण प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल स्थित राज्य शूटिंग अकादमी में 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप आज से आयोजित की जा रही है। आगामी 15 मई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर से 3000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 42 राज्यों, सेना एवं अर्धसैनिक बलों के लगभग 3000 बालक बालिकाएं, महिला एवं पुरुष खिलाड़ी 10 मीटर एयर राइफल एवं 50 मीटर राइफल स्पर्धाओं के साथ यूथ, जूनियर एवं सीनियर वर्गों में भाग ले रहे हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में तेज गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है। पिछले दो दिनों से प्रदेश के आधे से अधिक हिस्सों में आंधी बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, रीवा, सागर, जबलपुर और उज्जैन संभाग के 21 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बीते दो दिनों में प्रदेश के 35 से ज्यादा जिलों में बारिश, ओले या तेज आंधी का असर देखा गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा जिले के बड़ोद में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत युवाओं और महिलाओं को मोटरसाइकिल पर सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जबलपुर बर्गी डैम में लापता 4 लोगों की तलाश आज सुबह से जारी है। सेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बोट से सर्चिंग कर रही है। रायसेन कलेक्टर द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनगणना कार्य की समीक्षा की गई। उन्होंने एसडीएम और चार्ज अधिकारियों से क्षेत्रवार प्रगति की जानकारी ली। शिवपुरी जिले में जनगणना कार्य के लिए लगभग 4000 प्रगणक और सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई और जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले में जल और पर्यावरण संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ व पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षक और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति के

0: पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों की मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
2: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से LPG की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज

0: गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है कृषि एवं
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का ये पहला गीत कमाल खान की आवाज में। रजत अरोरा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने। फिल्म है द डर्टी पिक्चर। इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जीतेक विरक और मीका विरक, संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल निजाम, नूपुर वरुण और उद्धव।

और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रावण से। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा ने। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी की फरमाइश यही है। डुमराव से बलीउल्ला अंसारी और अस्मा नाज अंसारी ने भी फिल्म रावण के गीत को सुनना चाहा है। सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी, अस्मा खातून और गुलफराज भागलपुरी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। शादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश ने फरमाइश भेजी है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत, अमनदीप, अनिल। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और उनके सभी साथियों ने भी इसी गीत को सुनना चाहा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत शफकत अमानत अली की आवाज में फिल्म तनु वेट्स मनु में। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव ने। शिवाजी चौक राजेम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष की भी यही फरमाइश है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश भेजी है। अमन खातनकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि और उनके सभी साथियों ने सारणी जिला बैतूल से पत्र भेजा है और ये फरमाइश हमारे पास आई है छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू की। तो पेश है आप सबकी पसंद पर ये गीत।

कुछ लव जैसा। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर और मोहित चौहान की आवाज में। इरशाद कामिल की रचना थी और प्रीतम का संगीत। फरमाइश करने वाले श्रोता कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय और हैप्पी राय। निवाता गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की भी यही पसंद थी। संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था और अब हम आपको सुनवा रहे हैं आज की आपकी फरमाइश कार्यक्रम का आखिरी गीत श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज़ में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है एआर रहमान ने। फिल्म है जब तक है जान। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने गौतम नगर जिला नांदेड़ से, जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, जगुताई वर्षताई, संचित प्रथमेश, सोहम प्रणाली, सानवी और राजे जाधव, देशमुख, वायाल और परिकर परिवार के सभी सदस्यों ने। तो आप सबकी पसंद पर पेश है कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: जब तक है जान। इस फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत और नेपाल के बीच कोसी और गंडक परियोजनाओं पर संयुक्त समिति की 11वीं बैठक काठमांडू में जारी है। यह बैठक इन महत्वपूर्ण पहलों पर दोनों पक्षों के बीच जारी सहयोग और समन्वय को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हाल में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार इनोवेशंस इन ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस में शामिल हुए। सेमिनार में निर्माण क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट कम करने के प्रभावी उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। पंचायती राज मंत्रालय आज हैदराबाद में आत्मनिर्भर पंचायत पहल पर एक आउटरीच कार्यशाला आयोजित कर रहा है। इस कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम की परिकल्पना, उद्देश्य और कार्य प्रणाली से परिचित कराया जाएगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 की कक्षा 9वीं और 11वीं की द्वितीय परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। दोनों कक्षाओं की परीक्षा 3 जून से शुरू होगी। प्रदेश में RTE के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के दूसरे चरण की प्रक्रिया 4 मई से शुरू होगी। इस चरण में वही बच्चे शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया था। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में बारिश और आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। और IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। मैच चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:02 पर युवा श्रोता युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे, जो आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। शाम 6:00 सुनिएगा विशेष भेंटवार्ता। आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति के पहले क्रम में आप सुनेंगे संस्कृति और संगीत के परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी की समृद्ध परंपरा और योगदान पर प्रसिद्ध ध्रुपद गायक पद्मश्री पंडित उमाकांत गुंदेचा से पुरुषोत्तम श्रीवास की बातचीत। समय रहेगा शाम 6:00 का। 7:21 पर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाता है, जिसमें गीत संगीत और चर्चा होगी और 7:45 से प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुना जा सकेगा। 8:00 का समय सुर्खियों में कार्यक्रम के लिए रहेगा। 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 9:30 पर साहित्य भारती कार्यक्रम होगा और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम 10:00 से आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यही समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युव वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं मार्गेशा
1: और मैं अनुभूति स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: तो दोस्तों, आज है बहुत ही स्पेशल दिन। हाँ, आज का स्पेशल दिन सैटरडे है, वो अपने आप में ही एक स्पेशलिटी होती है क्योंकि आज वीकेंड है। लेकिन शनिवार के दिन होता है हमारा स्पेशल सेगमेंट, हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स।
1: जी हाँ दोस्तों, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आप भी उतने ही एक्साइटेड रहते हैं। और मार्गेशा, हो भी क्यों ना।
0: सही का अनुभूति, अपने दोस्तों से, अपने श्रोताओं से बात करना किसे पसंद नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम और आप मिलकर करेंगे ढेर सारी बातचीत और आपको सुनाएंगे आपके फरमाइशी गीत।
1: और हमें फोन करने के लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 2710224 और 2710223। याद रखें दोस्तों, इंदौर का एसटीडी कोड 0731 लगाना बिल्कुल ना भूलें।
0: तो दोस्तों, हम हमारे पहले कॉलर से जल्द ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना हम आज के प्रश्न पूछ लें। इन दोनों जो प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप सोच के रखिएगा और इसके सही उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में किन स्थानों के बीच शुरू की गई।
1: और आज का दूसरा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है।
0: तो एक बार प्रश्न आपके लिए हम फिर से दोहरा देते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में किन स्थानों के बीच शुरू की गई।
1: और दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है।
0: तो ये बिल्कुल आसान और जीके और करंट अफेयर टाइप के क्वेश्चन हैं दोस्तों। इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए और इनके जो सही उत्तर है उसके बारे में आप सोचिए। और इसी के साथ अनुभूति, तुम एक्साइटेड हो हमारे श्रोताओं से बात करने के लिए।
1: बिल्कुल, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मार्गेशा, और मैं तो वेट करती हूँ कि कब सैटरडे आए और हम यहाँ पर आए और हम में से जो भी ऐसे लोग हैं जो हमसे बात करना चाह रहे हैं, जो अपने गीत सुनना चाहते हैं, उनसे हम बात भी करें और उनकी भी सुनाए।
0: बिल्कुल, और जब श्रोताओं से बात करते हैं, जो मेरा फेवरेट पार्ट होता है वो ये है कि उनका जानना कि वो कौन से शहर से हैं, सबसे अच्छा मुझे ये जानना लगता है। और दूसरी चीज जाननी बहुत अच्छी लगती है कि उनका जो गीत है, आज उस गीत के पीछे अगर कुछ उनकी कहानी हो तो वो जानने में भी बहुत मजा आता है कि वो गीत उनके इतने करीब क्यों है।
1: हाँ, ये तो बात सही है।
0: तो इसी के साथ चलिए फिर जुड़ते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से। हेलो फ्रेंड। हेलो।
1: अच्छा मार्गेशा, जब तक हमारे कॉलर हमसे जुड़ते हैं, क्यों ना हम एक गीत सुन लें और उसके बाद हमारे कॉलर से बात करें।
0: हाँ अनुभूति, ये भी सही रहेगा। तो दोस्तों, आप भी जल्दी से अपने फोन उठाइए, हमारे नंबर्स पर फोन कीजिए और जुड़िए आज के हमारे खास कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स में हमारे साथ। तो हम कॉलर से बात करेंगे, उसके पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: चलिए बारी है हमारे आज के पहले कॉलर से जुड़ने की। हेलो फ्रेंड। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: जी। नमस्कार, आपका नाम बताइए।
1: कृष्णपाल परमार, 6 महीना, सोनकच्छ तहसील, देवा जिले।
0: अच्छा जी, और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: प्यासा सावन पिक्चर का गाना है मैम।
0: प्यासा सावन पिक्चर का गीत,
1: लता जी की आवाज में। तेरा साथ है तो मुझे क्या करूं।
0: वाह, ये तो बहुत ही बहुत खूबसूरत गीत है। आपके गाने की चॉइस तो सच में बहुत अच्छी है।
2: और जब हमारे पहले कॉलर की पसंद इतनी अच्छी है, अच्छी गाने की है, तो फिर आगे तो हमें और एक्साइटमेंट है। मार्गेश,
0: सही कहा।
1: गाने अच्छे लगते हैं
0: जी। क्या क्या पुराने गाने आपको बहुत पसंद है?
1: बहुत पसंद है, रफी साहब के, लता जी के, जी के।
0: अच्छा, तो आप रेडियो बहुत सुनते हैं क्या? जी, इसके कारण भी एक मुझे लगता है कि एक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जो लोग
2: तुम पहचानी या नहीं, ये हमारे रेगुलर
0: बहुत रेगुलर कॉलर है। मैं बोलने वाली थी, आपका फोन हर बार लग जाता है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन
1: पहले कॉल लगाते थे एसटीडी से, जब से फोन लगाते हैं हम, आज तो मोबाइल है अपने पास।
0: जी, ये तो है कि एडवांसमेंट तो हर चीज में हुआ है, और टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो हमें हर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जगह में देखने को मिलता है, और समझ में आता है कि उससे कैसी कनेक्टिविटी बढ़ी है पूरी दुनिया में। जैसे पहले आपको एसटीडी पे जाना पड़ता था, लेकिन आज सबके हाथ में फोन है, कहीं से भी आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं, कहीं से भी आप हमें फोन लगा सकते हैं। तो ये जान के भी अच्छा लगा। और जैसे मैं रेडियो की बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं जो लोग रेडियो सुनते हैं उनके जो गानों की चॉइस है वो काफी हटकर रहती है। जैसे अंडररेटेड सॉन्ग्स जो हम कहते हैं, वो भी उनको कहीं ना कहीं काफी उनको पता रहता है।
1: आज भी रेडियो पे ही सुनते हैं हम, मोबाइल पे नहीं सुनते इसको।
2: बहुत अच्छी बात है।
1: आवाज की मोबाइल पे
2: जी, जी बहुत सुंदर बात है ये। तो आइए, आपका गीत हमें मिल चुका है, सुनते हैं आपकी फरमाइश।
1: ठीक है मैम।

0: हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो मैम,
0: हेलो,
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महुआ, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा अरविंद जी, बताइए कैसे हैं आप
1: एकदम बढ़िया है, मस्त हैं।
0: और
1: आप
0: कौन
1: कैसे
0: सा
1: हैं मैम?
0: गीत आज आप सुनना चाहते हैं?
1: जी, फिल्म का नाम कभी कभी, उसका
0: और गीत
1: शीर्षक
0: के
1: भी
0: बोल।
1: चाहिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गीत है। आज तो हर गीत
1: है।
0: हमें ऐसे ही सुनने को मिल रहा
2: सही
0: है
2: बात है, और
0: भाग्यशः।
2: अच्छा लगा ये जान के भी। और यूपी में गर्मी कैसी है? क्योंकि इंदौर में और मध्य प्रदेश में तो गर्मी ने एकदम रुख बदल लिया है और तापमान काफी बढ़ चुका है।
1: जी, मेरा गांव भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे है। बिल्कुल
2: अच्छा
1: बिल्कुल जी,
2: अच्छा क्या बात है।
1: कटरपुर के 35 किलोमीटर आगे।
2: अच्छा, मतलब ज्यादा दूर नहीं है।
1: नहीं, बिल्कुल जुड़ा हुआ है,
2: अच्छा
1: 4 किलोमीटर
2: अच्छा
1: बाद एमपी लग जाएगा मेरे गांव से।
2: अरे वाह क्या बात है। तो गर्मी फिर भी आपके गांव में कैसी है अभी?
1: बहुत है, फिर जंग 40 डिग्री के आसपास चल रहा है अभी
2: गांव
1: तापमान।
2: में भी तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, मुझे तो ये जान के काफी शॉक लग रहा है। क्योंकि शहरों में तो हमें पता है, क्योंकि पेड़ नहीं होते हैं, वातावरण प्रदूषित है, इसके कारण तापमान बढ़ना थोड़ा समझ आता है, लेकिन गांव में इतना तापमान बढ़ गया है।
1: जी, वो गांव भी नहीं है, वो बीच का बीच है, कस्बा है।
2: कस्बा है, फिर
1: जी
2: भी इतनी गर्मी पड़ना तो सही ही नहीं है। और मुझे लगता है प्रदूषण और इसके कारण कहीं ना कहीं असर जो है वो गांव और छोटे छोटे कस्बों तक तक पहुंच चुका था।
1: जी अभी मेरी दुकान है रोड पे, बाजार में,
2: जी
1: यहाँ से 1 मिनट भी ऐसा नहीं निकलता है कि कोई वाहन ना निकले।
2: हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात की कि वाहन का जो उपयोग है वो
1: जी,
2: बहुत अति बढ़ चुका है।
1: यहाँ 25-30 हजार की पॉपुलेशन है, ऐसा छोटा गांव नहीं है। जी
0: क्या बात है, नहीं बहुत अच्छी बात है ये तो। और आपने हमें कॉल किया ये और अच्छी बात है। आपका गीत हमें मिल चुका है, आइए सुनते हैं।
1: धन्यवाद मैम
0: जी
1: फोन लेने के
0: धन्यवाद।
1: लिए।

0: चलिए फिर अब बारी बारी है हमारे अगले श्रोता से जुड़ने की। हेलो फ्रेंड
1: हेलो फ्रेंड जी, नमस्ते
0: जी। नमस्कार
1: जी, मैं ग्राम बचोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: जी प्रेम सिंह जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी, फिल्म का नाम है कुर्बान और गाने के बोले बैठा नीली झील किनारे।
0: अच्छा अच्छा, तो आप भी हमारे एक रेगुलर श्रोता हैं और कॉलर भी हैं, आपका भी कई बार फोन आराम से लग जाता है।
1: जी बिल्कुल, आकाशवाणी इंदौर का तो मैं नियमित श्रोता हूँ, 2005 से आकाशवाणी इंदौर से जुड़ा हुआ हूँ।
2: और ये बताइए, युववाणी कार्यक्रम आप सुनते हैं कि नहीं रोज?
1: जी बिल्कुल, युववाणी कार्यक्रम सुनते, जब पहले पत्रों पर आता था ना कार्यक्रम
0: जी,
1: उसमें भी हमने कई बार चिट्ठियां लिखी, हमारी चिट्ठियां भी शामिल हुई वहाँ पे।
0: अरे वाह, क्या बात है।
2: तो मतलब युववाणी आप रोज सुनते हैं, हर दिन सुनते हैं कि सिर्फ शनिवार को ही?
1: शनिवार को भी सुनते हैं, और जब थोड़ा टाइम मिलता है ना तो कहीं पर अगर हम बाहर जाए फिर भी मोबाइल ऐप पे सुन सकते हैं।
0: अरे वाह। अच्छा, जैसे हम युववाणी में हमेशा यह दो प्रश्न पूछते हैं, तो आप कितने सवाल जो है उसके सही उत्तर गैस कर पाते हैं?
1: जी कुछ सवाल के जवाब आते हैं हमें और कुछ नहीं आते हैं ना।
0: आज तो का आ गया आपको, आज के जो सवाल थे उसके उत्तर पता चल गए आपको?
1: जी बिल्कुल नहीं चला अभी तो मुझे पता लेकिन जैसे क्या होता है, कुछ सवाल ऐसे कठिन होते हैं ना
0: जी,
1: तो उनको होता है गूगल के द्वारा एकदम से सर्च करके ढूंढ लिया जाता है।
0: वो तो है, हमारा वही काम है, जो सवाल का जो मोटिव है वो यही है कि जैसे छोटी छोटी बातें हैं जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर्स की, जो हमारे देश में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, उसकी खबर मिल जाए लोगों को और उसके बारे में पता रहे।
1: जी बिल्कुल
0: जी, तो ये भी जान के अच्छा लगा,
1: श्रोताओं की जनरल नॉलेज बढ़ती है।
0: हाँ जी जी,
1: और
0: जी
1: मतलब काफी अच्छा लगता है।
0: जी जी, ये जान के हमें भी बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद फोन करने के लिए। आइए फिर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा
0: जी
1: लगा।
0: जी थैंक यू
1: जी, ओके बाय।

0: आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड, नमस्कार।
0: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम राकेश है और मैं बात आपसे कर रहा हूँ ठंडी ठंडी जगह से, शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: शिमला। आप मानेंगे नहीं राकेश जी, लेकिन अभी अभी मार्गेशा ने आपको याद किया था और मार्गेशा ने बोला था कि शिमला से एक फोन आता है हमारे पास जो हर शनिवार लगभग उनका लग ही जाता है। क्या बात
1: जी
0: है।
1: जी जी जी जी मैं तो आपका नियमित श्रोता हूँ, और आपका और विविध भारती इंदौर का, तो मैं आपके
0: जी
1: प्रोग्राम अक्सर मैं जुड़ता रहता हूँ, लेकिन मुझे सभी केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी इंदौर का प्रोग्राम अच्छा लगता है, और तो
0: क्या
1: मैं
0: बात है जी। अच्छा
1: बात करता
0: राकेश
1: रहता हूँ
0: जी,
1: आप।
0: आप शिमला से बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, मैं तो काफी एक्साइटेड हो गई शिमला सुनकर, ये बताइए कि बर्फ अभी पड़ रही है या नहीं?
1: नहीं, बर्फ तो नहीं पड़ रही है, लेकिन बारिश हो रही है, और आपके प्रोग्राम बस अभी अभी बारिश एकदम अचानक होगी और हल्की बूंदाबांदी हो रही है।
0: अच्छा,
1: अच्छा
0: लेकिन एक बात तो है कि हमारे यहाँ से मौसम तो वहां काफी अच्छा होगा,
1: जी।
0: काफी सुहाना मौसम होगा। आपको बता दें कि अभी तो मध्य प्रदेश और पूरे देश में ही जहाँ पर पहाड़ और नहीं है वहां बहुत गर्मी पड़ रही है और तापमान 40 डिग्री के तो ऊपर ही जा रहा है।
1: जी। तो हमारे भी सुबह भी थोड़ा 25-30 था, लेकिन अभी बारिश होते होते अब तापमान घट गया है, और अभी जो है दरवाजा बंद करके अब ठंड ठंड बढ़ गई और थोड़ी बारिश भी हो रही है।
0: जी।
1: जी
0: अच्छा
1: अच्छा
0: राकेश
1: अच्छा
0: जी, ये बताइए कि अगर अभी हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, अगर वो शिमला आने की प्लानिंग करते हैं, जैसे गर्मी का मौसम है, तो अगर
1: जी
0: टूरिस्ट प्लेसेस के हिसाब से अगर हम शिमला चुनें और मई जून में वहाँ आना चाहें, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उन लोगों को?
1: जी जी जी तो उनका सबसे पहले स्वागत है। अगर मई जून में अगर शिमला आना चाहे तो आ सकते हैं, कोई कोई परेशानी नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ को सिर्फ 2 महीने की परेशानी होती है। अगर अगस्त जुलाई में आए तो उस समय परेशानी क्या होती है, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ आपदा का संकट पड़ जाता है। लेकिन जो मई जून में जो है टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर मई जून में अभी से जो है टूरिस्ट घूमने आए तो।
0: क्या बात है। अच्छा
1: सही बात
0: शिमला के
1: है।
0: आसपास भी कहीं बर्फ देखने को नहीं मिलेगी या लोग देख सकते हैं बर्फ मनाली में या
1: जी,
0: कहीं भी
1: बर्फ
0: आसपास?
1: बर्फ जो है आपको अगर देखनी हो तो दिसंबर या आखिरी दिसंबर और जनवरी में आ सकते हैं, और
0: अच्छा
1: कुल्लू मनाली और शिमला और बर्फ देख सकते हैं, और लाहौल स्पीति जो है, जो अभी जो है रोहतांग जो है अटल टनल
0: हाँ
1: का जो
0: हाँ हाँ
1: है
0: हाँ जी
1: उद्घाटन किया
0: जी
1: था, तो वहाँ भी आप आ सकते हैं। और
0: हाँ
1: खैर शिमला और कुल्लू मनाली तो आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो बर्फ तो नहीं है। हाँ,
0: हाँ
1: बर्फ का नजारा आपको लेना है तो जनवरी के माह में आपको आना चाहिए।
0: हाँ ये बात
1: क्या बात
0: अच्छी
1: है।
0: कही आपने। लेकिन अगर मौसम का आनंद लेना है तो आई गेस मई जून का महीना सही है, लेकिन अगर आपको बर्फ और वो सब देखने का मन है तो जनवरी जैसे आपने कहा वो महीना सही रहेगा। अरे
1: जी।
0: वाह क्या बात है। तो ये जान के
1: बहुत
0: अच्छा
1: अच्छा
0: लगा,
1: लगा।
0: और शिमला और मनाली जैसी जगहों को साफ रखना और प्रदूषण से दूर रखना ये सब भी बहुत ज़रूरी है, और जो वहाँ टूरिस्ट
1: जी।
0: जाते हैं उनको भी खास ध्यान रखना चाहिए कि कभी वो ऐसी गंदगी ना करें और

0: जो जगह जहाँ पर वो जा रहे हैं उसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी उठाएं।
1: जी,
0: बहुत अच्छा लगा ये जान के भी आपसे बात करके, तो धन्यवाद फोन करने के लिए। अब आइए सुनते हैं आपकी फरमाइशी का ये गीत।
1: बात कहना चाहता हूँ।
0: जी जी बोलिए।
1: हमारे रेडियो श्रोता, हमारे जो है त्रिपुरा से अविनाश तेली जी हैं, और सबके लिए आप मेरी तरफ से सभी श्रोताओं के लिए उनकी जन्मदिन की हार्दिक बधाई।
0: जी जी बहुत बहुत बधाई हो उनको। और फिर आइए फिर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी, धन्यवाद
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद।

0: चलिए अब जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से. हेलो फ्रेंड.
1: सर जी नमस्कार.
0: जी नमस्कार.
1: फिल्म है जंजीर.
0: जी जंजीर फिल्म का कौन सा गीत?
1: बना के क्यों बिगाड़ा.
0: जी जी जी ये गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: हाँ, हमारे जिले और प्रदेश में जो भी ये हादसे हो रहे हैं समर्पित है
0: जी
1: उन सभी परिवार के.
0: जी आपकी अब आवाज एक्चुअली हमें ढंग से आ नहीं पा रही है. आप एक बार थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो शायद हमें अच्छे से आपकी आवाज आ पाएगी.
1: ये गाना समर्पित है प्रदेश और जिले में अभी हादसे हुए एक दो दिन के अंदर.
0: जी जी
1: खतरनाक
0: जी. उनको आप ये गाना समर्पित करना चाहते हैं?
1: हाँ हाँ.
0: अच्छा अच्छा
2: क्या बात है. बहुत ही ये आपका जो थॉट है ये काफ़ी इनोसेंट थॉट है और हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप ये गीत समर्पित करना चाहते हैं. ये गीत भी हमें मिल चुका है, आइए सुनते हैं.
1: हाँ, ये परमात्मा के अलावा किसी को दोष भी नहीं दे सकते.
2: जी जी ये इस तरीके की कैलामिटीज हो जाती हैं, इस तरीके के हादसे हो जाते हैं. हम बस भगवान

0: यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं अब नहीं हो। और
1: भविष्य में।
0: जी, आइए सुनते हैं ये गीत।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड को नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मैं कृष्ण बाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी नियमित श्रोता बोल रहा हूँ। बड़ी खुशी हो रही है आज का हेलो फ्रेंड में मेरा फोन लगा पहली बार।
2: अरे वाह, क्या बात, पहली बार फोन लगा ये जान के हमें अच्छा लगा। और नियमित श्रोता है और उसके बाद पहली बार फोन लगना, उसकी खुशी अलग ही होती है।
1: हाँ, इसी खुशियाँ बहुत होती है। मुझे कल जो प्रोग्राम सुना मैंने, उसमें कार्यक्रम सुना, तो मैंने क्यों ना लगाया जाए।
2: अरे हाँ, सही बात है।
1: और पहली बार ही मेरा फोन लग गया।
2: जी जी, आपको बधाई हो। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: कोई बात अगर बिगड़ जाए, पर बात अपने को बिगाड़ना नहीं मैम, अपने को हमेशा बनाना रखा है, पर गाना इस तरह का है वो
0: जब कोई बात बिगड़ जाए,
2: वही वाला गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: हाँ,
2: अच्छा अच्छा।
1: अपने को बात नहीं बिगाड़ना, अपने को बहुत लंबा चलना है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जीवन अगर है तो वो विविध भारती का मुख्य द्वार है, जिसमें ज्ञान ज्ञान और विज्ञान और उसके अलावा सारी शारीरिक जीवन की जो प्रक्रिया है वो सब सुनने को मिलती है।
2: हाँ जी, ये तो
1: आपने
2: है।
1: वो चीज जिंदा कर दी, युवाणी की जगह आपने ये इसको हेलो फ्रेंड कर दिया। मुझे बहुत बहुत विविध भारती को और विविध भारती के सभी और श्रोताओं को भी इसको बधाई के पात्र है वो, क्योंकि इस प्रक्रिया में आप हमें हमारी उत्सुकता में कि आप ये कार्यक्रम पेश कर रही है।
2: जी जी जी, हमें भी अच्छा लगता है श्रोताओं से बात करना, तो बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। आइए सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू
2: जी, थैंक यू।

0: चलिए बा, अब हमारे एक और श्रोता से जुड़ जाते हैं। हेलो।
1: तारीफ कैसे करें आप दोनों की, हर लफ्ज में खुशबू आ रही गुलाब की।
0: अरे क्या बात है, दिल खुश हो गया ये शायरी सुन
1: हसीना
0: के। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम बताइए। हाँ
1: भी मंसूरी बोल रही, पालराना का इंदौर से।
0: जी, कौन
1: हमें
0: सा।
1: लगा
0: हाँ,
1: ही
0: आपकी आवाज
1: ऐसी
0: सुनकर मैं
1: तारीफ
0: पहचान
1: तो
0: लिया था
1: आप ही
0: वैसे।
1: करती हैं।
0: तो
1: फिल्म
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: का नाम है राम अवतार और गाने के बोल हैं, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में
0: अरे
1: नगीना
0: वाह,
1: तेरी।
0: आज आपने एकदम शायरी सुना के हमारा वैसे भी दिल खुश कर ही दिया है।
1: मुश्किल हो गया जीना जीना, ये सुना दीजिए।
0: जी, ये
1: जी
0: वाला गीत सुनना चाहती हैं
1: आइए
0: आप।
1: आइए सुनते
0: आइए
1: हैं
0: सर,
1: आपकी
0: सुनते हैं आपकी
1: पसंद का
0: पसंद
1: ये
0: का ही गीत।
1: गीत।
0: थैंक यू आज फोन करने के लिए।
1: मैडम थोड़ा वक्त भी कम है तो एक दूसरे से भी आ जाएंगे।

0: चलिए तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम। तो आज हमने दो आपसे जो प्रश्न पूछे थे उनका समय आ गया है कि अब उनके उत्तर दे दें। पहला प्रश्न था कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में किन स्थानों के बीच शुरू की गई थी। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली और मुंबई के बीच ये ट्रेन शुरू की गई थी।
1: और आज का दूसरा प्रश्न था कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, जिसका उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको इन प्रश्नों के सही उत्तर मिले होंगे।
0: और हमें आज हमारे श्रोताओं से बात करके भी बहुत अच्छा लगा, अलग अलग जगहों पर वो रहते हैं उसके बारे में जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और श्रोताओं से बात करना हमें यूं भी बहुत ही अच्छा लगता ही है वैसे भी, क्योंकि हम बहुत कम ऐसे आपस में जुड़ पाते हैं, नहीं तो हमेशा सिर्फ वन साइडेड टॉक ही रहता है। तो अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए।
1: और जिन भी श्रोताओं का कॉल नहीं आया है वे भी निराश ना हो, अगले शनिवार आप फिर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
0: तो इसी के साथ अब दीजिए इजाजत मार्गेशा
1: और अनुभूति को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं राजा फिल्म का गीत। स्वर हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के, बोल हैं समीर के और धुन है नदीम श्रवण की।

आइए अब सुनते हैं दिल तो पागल है इस फिल्म का गीत। स्वर हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण के, बोल हैं आनंद बख्शी के।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर लीजिए प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, कृषि वैज्ञानिक।
1: बढ़ते कदम बदलता भारत विकसित होता भारत।
2: समर्थ हम सशस्त्र हम स्वच्छ भारतम विकसित भारतम विकसित भारतम हो।
3: बढ़ते कदम बदलता भारत विकसित होता भारत।
4: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम विकसित होता भारत में आपके साथ हूं मैं दुर्गेश निंदनी। श्रोताओं, विकसित भारत 2047 भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी विजन है, जिसका लक्ष्य 2047 तक आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। जी हां श्रोताओं, ये योजना समावेशी विकास, आर्थिक समृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी नवाचार और सुशासन पर केंद्रित है। विजन इंडिया 2047 परियोजना का लक्ष्य भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी देश बनाना है, जो मानव विकास और सामाजिक कल्याण के मामले में भी मॉडल देश होगा। जी हाँ, पर्यावरणीय संवहनीयता का प्रबल पक्ष समर्थक होगा। कुल मिलाकर श्रोताओं, स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक एक विकसित राष्ट्र और पुनः विश्व गुरु सुपर पावर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और इसमें भारतीय कृषकों और कृषि क्षेत्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत होगा, क्योंकि कृषि न केवल देश की अर्थव्यवस्था का स्तंभ है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत की नींव भी है।

0: श्रोताओं, भारत का भविष्य उसके गांवों और खेतों में बसा है। सशक्त कृषक ही एक सशक्त और विश्वगुरु भारत का निर्माण कर सकते हैं। तकनीकी रूप से उन्नत, टिकाऊ और आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र के माध्यम से भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि दुनिया को भी दिशा दिखाएगा, क्योंकि हरित क्रांति से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है हमारा भारत। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है कि भारत केवल अपने देश के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा तक सीमित न रहे बल्कि विश्व बंधु की भावना के चलते दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करने वाला फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बने। इसी कथन को ध्यान में रखते हुए आज हमने विकसित होता भारत कार्यक्रम में भेंटवार्ता का विषय रखा है, भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाकर रहेंगे। इस विषय पर हमसे बातचीत कर रहे हैं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप कुमार सिंह। नमस्कार सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी नमस्कार।
2: धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि विकसित भारत 2047 का उद्देश्य क्या है और ये पूरा कार्यक्रम क्या है, इसके विषय में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें प्लीज।
1: विकसित भारत 2047 भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक देश को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र, तकनीकी रूप से उन्नत, समृद्ध और समाज निवेशी बनाना है। इसमें जो है 30 मिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति उच्च आय, आधुनिक बुनियादी सुविधाएं, सुशासन और सामाजिक न्याय मुख्य रूप से जोर दिया गया है। विकसित भारत 2047 के लिए जो सरकार की मुख्य कार्य योजना है, आर्थिक विकास और विनिर्माण पे जोर दिया गया है, तकनीकी आत्मनिर्भर ये भी बात की गई है, बुनियादी ढांचा और सुशासन को भी हम कैसे मजबूत करेंगे, ऊर्जा क्षेत्र और स्थिरता पे भी कार्य करने की बात कही गई है और युवाओं की भागीदारी पे भी बात की गई है।
2: क्या बात है सर, बात लक्ष्य की करें तो विकसित भारत 2047 का प्रमुख लक्ष्य क्या है ये भी बताइए।
1: जी, विकसित भारत 2047 लक्ष्य की यदि हम बात करें तो प्रमुख जो विषय है, नंबर वन पे जो है जीडीपी महत्वपूर्ण है, जिसमें 30 ट्रिलियन डॉलर की बात की गई है और प्रति व्यक्ति आय जो है वो विकसित देशों के समान जो है बढ़ाने की बात की गई है और जहां तक जो गरीबी की बात है, जो निर्धनता है वह 1% से कम हो अपने देश की, और महिलाओं की जो भागीदारी है वो 50-70% हो। वर्तमान में यदि हम देखें तो महिलाओं की भागीदारी जो है 25-30% है, तो इसको भी हमको 50-70 पे

0: जाना है 2047 तक, और कुल निर्यात जो है 10 ट्रिलियन डॉलर की हम बात कर रहे हैं, और नवीनीकरण ऊर्जा जो सौर ऊर्जा है जो सूर्य की रोशनी के द्वारा जिसपे काम सरकार कर रही है, तो 1500 गीगावाट की लक्ष्य को रखा गया है 2047 तक, उसको भी हमको प्राप्त करना है, ये लक्ष्य दिया है सरकार ने। और जो साक्षरता है, अभी हम अभी पीछे हैं, जिसको 100% जो है साक्षर बनाना है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है कार्यक्रम के माध्यम से हमें भी और हमारे श्रोताओं को। अब हम
0: जी
1: बात करते हैं कि विकसित भारत 2047 के अंतर्गत
0: जी
1: आर्थिक समृद्धि के प्रमुख इंजन कौन-कौन से हैं?
0: जी यदि हम 2047 के अंतर्गत बात करें, इसमें कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र में जो 2025 में 3.8 की वृद्धि दर्ज की गई है, इसको भी हमको आगे बढ़ाना है, तो कृषि क्षेत्र को भी हमको ध्यान में रखना है इंजन के रूप में। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ये भी
1: जी
0: सरकार ने रखा है, जिसमें 45% योगदान देते हैं, इसको 15 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो है योजना बनाया है। यह क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन का रीढ़ माना जाता है, और समावेशी विकास में इसकी भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार सकल स्थिर पूंजी निर्माण लगभग 7.1 की वृद्धि दर्ज की गई है, जो इसको हमको 11 के आसपास ले जाना है 2047 में। तो निवेश को भी ध्यान में रखा गया है इंजन के रूप में। निर्यात को भी भारत में वित्त वर्ष 2000 यदि हम 25 में बात करें तो 8824 बिलियन का रिकॉर्ड निर्यात हमारे देश से हुआ है, और निर्यात में वृद्धि से वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत हुई है, और विदेशी मुद्रा भी अपने देश में आया है। अवसंरचना में भी हमको ध्यान देना होगा, ये भी इंजन के रूप में दिया गया है। भारत में वित्त वर्ष 24 के दौरान प्रतिदिन 33.8 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का भी निर्माण किया गया है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग को ध्यान रखा गया है, जिससे जो है तेजी से विकास हो सड़कों का। डिजिटल अर्थव्यवस्था पे भी प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया है, डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान भारत की जीडीपी में 13.42% है।
1: जी
0: भारत विश्व में 55% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की मेजबानी करता है, जिससे वित्तीय समावेशन और उत्पादकता दोनों को बढ़ावा मिला है। जनसंख्यिकी लाभांश के ऊपर भारत की 66% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु का है, जिसको कहा प्रधानमंत्री जी ने बार बार, वो कहते हैं कि सबसे हमारा युवा देश है,
1: जी
0: तो ये भी एक इंजन के रूप में जो है। बाकी तभी आर्थिक शक्ति बनेगा जब एआई, हरित ऊर्जा और कौशल विकास पर समुचित निवेश किया जाएगा। ये हमारा जो है आर्थिक समृद्धि के प्रमुख इंजन है, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं।
1: क्या बात है सर, प्रमुख इंजन के विषय में तो हमें जानकारी मिल गई है, बात चुनौतियों की भी होनी चाहिए सर, तो विकसित
0: जी
1: राष्ट्र बनने की प्रमुख चुनौतियां कौन-कौन सी रहेंगी?
0: विकसित राष्ट्र बनने के लिए जो चुनौतियों की हम बात करें, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त उच्च वृद्धि दर बनाए रखना है, क्योंकि वर्तमान अनुपात जो इस समय है वृद्धि का 6.3 से 6.8 के बीच है, जबकि आवश्यकता है हमें 8% से अधिक आगे बढ़ने की है। इसके अतिरिक्त भारत को मध्य आय जाल का जोखिम भी है, जहां निम्न मजदूरी आधारित मॉडल से उच्च मूल्य उद्योगों में संक्रमण नहीं हो पाता। संरचनात्मक रूप से आज भी 64% कार्यबल कृषि में कार्यरत हैं, जो हमारे श्रमिक हैं 64% कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं, जबकि जीडीपी में कृषि का योगदान केवल 18% ही है। रोजगार और कौशल संकट भी गंभीर है, क्योंकि 4.4% युवाओं को औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त है, और मात्र 51% स्नातक ही रोजगार माने जाते हैं। निवेश के क्षेत्र में जीडीपी का बड़ा भाग उपभोग पर आधारित है, और निजी निवेश व बॉन्ड मार्केट अपेक्षाकृत अविकसित हैं।
1: सर, जैसा कि हमारी बातचीत का विषय है कि भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाकर रहेंगे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत सरकार द्वारा विकसित भारत 2047 के कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र के लिए क्या योजना है?
0: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस सफर में खेत खलिहान से लेकर हमारे किचन तक की तस्वीर भी बिल्कुल बदल जाएगी। लोगों की आय बढ़ने से फल, सब्जियों, दालों, दूध और मीट मछली का उपयोग बढ़ेगा। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2024-25 फसल वर्ष में कुल खाद्यान्न उत्पादन 30.9 करोड़ टन रहने का अनुमान है इस वित्तीय सत्र में, और

0: 1947 48 में 44 करोड़ टन अनाज की हमें जरूरत होगी। इस दौरान गेहूं चावल के मुकाबले दालों और मिलेट जैसे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले अनाज की मांग तेजी से बढ़ेगा, जिसको हमको ध्यान में रखते हुए उसको उत्पादन पे उन्नतशील प्रजातियों पे जोर देना होगा।
1: क्या बात है सर, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है हमारी गवर्नमेंट का। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि विकसित भारत 2047 में किन-किन क्षेत्रों को लक्ष्य बनाया गया है, ये भी आप जानकारी दें।
0: लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने गेहूं चावल का रकबा जो वर्तमान में सरप्लस है उसको घटाने पे विचार कर रही है कि हम उसको कैसे घटा के जो हमारा धान और गेहूं का क्षेत्रफल है उसको हम दलहन में बदल सकें और तिलहन के बदल सके, क्योंकि वहां पे हमें जो है दलहन और तिलहन की कमी है। तो इसको जो है घटा के दलहन और तिलहन का रकबा बढ़ाए जाने की रणनीति बनाई जा रही है, और सरकार की रणनीति जो है समय समय पे बदलती रहती है। और दाल एवं तिलहन फसल पर उन्होंने रणनीति बनाया है कि दाल और तिलहन पे हम जो है MSP को बढ़ा दें, जिससे जो है अनाज वाली फसलों का क्षेत्रफल घट जाए और दाल और तिलहन में हम आत्मनिर्भर बन जाएं और उत्पादन हमें बढ़ जाएगा। किसान धान गेहूं के बजाय इसकी फसलों की खेती करे, जिसके चलते उसकी आमदनी बढ़े, और बढ़ने के साथ साथ सरकार जो है उसकी लक्ष्य को पूर्ति कर लेगा, और जो नुकसान होगा सरकार उसकी जो है भरपाई अपने तरफ से करेगी। जो किसान धान लगा रहा था उसके जगह पे यदि वो तुअर लगाता है, जो नुकसान होगा उसके उपज में, तो ये भी कार्य योजना में शामिल किया गया है। और दूसरा जो है बुआई का रकबा 19.9 करोड़ हेक्टेयर पे रुका हुआ है, इसमें 51% जमीन पर साल में एक बार, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास खेती वाली जमीन है हम 51% रकबा पे केवल जो है साल में एक बार फसल लगाते हैं। तो हमको साल में जो हमारा खेत खाली रह जाता है उसमें हमें फसल बदल के हमको उसको रकबा को जो है 51% के जगह पे 90% से ऊपर जाना पड़े, क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो 125 दिन से लेके 155 दिन में जो है पक्के तैयार हो जाती है। तो साल में हमारा 365 दिन होता है, तो इसको भी जो हमारा खेत है वो खाली न रहे, जिसमें हम दूसरी फसल लगा लें, और फसल लगाने से हम जो है हमारी जिस फसल को उत्पादन की कमी है उसका हमारा रकबा बढ़ जाएगा, ये भी शामिल किया गया। दलहन और तिलहन का उत्पादन बार बार सरकार बढ़ाने की बात कर रही है, अभी भी हम 40%, यदि हमें 100 kg तेल की जरूरत है तो 40 किलो ही हम पैदा कर रहे हैं। 60% एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है बाहर से। हमें खपत को सरकार की जो कार्य योजना है एडिबल ऑयल को हम जो उपयोग करते हैं उसको हम उपयोग भी करें, और अपने देश में उत्पादन बढ़ाने पे भी सरकार बात कर रही है कि कैसे हम इसको उत्पादन को बढ़ाएं। इसलिए सरकार ने, मैंने पूर्व में भी बात किया था कि अभी 2026 में ही केंद्र सरकार ने दलहन मिशन सीहोर से लॉन्च किया है, इसमें किसानों को आर्थिक रूप से जो है मदद की जाएगी और उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने उन्नतशील बीज उर्वरकों के उपयोग का तरीका बदलने की भी बात कर रही है, मौसम के हिसाब से तकनीकी अपनाने और कृषि कर्ज को बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि किसान को जब जरूरत होता है तो उनको कर्ज नहीं मिल पाता है, और बैंकों के तमाम जो नियम और शर्तें हैं वह कठिन हैं। उन शर्तों को भी सरकार आसान कर रही है कि आसानी से किसानों को जो है ऋण मिल जाए। किसान क्रेडिट कार्ड पे भी सरकार जोर दे रही है, जो केंद्र और प्रदेश सरकार बैंकिंग क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनको भी किसानों के घर पे भेजा जा रहा है कि हमारे देश का कोई ऐसा किसान बाकी न हो जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड न हो। उसके पास यदि किसान क्रेडिट कार्ड होगा तो जो भी कृषि क्षेत्र में इनपुट चाहिए वो समय से जो है क्रय करके अपनी फसल की बुआई कर सकता है। यदि उसको गाय भैंस पालने की जरूरत है तो उससे भी जो है वो क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकता है। कृषि क्षेत्र में जो है शोध के क्षेत्र में पूंजी बढ़ाने की बात सरकार कर रही है। अभी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में GDP की यदि हम बात करें तो 0.5% पर है, इसे हमें 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो 0.5 से इसको हमको 2.3% पर ले जाना होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो भी नियम बने हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे देश के वैज्ञानिक हो या रणनीतिकार हो, यदि हम लगे रहेंगे तो 2047 के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे।
1: सर, बहुत ही अच्छी हमारी बातचीत चल रही है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह कृषि उत्पादों की बढ़ेगी जरूरत, ये आप बताइए सर।
0: जी, अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मीट, मछली वगैरह की डिमांड, सप्लाई के और लोगों के खान पान की बदलती पसंद के बारे में नीति आयोग के वर्किंग स्टडी MICRNIP नई दिल्ली के प्रोफेसर PS बिरधन की अध्यक्षता में बनी रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा इकोनॉमिक्स ग्रोथ मानी बिजनेस एंड विजुअल का मामला रहा तो 2047-48 तक ऑल फूड मांग, जो टोटल ओवरऑल फूड की जो मांग होगी, 40 करोड़ के आसपास होगी। 20 लाख टन की अभी फिलहाल है। तेज ग्रोथ की स्थिति में 43 करोड़ के बजाय हमें 70 लाख टन की जरूरत होगी। अभी हमें 43 करोड़ चाहिए, लेकिन उस समय हमें 2047 के लिए जो है 70 लाख टन की आवश्यकता पड़ेगी। 2047-48 में खाद्यान्न उत्पादन 46 से 59 करोड़ टन रह सकता है, इतनी हमारी मांग होगी। लेकिन गेहूं चावल तो सरप्लस है। यदि हम न्यूट्री सीरियल्स की बात करें, दलहन और तिलहन की बात करें, तो रकबा और पैदावार भी नहीं बढ़ा है। इन दोनों क्षेत्रों में उत्पादन भी घटा है और क्षेत्रफल भी घटा है। इनकी डिमांड पूरी नहीं होगी, तो इसको कैसे हमको पूरा करना है, इसमें अभी हम चौथे स्थान पे हैं। तो इसमें हमको बहुत काम करना है कि अपने यहाँ इसका उत्पादन बढ़ जाए, और हमें 4.9 से 5.7 लाख टन दाल की अभी हमें जरूरत उस समय पड़ेगी। सब्जी में भी हमको 36.5 करोड़ लाख टन सब्जी हमको चाहिए, जबकि अभी हमको 21-22 करोड़ टन पे हम अभी रुके हुए हैं। तो हमारा पास जो खेती के लिए जमीन है वही है। हमको सब्जी उत्पादन भी बढ़ाना होगा, क्योंकि दिन पे दिन जो है हमारी जनसंख्या उस समय काफी ज्यादा हो जाएगी। 42 करोड़ टन फल की डिमांड उस समय होगी। अभी जो है हमारा 23.7 लाख टन हमारे पास फल है, तो फल के उत्पादन को भी हमको ज्यादा एरिया में जब ले जाएंगे जी, अच्छी प्रजातियों को हम किसानों तक पहुंचाएंगे, तो हमको तब जाके ज्यादा फल जो है प्राप्त होगा। 4.5 करोड़ टन चीनी हमको चाहिए। चीनी से संबंधित उत्पाद जो अभी भी हम उससे बहुत पीछे हैं, तो इस क्षेत्र में भी गन्ना उत्पादन को हमको बढ़ावा देना होगा। 61 करोड़ दूध उत्पादन को भी टारगेट रखा गया है। तो हम ब्रीडिंग पे भी बात कर रहे हैं, जो हमारी गाय हो उसमें उनके सीमंस का उपयोग किया जाता हो, तो नर और मादा दोनों होते हैं, तो ऐसे सीमेंस का उपयोग करने पे बात कर रही है सरकार, है और सीमेंस उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे केवल बछिया ही पैदा हो, जो नर होते हैं बछड़ा वो न हो, तो उसके थ्रू भी हम दूध उत्पादन को जो है बढ़ावा देंगे। 1.0 जो अंडे पे हम बात करें, तो 1.6 करोड़ टन हमको अंडा चाहिए। तो इसमें भी अभी हमें तो पोल्ट्री पे भी जो है सरकार ने रणनीति बनाया है, और पोल्ट्री की भी योजनाएं चल रही हैं, और आगे भी उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। 2.7 करोड़ टन हमको मीट भी चाहिए, और 3.7 करोड़ टन हमें मछली की भी ये जरूरत पड़ेगी। तो इसको हमको पूरा करने के लिए नीति आयोग ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा मिलके, और जो प्रदेश सरकार हैं, एक जो है चैनल बना हुआ है, तमाम योजनाएं जो है संचालित की जा रही है कि ये जो जो हमारा दाल, तेल और मीट और फल की जो हमें कमी है, इसको हम 2047 तक मांग के अनुसार पूरा करेंगे।
1: सर, जैसा कि फूड बास्केट बना कर रहेंगे तो ये हमारा लक्ष्य है, इसकी पूर्ति
0: जी।
1: की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में क्या-क्या किया जाना चाहिए, ये भी आप जानकारी दें।
0: कृषि क्षेत्र में फूड बास्केट की यदि हम बात कर रहे हैं, तो हमारा ऐसी टोकरी हो जिसमें हमारा सीरियल्स भी हो, तिलहन भी हो, दलहन भी हो, सूखा मेवा भी हो, और इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट भी हो, मीट भी हो, अंडा भी हो, ये सारे हो, तब हम जिसको बोल सकते हैं कि फूड बास्केट हमको जो है विश्व गुरु बनना है। तो इसमें कई क्षेत्रों में यदि प्रमुखता से देखें तो हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है अनाज में, हम बात करें तो चावल और गेहूं की। तो चावल और गेहूं में तो हम कीर्तिमान स्थापित किए हैं, हमारे पास उत्पादन है, अपने देश को खिलाने के बाद दूसरे देशों को भी हम दे रहे हैं।

0: खाद्य प्रसंस्करण को भी इसमें महिलाओं की भागीदारी को इसमें जोड़ा गया है, और इस भागीदारियों को देखते हुए सबके जन सहयोग से, वैज्ञानिकों के सहयोग से हमारा देश जो है विश्व में फूड बास्केट जरूर बनने में 2047 में सफल होगा, यह हमें निश्चित ही नहीं पूर्ण विश्वास है।
1: क्या बात है सर, हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं कि हमारा ये मनोरथ सिद्ध हो। सर एक और प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी है, जो भारत को वैश्विक स्तर पर कृषि शक्ति विश्व गुरु बनाने और खाद्य सुरक्षा फूड बास्केट के लक्ष्य को पूरा करने में नारी नारायणी के रूप में अग्रणी है। महिलाओं की महती भूमिका किस तरह से होगी सर, ये भी आप बताए प्लीज।
0: केंद्र सरकार ने, विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कृषि मंत्री जी ने बार बार अपने भाषण में ये कहा है कि नारी नारायणी की महत्वपूर्ण भूमिका है कृषि के क्षेत्र में, चाहे वो सब्जी उत्पादन हो, चाहे वो दूध दूध उत्पादन हो, चाहे बीज के रख रखाव की, मेन जो उत्पादन की हम बात यदि कृषि क्षेत्र में करते हैं तो मूल मंत्र हमारा बीज है, और बीज के रख रखाव में 100% जो योगदान है वो हमारी महिलाओं का होता है। यदि हम बुआई की बात भी फसल की करें तो हमारी महिलाएं जो है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। यदि हम मछली की प्रोसेसिंग की बात करें, या जो भी हमारा दाल है, तेल है, उसकी पैकिंग की, प्रोसेसिंग की बात करें, उसको पैकिंग की बात करें, तो हमारी जो नारायणी सेना है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है समय समय पे। और हमारा देश जो है इन क्षेत्रों में महिलाओं के सहयोग से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: बहुत ही अच्छे सर आपने ये बात कही, और ये नारी सशक्तिकरण की एक तरीके से मिसाल होगी। सर आप क्या सोचते हैं, 2047 में भारत अपने लक्ष्य विश्व गुरु को प्राप्त कर पाएगा?
0: इसमें कोई संदेह नहीं है, भारत प्राचीन काल में ही विश्व गुरु कहा जाता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यहाँ धातु, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और संस्कृत का अद्भुत संगम विकसित हुआ था। विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय आते थे। इन विश्वविद्यालयों की गिनती विश्व में होती है। विश्व रैंकिंग में यदि हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो विश्व में जो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग है, 2026 में भारत जो है 54 विश्वविद्यालय उसमें आते हैं, जबकि यही जब रैंकिंग हुई थी 2015 में तो भारत के जो है 11 विश्वविद्यालय थे। वर्ल्ड रैंकिंग में 2026 में 128 संस्थान जो है भारत के शामिल हैं। अमेरिका प्रथम स्थान पे है और भारत जो है द्वितीय स्थान पे है। ग्लोबल नॉलेज का हब बन रहा है भारत। 2047 में 5 लाख विदेशी छात्र पढ़ेंगे भारत के विश्वविद्यालयों में। आर्थिक रूप से मजबूत, सैन्य शक्ति में भी हमने मजबूती प्रदान किया है। जहां तक हम सैनिक की बात करें तो भारत में जो है 4-4 लाख सैनिक हैं, 4500 टैंक है और 458 हमारे पास विमान है। अंतरिक्ष में हमने अच्छा काम किया है। भारत अपनी आर्थिक संस्कृति, आर्थिक शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और तकनीकी नवाचार से विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है और विश्व गुरु अवश्य ही बन के रहेगा।
1: क्या बात है सर, हमारी भी यही शुभकामना है कि हमारा देश विश्व गुरु के लक्ष्य को प्राप्त करे। और सर आपने विषय से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर यदि आपकी पसंद का कोई गीत हो जो आप सुनना चाहें तो प्लीज बताएं।
0: तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक फिल्म है उपकार, इसमें एक गाना है मेरे देश की धरती सोना उगले, ये हमारे किसानों को थोड़ा सा जो है ये गाना

और श्रोताओं, अब बात करते हैं पीएम प्रणाम योजना की। इसका अर्थ है धरती माता का पुनर्स्थापन, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम। जी हां श्रोताओं, पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य उर्वरकों के टिकाऊ और संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के माध्यम से मां पृथ्वी के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को पूरक बनाना है। उद्देश्य की बात करें तो यूरिया डीएपी पर निर्भरता कम करना और सतत कृषि को बढ़ावा तो देना ही है, साथ ही कोई राज्य रासायनिक उर्वरकों के उपभोग को कम करता है तो उर्वरक विभाग द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में जो बचत होगी उसका 50% हिस्सा उस राज्य को अनुदान के रूप में मिलेगा। श्रोताओं, अनुदान का बंटवारा 50% अनुदान में से 70% का उपयोग वैकल्पिक उर्वरकों के लिए तकनीकी सहायता और 30% का उपयोग किसान पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाएगा। इस योजना के लिए कोई नया अलग बजट नहीं है श्रोताओं, ये योजना 3 वर्षों के लिए लागू की गई है। ये योजना धरती माता के संरक्षण और किसानों की कृषि लागत को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण हरित पहल है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। दुर्गेश नंदिनी को दे अनुमति, नमस्कार।
1: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।
2: समर्थ हम, सशस्त्र हम, स्वच्छ भारतम, विकसित भारतम, विकसित भारतम।
3: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।
4: अभी आप सुन रहे

थे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। विशेषज्ञ थे डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, कृषि वैज्ञानिक। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज हमारे कलाकार हैं अभय मानके।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम में अभय मानके के भक्ति गीत। वायलिन पर थे कमल कामले और तबला संगत थी उल्लास राज हंस की। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में आज हमारे कलाकार हैं मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री। आइए सुनते हैं इनके स्वर में निमाड़ी लोकगीत। हारमोनियम पर है नरेंद्र गीते, झांझ पर जयदेव पंडित और तबला संगत है प्रवीण गीते की।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है लोक संगीत, और आज हमारे कलाकार हैं मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री, और हम सुन रहे हैं उन्हीं के स्वर में ये लोकगीत। तो आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री और साथियों के स्वर में निमाड़ी लोकगीत। हारमोनियम पर थे नरेंद्र गीते, झांझ पर जयदेव पंडित और तबला संगत थी प्रवीण गीते की। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीट के 15 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं समझा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में सम्पन्न हो गया। सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में

0: उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और 1 जवान घायल हो गया। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्ण कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए रवाना की गई टीम के साथ ये घटना हुई। घायल जवान का उपचार हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। जयपुर में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने आईपीएल इतिहास में 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज और कल की सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम। 7:10 पर भोपाल से रिले होंगे प्रादेशिक समाचार। 7:20 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा खेती गृहस्थी। कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता कृषि विपणन और डिजिटल मंडी प्रणाली। वार्ताकार हैं वीणा राठौर। सुर्खियों में 8:00 भोपाल से रिले होगा। दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम सुनिएगा 8:15 पर। 9:15 पर कार्यक्रम होगा चित्र गीत। राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका दिल्ली से रिले होगा 9:30 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली से रिले होगा 10:00। ये थे आज की सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम। कल यानी 3 मई के शेष मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं।

सुबह 6:05 पर सुनिएगा वंदना। चिंतन सुन सकेंगे सुबह 6:30 पर। गर्मियों में खाली पड़ी जमीन को कैसे करें तैयार, जानेंगे खेती की बातें में सुबह 6:35 पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा सुनहरे पल 7:35 पर। कल के सितारे बच्चे हमारे कार्यक्रम सुनेगा 8:30 पर। 9:00 लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा बुंदेली लोकगीत, कलाकार होंगे राकेश तिवारी। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा 9:15 पर, कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा 9:30 पर, कार्यक्रम में सुनिएगा गायन वसुंधरा कोमकली का, राग होगा रामकली। जिले की चिट्ठी भोपाल से रिले होगा 10:00। फोन इन कार्यक्रम 10:05 पर सुनिएगा MH हॉटलाइन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम भोपाल से होगा 12:00 और दोपहर के 2:00। संग्रहालय से सुनेगा 12:30 पर, यह कार्यक्रम भोपाल से रिले होगा। महिला कार्यक्रम होगा 2:00। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा 1:30 पर, यह कार्यक्रम भोपाल से ही रिले होगा। भोपाल से ही रिले होगा।

सुगम संगीत का कार्यक्रम 1:45 पर। बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान भोपाल से रिले होगा 2:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युवानी होगा शाम 5:00। 5:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। 6:30 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगे गुलाम अली और मुकेश चन्ना। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा 6:45 पर। 7:20 पर कार्यक्रम होगा खेती गृहस्थी। कार्यक्रम में सुनिएगा भेंटवार्ता। गर्मी के मौसम में मिट्टी परीक्षण और फसल चयन, वार्ताकार होंगी डॉक्टर दिव्या। सुर्खियों में भोपाल से रिले होगा 8:00। डगर विकास की भोपाल से रिले होगा 8:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 8:30 पर। 9:15 पर कार्यक्रम होगा चित्र गीत। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली से रिले होगा रात 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा दिल्ली से रिले होगी रात 10:00। ये थे कल की सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल करेंगे इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदेश में गेहूं खरीदी कार्यों की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम किया शुरू। और मौसम विभाग ने ग्वालियर, रीवा, सागर, शहडोल और जबलपुर संभाग के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अधोसंरचना और उद्योगों के समन्वित विस्तार के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल इंदौर के ग्राम नैनोद में इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 20 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर की लागत राशि 2,360 करोड़ रुपए होगी। इस कॉरिडोर के माध्यम से पीथमपुर निवेश क्षेत्र, लॉजिस्टिक हब, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को एकीकृत कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। इससे उत्पादन और वितरण तंत्र अधिक प्रभावी बनेगा और उद्योगों के लिए संचालन की प्रक्रिया सरल होगी। यह परियोजना प्रदेश में निवेश प्रवाह को सुदृढ़ करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगी। केंद्र सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। यह संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
2: सी डॉट भारत की सबसे विशेष R&D भारत सरकार की कंपनी के द्वारा ये सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन के जरिए आज 21 भाषाओं में भारत का ये आत्मनिर्भर सॉल्यूशन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री जी के अध्यक्षता में देश को समर्पित किया गया है। एक एक गांव तक, एक एक कस्बे तक, चाहे हिमालय की पहाड़ियां हो, चाहे समुद्र के तट हो, चाहे उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ऊंचाइयों, हर जगह तक लोगों की जान और माल की सुरक्षा निश्चित करने के लिए ये सुविधा बहुत उपयोगी रही।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा में गेहूं खरीदी कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों को गेहूं बेचने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है।
3: किसान भाई और बहनों से गेहूं खरीदी का काम निरंतर जारी है। आज मैंने यहाँ विस्तार से विदिशा संसदीय क्षेत्र की चारों जिले में खरीद की क्या स्थिति है उसकी समीक्षा की है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अब स्लॉट बुकिंग की समस्या जो पहले आ रही थी कि स्लॉट बुक नहीं हो रहे थे, अब स्लॉट बुक तेजी से हो रहे हैं और 80% से ज्यादा किसानों के स्लॉट बुक हो चुके हैं। सत्यापन की भी एक समस्या आ रही थी, उसका समाधान भी निकाला गया है। खरीद केंद्रों पर जो गेहूं पहले 1,000 क्विंटल तोला जाना था, अब 2,250 क्विंटल रोज उसकी तुलाई हो सकेगी। कांटे भी खरीदने के लिए बढ़ाए गए हैं। एक समस्या और आ रही थी बारदानों की, तो बारदानों की समस्या का भी समाधान हो गया है। सारी समस्याओं का समाधान हो गया है।
1: केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच घरेलू LPG सिलेंडरों की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि कल ऑनलाइन LPG सिलेंडर बुकिंग में 99% की वृद्धि हुई, जबकि OTP आधारित डिलीवरी 94% से अधिक हो गई है। LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए कल देशभर में 1700 से अधिक छापे मारे गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। श्री जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हाल में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार इनोवेशंस इन ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस में शामिल हुए। सेमिनार में निर्माण क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट कम करने के प्रभावी उपायों पर विस्तार से चर्चा के साथ ही आधुनिक तकनीकों जैसे 3D प्रिंटिंग, स्मार्ट ग्लास और पुनर्नवीनीकरण सामग्री के उपयोग पर भी विशेषज्ञों द्वारा मंथन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के साथ जल संरचनाओं के संरक्षण और प्रबंधन पर भी कार्य कर रही है, जिसमें मध्य प्रदेश देश भर में सबसे आगे है।

करा ना, इससे उससे चलाया। दूरदर्शन केंद्र भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकाश ने उर्दू कैजुअल असाइनी के पैनल में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती सीजी ऑपरेटर, न्यूज रीडर और कॉपी एडिटर पदों के लिए की जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए प्रसार भारती की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विवरण प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में गुरुवार शाम पर्यटन विभाग का एक क्रूज तेज आंधी की चपेट में आकर डूब गया था। इस हादसे में अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 29 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 3 बच्चों सहित 4 लोग लापता हैं। प्रशासन ने मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं और कई कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। भोपाल स्थित राज्य शूटिंग अकादमी में 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप आज से आयोजित की जा रही है। आगामी 15 मई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर से 3000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 42 राज्यों, सेना एवं अर्धसैनिक बलों के बालक बालिकाएं, महिला एवं पुरुष खिलाड़ी, 10 मीटर एयर राइफल एवं 50 मीटर राइफल स्पर्धाओं के यूथ, जूनियर एवं सीनियर वर्गों से भाग ले रहे हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में तेज गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है। पिछले दो दिनों से प्रदेश के आधे से अधिक हिस्सों में आंधी बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान शहडोल, चंबल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, रीवा, सागर, शहडोल और जबलपुर संभाग के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत वॉश ऑन व्हील्स कार्यक्रम में स्वच्छता साथियों का एक दिन का प्रशिक्षण जिला पंचायत झाबुआ के नए सभा कक्ष में हुआ। राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन जनसुनवाई कक्ष कलेक्ट्रेट गुना में किया गया। आगरमालवा में स्टार्टअप्स विषय पर आयोजित किए गए व्याख्यान में मार्केटिंग रणनीतियों पर उपयोगी जानकारी देते हुए स्टार्टअप शुरू करने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई गई। एकीकृत बाल विकास परियोजना बैतूल शहरी के समस्त केंद्रों में 2 मई को लाडली उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिका सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना और लाभों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना रहा। शहडोल जिले में जनगणना 2027 का पहला चरण शुक्रवार से शुरू हो चुका है। प्रगणक घर घर पहुंचकर मकानों का सूचीकरण कर रहे हैं और सांदीपनी विद्यालय श्योपुर में व्यावसायिक शिक्षा के तहत विद्यार्थियों के लिए 20 दिवसीय ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुरू की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। नीचे प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनवा वाला सगलाज किसान भाई बहनों के अनुराधा की राम राम। भाई बहनों, अभी देख ही रहे हैं अपन कि अपना खेत की बात करा तो खेत में रबी की फसल कटी के बाहर आई गई है। जिन्हें किसान भाई बहनों ने चना लगाया था वो तो बहुत पहले ज कटी गया, पर जो गेहूं भी था, गेहूं भी लगभग बहुत सारा किसान भाई बहनों ने कट ही लिया है ना, अब ज़्यादातर मंडी में पहुँच ही गया है। पर अब खेत की तैयारी की बात करा तो ये ऐसा समय है भाई बहनों कि खाली खेत जी है वो सबसे वो मैं सूरज की धूप जी जा रही है नी, वो कासी अंदर जी इतना भी कीटाणु बीमारी का फैलाने वाला जीवाणु है सब मरी जाएगा ना, ओकासी भी अच्छी बात।

ये भी जानकारी में लगे कि भाई हमारा खेत को पीएच, जो मिट्टी को पीएच कही है ना, मिट्टी की लवणीयता की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। वो खाली मिट्टी परीक्षण से मालूम पड़े कि हमारे खेत की मिट्टी अम्लीय है कि क्षारीय है। इकलिए क्या कहा कि भाई 2 से 3 साल में एक बार आपके मिट्टी की जांच करानी है, एक बार जांच करा लेंगे तो बस ये सारी जानकारी ना मिली जाएगी। अब ओकासी कई होएगो, फायदों कई होएगो कि उर्वरक की संतुलित मात्रा आप उपयोग करोगे तो ओकासी कृषि की लागत घटेगी। भाई आपने मिट्टी जी जांच करने का लग दोगा, उसके बाद जी अनुशंसित मात्रा आपके वैज्ञानिक बताएगा नहीं, तो उसका उपयोग सी अतिरिक्त जी आप पहला नाखिला बिना सोचा समझा उका में बहुत सारो उर्वरक किसान भाई बहन नाखी दाए तो उका सी कही हुआ है कि अतिरिक्त पैसों खर्च हो ही जाए। अब करनू कही है बहुत आसान काम है, आपका खेत में जानू है 10 से 12 ऐसे जगह ढूंढी लेनू है जहाँ से कि आपके मिट्टी लेनू है। बस इन्हीं बात को ध्यान रखनू है कि ऐसी जगह में पेड़ का नीचे की मिट्टी नहीं लूँ, या फिर अपन खाद जहाँ बने रहा हूँ वहाँ की मिट्टी नहीं ला, नहीं तो अपनों परिणाम जी है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्हीं जगह पे जाइए कि आपके वी आकार को एक गड्ढो खोदनी है, ओके साथ साथ जिस साइड से मिट्टी निकाली के धीरे धीरे धीरे धीरे खुर्ची खुर्ची के नीचे इकट्ठी कर दो, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत के बाहर निकाल लो, ओके 4-6 बार अलग अलग तरीका से छानो, फिर आधी करो, फिर आधी करो, आधी करो, ऐसी आधी जब तक करनी है जब तक कि मिट्टी 250 ग्राम या 500 ग्राम का लगभग हुई जाए। 500 ग्राम का आसपास की जो मिट्टी है उसके एक सैंपल बैग में, सैंपल बैग का बारे में सबसे पहले बात यह ध्यान रखने की है कि उसके मिट्टी के कपड़ा के बैग में रखनू है, बिल्कुल भी प्लास्टिक की थैली में ओके उपयोग नहीं करनू है। यहाँ पे कपड़ा की थैली एक ले लो, उसका पे अपनो नाम लिखी दो, किसान को नाम, खसरा नंबर, नमूना कितना दिन लियो थो की तारीख नाखी दो। ये आपने 500 ग्राम मिट्टी के परीक्षण जो सैंपल लियो है अब आप इके सरकारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेज दो। 15-20 दिन कभी कभी लगी जाए, थोड़ा सा ज़्यादा भी समय लगे, उसका बाद आपका पास जो परिणाम आएगो, जो अनुशंसित मात्रा आएगी, उन्ह आधार पे आप अपना खेत में उर्वरक नको उपयोग करोगा तो खेती की लागत बहुत कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा मेहनत पर बहुत सारो पैसों की बचत। बात आज बहुत सारी करांगा पर उसका पहला सुना एक लोकगीत सीताराम वर्मा बेहरा जी को गाए।

0: भाई बहनों, अभी अपन जी लोकगीत सुनी रिया था। उका गायक कलाकार था सीताराम वर्मा। लोक संस्कृति का संरक्षण में अपनो सर्वस्व न्योछावर करने वाला महान विभूति सीताराम वर्मा भेरा जी की स्मृति में उज्जैन का कालिदास अकादमी में पिछला दिन भेरा जी सम्मान समारोह को आयोजन हुयो। इना सम्मान समारोह ने मालवा की सांस्कृतिक विरासत के एक बार फिर से जीवंत कर दियो। लोक गायिका ने लोक संस्कृतिविद डॉक्टर अनुराधा शर्मा का साथ गीता पराग के भेराजी सम्मान से सम्मानित हुई कन्ना एक साथ मालवा लोक कला ने सांस्कृतिक संस्थान द्वारा आयोजित इना 39वां भेराजी सम्मान समारोह की अध्यक्षता करी सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय का कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने। अध्यक्षता करता हुआ शैलेंद्र शर्मा जी ने कहा कि भाई भेरा जी ने लोक गायन ने लोक संस्कृति के आकाशवाणी का सही अर्थ में उनने आकाशवाणी के लोक वाणी बनाई दी। मालवा लोक कला न संस्कृति संस्थान का सचिव जी है जयेश कैलाश भेरा जी, उनने कहा कि भेरा जी को जीवन जी है पल पल संस्कृति का प्रति समर्पित थो न इना भेरा जी सम्मान का माध्यम से वी उना कला साधक न को सम्मान करी रिया है, उनको अभिनंदन करी रिया है जो लोक कला ने लोक परंपरा के आगे बढ़ रिया है न नई पीढ़ी तक पहुँचा रिया है। इना कार्यक्रम का मुख्य अतिथि सिने निर्माता निर्देशक अनिल दुबे था। उन्होंने आकाशवाणी का अपना ये जी खेती गृहस्थी कार्यक्रम है नी एका बारा में बताया कि ये कार्यक्रम खेती ने मालवी निमाड़ी बोली के उत्थान को सबसे बड़ो मंच है। इना सम्मान समारोह में उज्जैन आसपास का शहर का लोग बड़ी संख्या में उपस्थित था न भेरा जी सम्मान खेल ने सफल बनायो। अपन अपना कार्यक्रम में भेरा जी का एक रामायण पाठ भी सुनांगा, पर उनका पहला एक भेंट वार्ता सुनीला। ये भेंट वार्ता है कृषि विपणन का बारा में। कृषि विपणन ने डिजिटल मंडी प्रणाली का बारा में जानकारी दे रही है वीणा राठौर जी की अनुबंधित शिक्षक है कृषि अर्थशास्त्र विभाग कैलाशनाथ काटजू महाविद्यालय मंदसौर में। इनका सी बातचीत कर रहा है भाई ब्रजेश जोशी।
1: किसान भाइयों, आधुनिक युग विज्ञान को युग और हमका कदम से कदम मिले न चलनु भी पड़ेगा, क्योंकि यदि हम परंपरागत तरीका पर आधारित रहा और नया जमाना की प्रणाली न से नहीं जुड़िया तो समझो हमारो कहीं न कहीं आर्थिक नुकसान भी हुई सके। और जो हमारो प्रधानमंत्री को सपनो छे कि किसान अपनी आय दुगनी कर, वो काम अभी अपन का परेशानी आई सके, तो हमको चलनु कदम से कदम मिले न। बात करी रोज हूँ कृषि विपणन और डिजिटल मंडी प्रणाली की, तो आज हमारा साथ मोबाइल फोन लाइन पर वीणा राठौर अनुबंधित शिक्षक कृषि अर्थशास्त्र विभाग कैलाशनाथ काटजू महाविद्यालय मंदसौर से जुड़ी रहे, तो अपन उनका से इना विषय पर चर्चा करने का पहले उनको स्वागत करी ने कवा राम राम।
2: राम सर, राम राम किसान भाई, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आकाशवाणी इंदौर की कि उन्होंने यह मंच प्रदान किया ताकि मैं किसान भाइयों के साथ अपने विचार को साझा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: बात विषय से संबंधित कृषि विपणन और डिजिटल मंडी प्रणाली एक बारा में आप सबसे पहले विस्तृत जानकारी दो।
2: जैसे कि किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर हम हमारे करोड़ों किसान भाइयों की जीविका का मुख्य स्रोत कृषि ही है और वो उसी पर निर्भर रहते हैं। तो उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ हम कृषि उत्पादों का जो एक मुख्य रूप है वह है उचित विपणन की व्यवस्था, क्योंकि हम उत्पादन तो कर सकते हैं किसान भाई, पर अगर उसकी उचित विपणन की व्यवस्था नहीं होगी तो उन्हें उनका उचित मूल्य भी नहीं मिल पाएगा और उसकी की उतनी वैल्यू भी नहीं रहेगी उस उत्पादन की। इसलिए और लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो पारंपरिक मंडी प्रणालियां होती है उसमें हमारे बिचौलियों की अधिकता होती है, जो मूल्य है उनकी भी अस्थिरता पाई गई है और पारदर्शिता की कमी के कारण किसान भाइयों को अपना उचित मूल्य मिल ही नहीं पाता है। अब जो यह कृषि विपणन की जो अवधारणा है वह भी मैं विस्तृत रूप से किसान भाइयों को समझा देती हूँ कि इसके भी कुछ चरण होते हैं। जैसे कि किसान भाइयों ने अपना उत्पादन को जो उत्पाद है उसको उत्पादित किया, उसके बाद में उसका संग्रहण किया, फिर वह परिवहन के द्वारा उसे थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या उपभोक्ताओं तक उसके द्वारा पहुंचाया जाता है। यह हमारे कृषि विपणन की एक मूल्य अवधारणा थी। अब इसी के ही कुछ उद्देश्य है जो कि मैं किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहती हूँ कि किसानों को उचित मूल्य दिलाना एक तो इसका यह मुख्य उद्देश्य है, कृषि विपणन से हमारा तात्पर्य यह है, और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध करवाना, बाजार में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, यह इसकी मुख्य अवधारणाएं हैं।
1: अच्छा, पारंपरिक मंडी प्रणाली और उनकी समस्या ना,
2: अभी जैसे मैंने किसान भाइयों के साथ थोड़ी बहुत जानकारी इसके लिए साझा की थी कि जैसे कि मूल्य अस्थिरता हो जाती है, बिचौलियों की बहुत अधिकता होती है, तो यह कुछ थोड़ी थोड़ी सी जानकारियां थी जो कि मैंने किसान भाइयों को बताई कि ये मुख्य समस्याएं होती ही है हमारी जो पारंपरिक मंडी प्रणाली थी।
1: तो एक काम, कौन कौन सा सुधार की जरूरत है?
2: हाँ जी, इसमें हमारे जो सुधार की आवश्यकता, एक तो यह है कि हमारा जो विपणन है वो वैश्विक तौर पर भी होता है, सिर्फ किसान भाइयों के द्वारा जैसे शहरीकरण तक सीमित नहीं है, यह विश्व वैश्विक स्तर तक भी होता है। तो इसके सुधार के लिए हमें ये करना होगा कि किसान भाइयों को अधिक बाजार के विकल्प प्रदान करने होंगे ताकि वो एक मंडी या एक बाजार तक ही अपने बाजार अपने पदार्थ को या अपने जो उत्पाद है उसको सीमित नहीं रख सके। अब निजी निवेशों को बढ़ाना होगा हमें, साथ ही साथ इसके लिए हमें आपूर्ति श्रृंखला को भी हमारी दृढ़ करना होगा, मूल्य खोज जो है, जो हमारी प्राइस की डिस्कवरी है, जैसे कि हमारा प्राइस कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है, हमारा मूल्य कहाँ, हमारे मूल्य में ज्यादा संभावना है कम होने ज्यादा होने की, और उसमें कहाँ ज्यादा अंतर आ सकता है, उसकी पारदर्शिता को बनाए रखना एवं कृषि निर्यात को भी बढ़ाना है। ये इसके कुछ सुधार है जो हम कर सकते हैं और हमारी जो पारंपरिक मंडी की समस्याएं हैं उसको भी हम कम कर सकते हैं।
1: अच्छा, डिजिटल मंडी प्रणाली का लाभ?
2: जी जी, डिजिटल मंडी प्रणाली से जो हमारा तात्पर्य है, जैसे कि किसान भाइयों ने अभी ई नाम का नाम सुना ही होगा जो कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, यह 2016 में लाया गया था। यह इसलिए लाया गया था जैसे कि मैंने अभी किसान भाइयों के साथ एक समस्या साझा की थी पारंपरिक मंडी की, उस मंडी समस्या को ही कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए इसको लाया गया था। अब इसकी कुछ कुछ विशेषताएं यह है कि जैसे कि इसमें हम किसान भाई स्वयं जाकर उनको उपस्थित होने की जरूरत नहीं है मंडी में।

0: ऑनलाइन बोली भी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी पारदर्शिता होती है मूल्य को लेके, गुणवत्ता परीक्षण की सुविधाएं भी ऑनलाइन ही उपलब्ध कराई गई है एवं ऑनलाइन भुगतान प्रणाली भी कराई गई है। तथा इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, एक आपको एक इसका लाभ यह भी है कि विभिन्न राज्यों की मंडी का एकीकरण कर दिया गया है, ताकि हमें सभी जितनी भी राज्य की जितनी मंडियां हैं सभी में एक समान मूल्य हमें प्राप्त हो सके। तथा इसके साथ ही साथ इसके यह भी लाभ है कि बेहतर मूल्य प्राप्ति होगी, एक जो बिचौलिए जो बीच में रहते थे उनकी कमी हो गई है, और सुरक्षित भुगतान की भी हमें विकल्प प्राप्त हो गए हैं, एवं अधिक बाजार के विकल्प भी हमें इसके द्वारा मिले हैं।
1: अच्छा, डिजिटल जो मंडी प्रणाली छे, एकामा छोटा किसान ने भी लाभ छे कई?
0: हाँ, डिजिटल मंडी प्रणाली में छोटे किसानों किसान भाइयों को यह लाभ है इसके द्वारा कि जैसे कि अगर उन्हें इंटरनेट की सुविधाएं मिल जाएगी तो वो उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका परिवहन का खर्च मिलेगा बच जाएगा, तथा जो सीमित भागीदारी होती थी, जो वो बिचौलियों को अपना उत्पादन दे के फिर वो मंडी तक पहुंचाते थे, वो एक उनका मूल्य उनकी जो कीमत देनी पड़ती थी वो एक उनका बच जाएगा। उसके बाद उनके साथ ही साथ राज्यों के बीच जो नीतिगत अंतर आते थे कि किसी राज्य में कुछ अलग मूल्य प्राप्त हो रहा है, किसी राज्य में कुछ अलग मूल्य प्राप्त हो रहा, तो उससे भी हमारे जो छोटे किसान है वो बच सकते हैं और उन्हें उपलब्ध उचित मूल्य प्राप्त होके उन्हें अच्छे प्रॉफिट की भी प्राप्ति हो सकती है,
1: मतलब उनका भी उचित मुनाफा मिली जाए साथ साथ
0: मिल सकता है जी।
1: अच्छा, सरकार की भी कोई पहल रहे काम?
0: जी जी बिल्कुल, इसमें सरकार की पहल है, क्योंकि डिजिटल मंडी का जो प्रस्ताव था वो सरकार द्वारा ही लाया गया था। तो डिजिटल मंडी में किसान भाइयों को यह है कि वो इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के साथ साथ ई मंडियों को भी इसमें सरकार ने सुनिश्चित किया था कि ई मंडियों को सारे राज्यों की जितनी मंडियां उनको इससे जोड़ा जाए, तथा इसमें किसी भी तरीके की कोई बाधा ना हो किसान भाइयों को। और इसके साथ साथ जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं उनमें भी ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, किसान भाइयों के खाते में सीधे पैसे चले जाते हैं, उन्हें कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके की कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है। तथा इसके साथ ही साथ किसान सरकार ने इसके लिए ये भी किया है कि आप कहीं भी बैठकर अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकते हैं, इसके लिए आपको किसी से भी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी गुणवत्ता को, अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बताइए तथा अपने उत्पाद को किसी भी राज्य की मंडी में आप बेच सकते हैं।
1: अच्छा, ई नाम का बारे में आपने अभी चर्चा करी थी, तो ओकामा पंजीकरण की कई व्यवस्था रह या कसो करना पड़े?
0: तो मैं किसान भाइयों को ई नाम के बारे में बताना चाह रही थी कि एक किसान भाइयों, जैसे कि हमारा जो ई नाम है यही ऑनलाइन डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो इसमें हमारे किसान भाई अगर अपने आप के उत्पाद को बेचना चाहते हैं तो उस उत्पाद को किस तरीके से बेच सकते हैं, इससे संबंधित में जानकारी किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहती हूँ। देखिए, जैसे कि किसान भाइयों, यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आप ऑनलाइन इसमें इस प्लेटफॉर्म को ओपन करके अपने आप को यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आप अपनी जानकारी दे सकते हैं स्वयं की, तथा अपने खाते की जानकारी दे सकते हैं, अपने उत्पाद की जानकारी के साथ साथ हमें किसान भाइयों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता का भी यहाँ पर मतलब बताना होगा कि आपका उत्पाद की गुणवत्ता कितनी है तथा कितना उत्पादन आप यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा बेचना चाह रहे हैं। और यहीं पर इसकी गुणवत्ता के आधार पर सूचीकरण करने के बाद जो व्यापारी है वो सारे ऑनलाइन बोली लगाते हैं तथा उच्चतम बोली पर बिक्री होती है, और जितना भी जो भुगतान होता है वो डिजिटल माध्यम से किसान भाइयों के खाते में सीधा पैसा चला जाता है।
1: अच्छा, यह बात तो ही गई ई नाम पर अपना पंजीकरण की। डिजिटल मंडी प्रणाली और इंटरनेट को काई संबंध छे और वर्तमान स्थिति काई छे?
0: डिजिटल मंडी प्रणाली और इंटरनेट क्या का जो है वो सीधा सीधा इसलिए संबंध है, जैसे कि डिजिटल मंडी प्रणाली जो है वो पूरी तरीके से एक कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर पे आधारित है। तो इसमें पंजीकरण करने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता तो होगी ही होगी, और इंटरनेट की आवश्यकता के साथ साथ जो हमारा डिजिटल मंडी है इसमें बस हमारे दो चुनौतियों को भी करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो आपने अपना इंटरनेट आपका सही नहीं है तो कहीं आपको कोई रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। या हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो कि अच्छे से अपनी जानकारी को मतलब इंटरनेट अच्छे से कंप्यूटर वगैरह की जानकारी जिन्हें नहीं है, जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो उनको इसकी चुनौती का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे जरूरी ये क्या तो हम पहले से किसान भाइयों को एक ट्रेनिंग दे दें, ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें सिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर आपको जाकर स्टेप बाय स्टेप अपने उत्पादन को बेचना है। तो यहाँ पर डिजिटल मंडी और इंटरनेट ऐसे हैं कि ये एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। इनके एक दूसरे के बिना मतलब डिजिटल मंडी के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होगी ही होगी, उसके बिना हम इस पे कार्य नहीं कर सकते।
1: अच्छा मतलब यू निकलो कि आपने यू कहो कि भाई एकल एंड प्रशिक्षण की भी आवश्यकता रह।
0: हाँ,
1: तो मारा ख्याल से जो प्रशिक्षण छे वो जो भी कृषि विज्ञान केंद्र छे या कृषि महाविद्यालय छे वहाँ पर या सुविधा न उपलब्ध छे?
0: जी अभी इससे संबंधित कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, पर इससे संबंधित सुविधाओं को मतलब उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। मतलब क्योंकि कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो कि अच्छे से फोन तक का यूज नहीं कर पाते, तो उनको कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आ सकती है।
1: हाँ मतलब जो तकनीकी रूप से जुड़े थे और विज्ञान का युग में करी रहा है तो वो ज्यादातर अब हो ही गए, तो वो निश्चित रूप से इंटरनेट का माध्यम से ये सब काम आसानी का साथ कर सका
0: कर सकते हैं। जी जी।
1: अच्छा अधर संरचना में कौन कौन सा जो मात्रात्मक सुधार छे, जो अधर संरचना छे कौन कौन सा मात्रात्मक सुधार वर्तमान स्थिति में करी सका?
0: जी जैसे अभी जो अपनी अभी की जो चुनौतियां थी वो तो मैंने आपको बता ही दी कि डिजिटल मंडी में क्या क्या है। उसके अलावा अभी हम जैसे भविष्य की अगर संभावनाओं को देखें तो हमें जैसे ब्लॉकचेन तकनीक से पारदर्शिता रखनी चाहिए। फिर जो किसान का जो उत्पादक संगठन है जैसे FPO किसान भाई जानते होंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में है, उसको उसमें भी भागीदारी रखनी होगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी आवश्यकता हम कर सकते हैं। मतलब यह अधोसंरचना में कुछ कुछ चीजों को हमें और ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है ताकि किसान भाई और अच्छे से ज्यादा इसका लाभ ले सके एवं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्राप्त कर सके।
1: मतलब कुल मिले न यो यो कि अपन का लगातार जागरूक और पूर्णतः शिक्षित और प्रशिक्षित किसान बननु पड़ेगा, तब हम इन सब की जानकारी ने लेना और इनका हिसाब से चलना, निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था में भी हम सुधार कर सका, हमारो जो सामाजिक जीवन छे आर्थिक जीवन छे वो कभी उच्च उठानों में मदद मिली सका। वीणा राठौर अनुबंधित शिक्षक कृषि अर्थशास्त्र विभाग कैलाशनाथ काटजू महाविद्यालय मंथोर, आप हमारा साथ मोबाइल फोन लाइन पर जुड़े और हमारा किसान भाई बहन का कृषि विपणन और डिजिटल मंडी प्रणाली का बारे में विस्तृत जानकारी दी। एक वास्ता आपको बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम।
0: राम राम सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भाई बहनों अभी अपन सुनी रहा था भेंटवार्ता कृषि विपणन ने डिजिटल मंडी प्रणाली का बारे में जानकारी दे रही थी वीणा राठौर जी की, अनुबंधित शिक्षक है कृषि अर्थशास्त्र विभाग कैलाशनाथ काटजू महाविद्यालय मंदसौर में, इनका से बातचीत कर रहा था भाई ब्रजेश जोशी। अब देखो आगे इना समय जो खेती बाड़ी का काम का साथ साथ बहुत सारा ब्याह शादी की मौसर भी है, तो अपन अपना कार्यक्रम में भी एक ब्याह को गीत सुनागा स्वाति उखलेन उनका साथी को गायल।

बेन स्वाति उखले ने बहुत मीठो गीत गायो बेना बाई के ब्याह में चलो नी निकारा। अब देखो भाई बहनों इना समय जो है घाम बहुत तेज हुई रही हो ने अपने ऐसा है कि काम धंधो तो छूटे नहीं बट थोड़ो सो अपन कदी ये बात को ध्यान राखी लें कि समय साधी ला भाई 12 बजे से ले के 4 बजे तक जो बहुत तेज धूप रहे उन्हीं धूप में बाहर निकलने नू पड़े बस ऐसा थोड़ा सो कर ला भाई 1-1.5 महीनों बहुत तेज घाम रहेगो लू लगी जाए

तबीयत बिगड़ी जाए, समय खराब हुए, न घर के सब लोग भी परेशान हुई जाए, तो थोड़ा सो इना समय के बस साधनू है थोड़ो कि ज़्यादा घाम में जानू है तो सिर पे कपड़ों बांधनू है, सफ़ेद कपड़ों बांधी ला, पास में एक छोटो सो कांदो रखी ला, नहीं का साथ पानी हमेशा साथ में होनू भी चाहिए, न घर से खूब सारो पी के भी निकला। यदि छोटी छोटी सी बात को ध्यान रखांगा तो जो ये लू की समस्या है नहीं, एका से अपने आप बची जाएंगे। कार्यक्रम में अब एक सुंदर कांड सुनांगा, आज शनिवार को दिन है, भेरा जी को गाए।

अभी अपन सुन ही रहा था रामायण पाठ। कलाकार था सीताराम वर्मा भेरा जी। कार्यक्रम की बखत हुई रही है पूरी। अबे दो आज्ञा। राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुर्खियों में भोपाल से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: रहे हैं घड़ी में 8 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
3: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हमारी चर्चा का विषय है वैश्विक संकट के दौरान भारत के ऊर्जा सुरक्षा को लेकर ठोस कदम। और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जुड़े हैं। मिस्टर तनेजा, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
4: शुक्रिया, धन्यवाद।
3: मिस्टर तनेजा, अभी जो ग्लोबल क्राइसिस है, वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन बनी हुई है, उसके पृष्ठभूमि में आप कैसे देखते हैं ताजा स्थिति को? अगर आप हमें एक ब्रीफ ओवरव्यू बताएं इस दृष्टिकोण से कि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कहां तक इम्पैक्ट हुई है।
4: जैसा आप जानती हैं कि ऊर्जा सुरक्षा जो होती है किसी भी देश के लिए बड़ी अहम होती है। अगर ऊर्जा सुरक्षा नहीं है तो आपकी आर्थिक सुरक्षा नहीं हो सकती, और अगर आर्थिक सुरक्षा नहीं है तो राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं हो सकती। इसलिए भारत सरकार का जो है हमेशा ये जोर रहा है कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए। उसी के तहत अगर आप देखते हैं तो पिछले कुछ वर्षों के अंदर हमने जो अपना तेल हम मंगाते हैं, पहले हम जो तेल मुख्यतः 10 या 12 देशों से मंगाते थे, आज वो लगभग हम 42 अलग अलग देशों से तेल को मंगाते हैं। उसका कारण यही है कि अगर जहां से हम तेल मंगाते हैं अगर वहां पे किसी युद्ध हो जाए या और कोई कारण हो जाए तो जिससे हमारी जो सप्लाई है, हमारी जरूरत के लिए तेल है, उसमें बहुत बड़ी बाधा ना आए
3: जी।
4: और अगर आप देखें हमारी अर्थव्यवस्था, हम लगभग अपनी जरूरत का 87-88% तेल जो है हम अपनी जरूरत का आयात करते हैं। हम भारी मात्रा में गैस भी आयात करते हैं, लगभग 56% अपनी जरूरत का गैस आयात करते हैं, एलपीजी भी हम भारी मात्रा में आयात करते हैं, और अगर आप देखें यूरेनियम भी हम आयात करते हैं। तो चूंकि हमारी निर्भरता आयात पे काफी है, जो तमाम देशों की है, चीन की भी काफी बड़ी निर्भरता है, जापान की तो हमसे भी ज्यादा निर्भरता है आयात के ऊपर, ऐसे में सरकार का फोकस हमेशा ये रहा कि इसको हम कैसे मजबूत किया जाए। जो पश्चिम एशिया की जो आज वहां पर युद्ध चल रहा है एक तरीके से, क्योंकि युद्ध ठीक है अभी तोपें बंद हो गई हैं, लेकिन युद्ध जैसा माहौल तो अभी बना ही हुआ है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो लगभग बंद है, जहां से भारी मात्रा में हमारा भी तेल आता था और हमारी भी एलपीजी आती थी और हमारी भी एलएनजी जो है वो कतार से उसी रास्ते से होकर के आती थी। लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार ने तुरंत जो है जैसे ही वहां युद्ध शुरू हुआ तो इस बात के प्रयास करे गए कि अगर जो वहां से हमारी एलएनजी आना बंद हुई है तो और कहां से लेके आई जाए। तो उसी के तहत जो है भारी मात्रा में हमने अमेरिका से एलएनजी का आयात बढ़ा दिया, नॉर्वे से बढ़ा दिया, हमने मेक्सिको से लेना शुरू कर दिया, हमने अल्जीरिया से लेना शुरू कर दिया, इसके अलावा जो जहां जहां से और उपलब्ध था वो हमने लेना शुरू किया। कुल मिलाकर के अगर आप जो है ऊर्जा सुरक्षा आज के संदर्भ में देखते हैं और उसकी तुलना अन्य विकासशील देशों से करते हैं तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा जो है

0: जो वेस्ट एशिया की सिचुएशन है उसके बावजूद उसको ठीक ठाक तरीके से हैंडल किया आया। इसका मतलब ये कहना मेरा कतई नहीं है कि चुनौतियां नहीं है
1: जी
0: या एलपीजी के फ्रंट पे दिक्कतें नहीं आई, वो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। खासतौर से एलपीजी पे हमको परेशानी आई है क्योंकि हम भारी मात्रा में तो हम बहुत बड़े एलपीजी के उपभोक्ता है, दूसरे दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता है। हमारे देश में 34 करोड़ से ज्यादा एलपीजी के कनेक्शन है।
1: इनफैक्ट जो अभी सूरत में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन था उसके दौरान एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले 60 दिनों से सरकार कच्चे तेल, एलएनजी, एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर लगातार नजर रखे हुए है और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निर्बाध ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो आपको लगता है कि जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम है, पूरे विश्व की तीसरे सबसे बड़ी एनर्जी कंज्यूमर है हम विश्व के, ऐसे में इस तरह का जो प्रोएक्टिव अप्रोच है सरकार का, जो आप स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाती है पूरे हमारे आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक कहें कि मजबूती के लिए?
0: देखिए इस चीज को हम नहीं नकार सकते कि जो पश्चिम एशिया के जो हालात हैं और उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो ऊर्जा जगत है, तेल जगत, उसमें खास तौर से उसके अंदर भारी चुनौतियां आई हैं, भारी उथल पुथल हुई है।
1: जी
0: और इसको कहा जा रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री में ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखा तो इतनी बड़ी चुनौती विश्व ने कभी नहीं देखी।
1: जी
0: 1970 के दशक की अक्सर चर्चा होती है लेकिन वो भी इतना बड़ा एनर्जी शॉक नहीं था जितना ये है। और
1: हाँ
0: वो देश जिसमें भारत, जहां पे एक तरफ तो ऊर्जा की भारी खपत क्योंकि हम बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हमारी आबादी भी बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ जो हमारी
1: जी
0: आयात पे इतनी ज्यादा निर्भरता, तो इस कारणों से जो है ये आवश्यक हो गया था कि भाई किस तरीके से उसको डील किया जा सके। अगर आप अन्य देशों को देखते हैं चारों तरफ उठा करके, एशिया के अंदर भी आप देखते हैं, विकासशील देशों को देखते हैं, तो
1: हाँ
0: उसमें देखा कि भारत में जो कीमतों पर सरकार ने काफी नियंत्रण रखा, काफी
1: जी
0: हद तक जो है, आपने बोला पुरी साहब ने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री का निर्देश था कि आम उपभोक्ता और खासतौर से गरीब को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो मार्जिनल पर रहने वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी का नतीजा है कि इस सब के बावजूद कि तेल की कीमतें जो है भारी बढ़ोतरी आ चुकी है, एलपीजी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी बढ़ोतरी आ चुकी है, लेकिन जो भारत का आम उपभोक्ता है, खासतौर से वो जो गरीब तबके का उपभोक्ता है या गांव में रहने वाला उपभोक्ता है, उसको काफी हद तक शील्ड किया गया है, बचाया गया है, इंसुलेट करके रखा गया है। जो अगर आप पड़ोस के देशों में उठा करके देखते हैं, चाहे पाकिस्तान में देखें, बांग्लादेश में देखें, थाईलैंड में देखें, पड़ोस के देशों में भी आप देखते हैं तो कीमतें कहीं से कहीं चली गई हैं और
1: जी
0: कई कई जगह वहां पे दो दो दिन की लाइनें, कतारें लगी हुई हैं क्योंकि लोगों को चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही, जबकि भारत के अंदर जो है वो कीमतों को भी सरकार ने काफी हद तक जो है वो साथ के रखा है। और दूसरी तरफ ये भी निश्चित किया है कि पूरे देश में खासतौर से तेल, पेट्रोल, डीजल ये सब अच्छी तरीके से उपलब्ध है, और
1: जी
0: एलपीजी के भी हमारी रिफाइनरीज हैं उनको जो है निर्देश दिया गया है कि वो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटाइज करें वो एलपीजी के उत्पादन को करें। और साथ में सरकार बोलूँ तो जो भारत की कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जिन्होंने बड़ी अहम भूमिका इसमें निभाई है, उसमें
1: जी
0: खासतौर से जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां उसकी बड़ी उनकी बड़ी अहम भूमिका है, तो इन सब ने मिला करके जो है, और कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की भी अपनी अपनी भूमिका है, सबने मिला करके पक्का किया है कि जो आम उपभोक्ता है उसको हम कैसे बचा के रखा जा सके। चुनौती बहुत बड़ी है,
1: जी
0: बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि जो रिस्पॉन्स है, जो सरकार जिस हिसाब से उसको मैनेज कर रही है, क्राइसिस को मैनेज कर रही है,
1: जी
0: वो भी बहुत बेहतरीन है अगर भारत की तुलना अन्य देशों से करें आप।
1: कर रहे हैं मिस्टर तनेजा, तो आज बताया कि अमेरिका और कनाडा जैसे शक्तिशाली देशों में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 से 50% तक की वृद्धि देखी गई है, वहीं भारत में अभी कोई वृद्धि नहीं की गई है पिछले 60 दिनों में, जब से ये कहें कि संकट शुरू हुआ है पश्चिम एशिया में। और इसके अलावा जो आपने बात कही कि आयात पर हमारी निर्भरता, उसको कम करने के लिए आपको लगता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू भी लें और मीडियम टर्म भी लें, तो स्ट्रैटेजी जो है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल वो भी शामिल है?
0: देखिए हमको ये समझना होगा कि पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है आज की तारीख में भी लगभग 80% फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, अर्थात वो तेल, गैस और कोयले की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की।
1: जी
0: और भारत की अर्थव्यवस्था में भी जो है वो तेल, गैस और कोयले की भूमिका बहुत बड़ी है। बिजली का भारी भारी मात्रा में उत्पादन हम अभी भी जो है वो कोयले से करते हैं, और उसमें कोयला जो है हमको देश के अंदर ही उपलब्ध है, तो
1: जी
0: जितने भी ईंधन है उसमें कोयला एकमात्र ऐसी चीज है जिसको हमको बहुत ज्यादा आयात करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे देश में हमारे पास कोयले के अपने भारी भंडार है, जबकि तेल की स्थिति वो नहीं है, गैस की नहीं है, और जो कुछ और ईंधन है उसमें वो स्थिति नहीं है। तो जिसको बोलते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी में सबसे पहले ये होता है जो ईंधन जिसका प्रयोग कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए या अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, क्या वो देश

0: में उपलब्ध है, आप आयात करते हैं। तो कोयला एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में अपना हमारा उपलब्ध है। और दूसरी बात यह है कि रिन्यूएबल का बहुत बड़ी भूमिका है। हमने रिन्यूएबल में खास तौर से सौर ऊर्जा में भारत ने बहुत बेहतरीन काम किया। हमने जो अचीव किया वो अच्छे अच्छे विकसित देश भी उसको अचीव नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी क्या है कि हम बहुत बड़े देश हैं, हमारी जरूरत ऊर्जा की बहुत ज्यादा है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, और पूरे देश के अंदर जो है बिजली का जाल बिछा दिया गया है। हर गांव गांव में आज बिजली है, गांव गांव में आज सड़क है, हर जगह एक्सप्रेस वे पहुंचाई जा रही है। जब आप ये करते हैं, इसके जो विकास की गति है उसको आप बढ़ा देते हैं, तो विकास की गति बढ़ती है तो उसकी जो धुरी होती है वो हमेशा ऊर्जा होती है। और इसीलिए भारत में अभी पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन काफी कम है, बहुत कम है ना। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि भाई हमारे हम रिन्यूएबल एनर्जी पे भी जोड़ दें, लेकिन ये आवश्यक है उसके साथ साथ कि हम जो हमारे तेल और गैस और कोयला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अब ये जो है बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है, इनकी अहमियत आने वाले लंबे समय तक रहने वाली है। अगर आप भारत की अप्रोच देखें क्लाइमेट समिट जो वर्ल्ड के होते हैं ना, उसके अंदर भारत की अप्रोच हमेशा ये रही है कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था को अभी तेल भी और चाहिए, गैस भी चाहिए, कोयला भी चाहिए, लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो भी हमारे देश में जितनी प्रगति उसमें हो रही है उतनी और कहीं विकसित देशों में भी उतनी नहीं जितनी भारत में। हमने 2030 का टारगेट जो विश्व के सामने पेश किया था सोलर पावर का, हमने उसे समय से पहले अचीव किया है। तो हम एक साथ कई फ्रंट पे काम कर रहे हैं, हमारे सामने चुनौती ऊर्जा की बहुत बड़ी है।
1: जो आप बात कर रहे थे एलपीजी की, जो आम आदमी के लिए रसोई गैस को प्राथमिकता दी है सरकार ने, उसके अलावा उन्होंने जो पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी के एडॉप्शन को भी बहुत बढ़ावा देने की बात कही है।
0: सरकार की अगर आप पिछले खासतौर से 10 साल की नीतियां और दिशा देखते हैं और यह सोच देखते हैं, उसमें जब 2014 का आप डेटा उठा करके देखते हैं तो 14 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन थे, और देश के अंदर तमाम खासतौर से जो छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, वहां की जो तमाम महिलाएं हैं खाना बनाने के लिए वो ऐसे ईंधन का प्रयोग करती थी जिससे उनकी आंखें भी खराब होती थी, जंगल भी कटते थे और उनका स्वास्थ्य भी खराब होता था। तो सरकार ने ये रहा कि किस तरीके से हमारे देश की जो महिलाएं हैं जो किचन में घंटों गुजारती हैं, किस तरीके से उनको ऐसी ईंधन दी जाए जिससे कि वो आसानी से खाना बना सकें और साथ में जो है उनका स्वास्थ्य जो है वो सुधरे पहले से, और साथ में उनके पास समय हो कि वो और चीजों में लगा सके अपने समय को। ये सबको देखते हुए एलपीजी का भारी विस्तार किया गया, उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत भी और उसके अलावा भी। और आज ये है कि 34.5 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन है, घर घर में आपको लाल सिलेंडर आप देखने को मिलता है
1: जी।
0: लेकिन साथ में ये भी है कि एलपीजी जो है, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो प्राकृतिक गैस हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, सबका मॉलिक्यूल एक होता है, आती सब एक ही जगह से है, उनकी सब नाम प्रोडक्ट के अलग अलग नाम हो जाते हैं। एलपीजी जो है वो भी कच्चे तेल से बनती है, या जहाँ गैस का उत्पादन होता है, गैस की जो फील्ड होती है वहां से वो आती है, और जो प्राकृतिक गैस है वो भी मॉलिक्यूल तो वो भी वहीं से आती है। अब चूंकि हमारे पास जो है जो पीएनजी जिसे पाइप नेचुरल गैस बोलते हैं, जिससे कई जगह शहरों में जगह आजकल जो घर में पाइप लग गए हैं उनसे कुकिंग गैस आती है, वो अलग है, वो नेचुरल गैस है वो, जबकि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, वो एक तरह का तरल पेट्रोल होता है, उसकी हमारे पास जो उपलब्धता है प्राकृतिक गैस की ज्यादा है। तो अब सरकार की कोशिश है कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा जगह लोग पीएनजी को लें, और हालांकि ऐसा नहीं है, जो प्राकृतिक गैस है वो भी हम भारी मात्रा में आयात करते हैं एलएनजी की शक्ल में, लेकिन सरकार के पास उसकी जो देश में भी हमारे पास उसकी काफी अच्छी मात्रा उपलब्ध है। तो वो प्रयास किया जा रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पीएनजी का प्रयोग करें, अर्थात पाइप के माध्यम से अपने किचन में गैस ले जाएं, जिससे कि जो एलपीजी है उन लोगों को ज्यादा आसानी से दी जा सके जिनके पास पाइप गैस की सुविधा नहीं हो।
1: श्री पुरी ने यह भी कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, 2047 तक हमारा टारगेट है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी में भी आत्मनिर्भर होंगे, उसके लिए उन्होंने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी बात की। इसके अलावा आपको लगता है कि शायद सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे जो सोर्सेज है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब पर जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अल्टरनेटिव स्रोत बन जाएगा
0: ऊर्जा में। जो भी आगे का भविष्य कैसा होगा, क्या रोड मैप बनेंगे, नीतियां बनाना सरकार का काम है, वो नीतियां बन रही हैं, और काफी कुल मिला के सरकार का फोकस है कि 2047 तक जो है हमें ऊर्जा की आजादी मिल जाए, जिसको एनर्जी इंडिपेंडेंस बोलते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही भारत जैसे देश के लिए वो बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम ऊर्जा की गरीबी को भी दूर कर सकें और साथ में आयात पे जो निर्भरता है उसको हम कम से कम कर सकें। तो जैसे अमेरिका आज एनर्जी इंडिपेंडेंट हो चुका है काफी हद तक, वो नहीं था, वो भारी मात्रा में आयात करते थे और आज जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो ये इस तरफ भी सरकार काम कर रही है, उसके तहत ही जो है न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी में नई जो है कोशिशें लाई गई हैं। और दूसरी तरफ जो है आणविक ऊर्जा जो है उसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन कैपिटल वो आए, उसके लिए सरकार नई नीति लेकर के आई है, नई सोच लेकर के आई है, शांति के नाम से उस स्कीम का नाम है। लेकिन हमको ये साथ में ध्यान देना पड़ेगा कि भारत को चूंकि हमारी बड़ी आबादी है और बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और आज की तारीख में भी देश में हमारे यहाँ बहुत बड़े संख्या है उन लोगों की जो ऊर्जा की गरीबी में रहते हैं या एनर्जी पॉवर्टी के अंदर रहते हैं। तो एक तरफ तो हमको विकास के लिए ऊर्जा चाहिए, दूसरी तरफ जो है वो एनर्जी पॉवर्टी है उसको खत्म करने के लिए और ऊर्जा चाहिए। तो इसलिए हमारी चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन ये है। और साथ में टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी रोजाना सब चीजों को बदल रही है। तो मुझे लगता है चूंकि हमारे पास सौर ऊर्जा और जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास, और धीरे धीरे हमने देखा है सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है वो बढ़ रहा है, एक तरीके से वो एक ग्रास रूट रिवोल्यूशन बनता जा रहा है। आणविक ऊर्जा जो है उसमें भी सरकार का बहुत फोकस है, हो सकता है बीच में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और आ जाए, जैसे कि हमने देखा हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है अभी कोलापक्कम में हमने उसको लॉन्च किया अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले, तो जो बहुत बड़ा एक जैसे बोलना चाहिए मील का पत्थर है उस दिशा के अंदर कि हमको की आजादी मिल सके। भारत जैसा देश एकमत होता है जहाँ टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, जहाँ इंजीनियर्स की कमी नहीं, जहाँ मार्केट हमारी बड़ी अच्छी है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिसिप्लिन है, तो मुझे तो लगता नहीं कि हम शायद 2047 से भी इसको पहले हासिल कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तमाम नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। आपने हाइड्रोजन का जिक्र किया, इसी तरीके से और भी कुछ टेक्नोलॉजी है जिनका काफी विकास हो रहा है, तो मैं काफी ऑप्टिमिस्ट हूँ।
1: मिस्टर तनेजा, भारत में ऊर्जा सुरक्षा के मजबूतीकरण पर आपने जो चर्चा की, अभी जो एक वैश्विक चुनौती है उसके बीच कितनी बड़ी आगे के लिए लक्ष्य है, उसके विभिन्न पहलुओं पर आपने जो बात करी उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

श्रोताओं, दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम में हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी पूजा ठाकुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। काश दिल की आवाज में इतना असर हो जाए, हम जिन्हें याद करें उन्हें खबर हो जाए। दिल बहुत याद कर रहा है तुम्हें, आ जाओ ना सब छोड़ के, बैठो घड़ी भर पास हमारे। तुम आ जाओ तो वादियाँ हसीन हो जाएं, मौसम सुहाना हो जाए। तुम आ जाओ तो हवाएं भी महसूस होने लगे, तुम आ जाओ तो दिल को करार आए। सुनो, तुम आ जाओ ना।

प्रेम की अपनी भाषा होती है, ये बस प्रेमी ही समझ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रेम की ही बोली एक जैसी होती है। लैला, मजनू, हीर रांझा, रोमियो, जूलियट, इन सब ने एक ही भाषा समझी, वो है प्यार की। जो रूह से रूह को समझ जाता है, वो बिना बंधन भी एक दूसरे से बन जाता है। इस जग में सब झूठा, केवल प्रेम ही निस्वार्थ है। तपती धूप में ठंडी हवा है प्रेम, नदिया का सागर है प्रेम, काली घटा छाए तो बूंदों की मनुहार है प्रेम। मिली है जन्नत उसी को प्रेम में,

0: कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म बॉबी से। स्वर हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह के, बोल हैं आनंद बख्शी के और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

इस गीत के साथ ही चित्रगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के अंक में संपादकीय में हम बात करेंगे अशांत समय में वैश्विक शांति के संदर्भ में महात्मा बुद्ध की प्रज्ञा और कवि गुरु
1: साम्य के बिंदु। हमारी अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में कुछ विशेष टिप्पणियाँ। उसके बाद हम बात करेंगे जनजातीय भाषाओं के साहित्य और उनमें बसी मनुष्य की आदिम चेतना के विषय में। और हमारी अंतिम प्रस्तुति होगी आकाशवाणी में उप महानिदेशक और वरिष्ठ प्रसारक रहे के नायर की पुस्तक उसने कुछ मुझसे कहा पर चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ होंगी उनकी पुत्रियाँ सीमा सागर और सुजाता सहाय।

जब हम विश्व शांति की बात करते हैं तो इतिहास और साहित्य हमें ऐसे अनेक स्रोत प्रदान करते हैं जहां पर मानवता की सबसे उज्जवल आकांक्षाएं अभिव्यक्त हुई हैं। आज जब हम चारों ओर देख रहे हैं, युद्ध की आहटें हैं, भय की परछाइयां हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच दीवारें ऊंची होती चली जा रही हैं, ऐसे में रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य हो या महात्मा बुद्ध का दर्शन और उनकी प्रज्ञा, दोनों ही मनुष्य के भीतर करुणा, सह अस्तित्व और आत्मिक संतुलन की स्थापना पर बल देते हैं। कवि गुरु टैगोर की बात करें तो वो केवल बंगाल के कवि नहीं थे, केवल भारत के नहीं थे, वे उस समूची मानवता के कवि थे जो सीमाओं से परे जाकर सोचती है और जो प्रेम को ही जीवन का सत्य मानती है। अशांत समय में टैगोर का काव्य एक दीपक की तरह है जो ये नहीं कहता कि अंधेरा नहीं है, पर ये अवश्य कहता है कि प्रकाश संभव है। टैगोर ने गीतांजलि में लिखा, मनुष्य की आत्मा की पुकार ईश्वर तक पहुंचती है, पर वो ईश्वर किसी मंदिर में नहीं, वो श्रमिक के पसीने में, किसान की माटी में और बच्चे की हंसी में बसा है। ये विचार कितना क्रांतिकारी था उस समय के लिए और आज भी कितना ताजा है। उनकी कविता शांति का केवल आह्वान भर नहीं करती, वो शांति की जड़ें खोजती है, वो जड़ें जो मनुष्य के भीतर हैं, करुणा में, सह अस्तित्व में, प्रकृति के साथ तादात्म्य में, और वही महात्मा बुद्ध के उपदेशों में अहिंसा, मध्यम मार्ग और मैत्री जैसे सिद्धांत विश्व शांति की ठोस आधारशिला रखते हैं। बौद्ध साहित्य, विशेषकर धम्मपद, हमें ये सिखाता है कि द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम ही उसका अंत करता है। टैगोर की रचनाओं में बार बार एक ऐसे विश्व का स्वप्न उभरता है जहां सीमाएं नहीं संवाद हो, जहां भय नहीं विश्वास हो। उनकी ये प्रसिद्ध प्रार्थना, मन हो निर्भय जहां, दरअसल एक ऐसे वैश्विक समाज की कल्पना है जो शांति और नैतिकता पर आधारित है। महात्मा बुद्ध की दृष्टि और टैगोर के काव्य में एक गहरा साम्य है, मानव केंद्रित चिंतन, अहिंसा की अनिवार्यता और आंतरिक शांति को बाहरी शांति का आधार मानना। आकाशवाणी जो दशकों से विचार और संवेदना का सेतु रही है, ऐसे विमर्शों के माध्यम से न केवल अतीत की धरोहर को संजोने का प्रयास कर रही है बल्कि वर्तमान को भी एक नई दिशा देना चाहती है, संवाद, सह अस्तित्व और शांति की दिशा में। साहित्य भारती की ओर से ये संपादकीय महात्मा बुद्ध की प्रज्ञा और विश्व कवि को नमन है जिनकी वाणी में वैश्विक शांति का स्वर आज भी जीवित है।

0: आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफर। 90 वर्षों में कितनी आवाजें, कितने शब्द, कितने स्वप्न इस माध्यम ने सजोए हैं, सवारे हैं। साहित्य का ये विस्तार आकाशवाणी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्ला।
1: एक सिलसिला यहाँ शुरू हुआ था कि एक कहानी चुनिए और उसका एक पात्र चुनिए साहब, उस पर एक वार्ता 10 मिनट की। तो जैसे मुझसे कहा गया तो मैंने तीसरी कसम कहानी चुनी, जिस पर फिल्म बनी है रेणु जी की, तीसरी कसम कहानी चुनी और हीरामन जो उसका कैरेक्टर है वो पात्र चुना मैंने। तो ये एक सिलसिला था उनका पूरा कि अपने से आप कहानी चुनिए, लेकिन बताना पड़ता था कि हमने ये कहानी चुनी है, ये पात्र, ताकि रिपीटेशन न हो। ये इस तरह के कार्यक्रम हुए। फिर साहित्यकारों पर वार्ताएं हुई, कहा कि साहित्यकार चुनिए साहब। फिर कहना आप उर्दू के साहित्यकारों पर लिख सकते हैं, मैंने कभी लिख सकता हूँ। तो अब उर्दू मजलिस जो है, अब वह हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य सब अब दूरदर्शन पर, तो धारावाहिक बाद में शुरू हुए हैं। रेडियो ने पहले शुरू कर दिया धारावाहिक। एक धारावाहिक कार्यक्रम चला था यहाँ, जिसमें धारावाहिक कार्यक्रम में ये चला था कि एक लेखक और उसकी कोई रचना, वो होगा आधा घंटे का, रिकॉर्डिंग आधा घंटे की होती थी, लेकिन 5-5 मिनट के 6 एपिसोड होते थे। मतलब 6 दिन तक, मंडे टू सैटरडे, वो 5-5 मिनट सुनाया जाएगा। तो एक लेखक चुनना है आपको और उसकी एक किताब चुननी है, तो उसको आपको 6 एपिसोड में बांटना है और 5-5 मिनट के हों, जिसमें लेखक के बारे में और एक जो कृति चुना है आपने उसके बारे में जानकारी श्रोताओं तक पहुंच जाए। ये एक धारावाहिक शुरू किया गया। ये जब चुना गया तो हमसे पूछा गया, हमने उनसे कह दिया कि मैं लेखक तो कालिदास और रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, जिनका नाटक है मुझे। तो फिर मैंने 2 जो एपिसोड है वो तो मैंने लेखक के बारे में लिखा। तो रिकॉर्डिंग जब हो गई, तो जब प्रसारण उसका हुआ, तो हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं रमानाथ अवस्थी, उठकर गले लगा रहे हैं मुझे, सुनला तुमने क्या साहब लिखा है। तो मैंने देखा कि आकाशवाणी कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है कि विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक कृतियों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में कैसे जन जन तक पहुंचा रहा है। क्योंकि जिस जमाने में नहीं था टेलीविजन, जिस जमाने में यह नहीं था, उस जमाने में तो एक ही माध्यम था ना कि लोगों तक पहुंचने का, वो श्रव्य माध्यम था, और श्रव्य माध्यम था रेडियो, ट्रांजिस्टर, तो आकाशवाणी। तो यह इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और मुझे यह देखकर वाकई प्रसन्नता हो रही है कि वो आज भी जारी है। आकाशवाणी न केवल सक्रिय है बल्कि ये भी भूमिका को अदा कर रहा है और आज भी साहित्य को महत्व उतना ही दे रहा है। आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि हम इसका भाग रहे हैं, हिस्सा रहे, अंग रहे हैं।
0: 90 वर्षों का आकाशवाणी का सफर ये महज एक संख्या नहीं, बल्कि 90 वर्षों की सेवा, 90 वर्षों की साधना और 90 वर्षों की आवाजों का उत्सव है। भारत की आत्मा का संबंध उन भाषाओं से बहुत गहरा जुड़ा है जिन्हें हम जनजातीय भाषाएं या बोलियां कहते हैं। संथाली, गोंडी, भीली, मुंडारी, कुड़ुक, बोडो, ये सिर्फ भाषा या बोलियां नहीं है, ये जीवन दर्शन है। इन भाषाओं के साहित्य में मनुष्य की वो आदिम चेतना है जो आज के भौतिक युग में हम खोते जा रहे हैं। आदिम चेतना यानी वो बोध जो प्रकृति को माँ मानता है, जो नदी में देवत्व देखता है और जो पशु पक्षियों से संवाद करता है, जो धरती को केवल संपत्ति नहीं एक जीवित सत्ता मानता है। संथाली की लोक कथाओं में स्त्री की स्वतंत्रता का उत्सव है। गोंडी गीतों में वन और मनुष्य के बीच का वो रिश्ता है जो आज के पर्यावरण संकट के समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, जनजातीय भाषाओं का साहित्य और उनमें बसी मनुष्य की आदिम चेतना।
2: एक प्राचीन कहावत है, जब एक वृद्ध की मृत्यु होती है तो मानो एक पूरा पुस्तकालय जलकर राख हो जाता है। यही बात भारत की सैकड़ों जनजातीय भाषाओं के बोलने वालों पर भी उतनी ही लागू होती है।
3: भारत की जनजातीय भाषाओं में बसा साहित्य कागज के सफेद पन्नों का मोहताज नहीं रहा। ये तो एक ऐसी वाचिक विरासत है जो पुरखों की सांसों से होती हुई हमारी रगों तक पहुंचती है।

0: जब हम इन कथित हाशियों की भाषाओं के भीतर उतरते हैं तो पता चलता है कि यहाँ का साहित्य एक जीवित ज्ञान परंपरा है।
1: अरुणाचल की मिश्मी कहानियों में हवाओं के रुख को पहचानना हो या नीलगिरी की इरुला जनजाति के गीतों में छिपी जड़ी बूटियों का गहन रहस्य जानना हो तो प्रकृति के साथ जीवन ही एकमात्र तरीका है। चाहे वो लद्दाख के ब्रोकपा समुदाय के हजारों साल पुराने आर्य गीत हों, अंडमान की ओंगे जनजाति की लहरों को समझने वाली कथाएं, या मेघालय की खासी लोक कथाओं का मातृसत्तात्मक दर्शन, ये सब हमारी सामूहिक चेतना के शिलालेख हैं।
0: आज हमारे साथ इस विषय पर जुड़ रही हैं जनजातीय साहित्य और संस्कृति की जानी मानी विशेषज्ञ दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उमा मीणा।
2: सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जनजाति जो शब्द है ये भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक शब्द है, जबकि लोक प्रचलन में आदिवासी शब्द का प्रयोग होता है। आदिवासी समुदायों ने हजारों सालों के अपने जीवन के अनुभव, जो उनकी ज्ञान परंपरा जिसकी हम बात करते हैं उसमें उनके जीवन के अनुभव हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहने के कारण उसका ज्ञान है, ये ज्ञान है उनकी कहानियों में, गीतों में, परंपराओं में, उनकी जीवन शैली में, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है। मुख्य धारा का जो साहित्य है उसे दो भागों में हम मोटे तौर पे विभाजित करते हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लेकिन आदिवासी बुद्धिजीवी अपने साहित्य को हिंदी के लोक और अंग्रेजी के फोक लिटरेचर से अलग उसे ओरेचर कहते हैं, ओरल लिटरेचर, जो कि पुरखौती साहित्य है। और इनका जो मौखिक ज्ञान है ये लिपिबद्ध करने का काम अंग्रेज अध्येताओं ने किया था। 600 से ज्यादा आदिवासी भाषाएं हैं, 100 से अधिक भाषाओं में लिखित परंपरा है। बहुत सी ऐसी भाषाएं भी हैं जिनकी लिपि नहीं थी लेकिन दूसरी लिपि का इस्तेमाल किया गया, जैसे पूर्वोत्तर में बहुत सारा साहित्य रोमन स्क्रिप्ट में लिखा गया है। कुछ उदाहरण मैं देती हूँ। देखिए, मिशनरी पीओ बोर्डिंग ने संताल पुरखौती कथाओं का रोमन लिपि में प्रकाशन किया था 1924 में। W.G. आर्चर ने 1945 में संताल पुरखौती गीतों का संग्रह किया था। और अभी 2006 में अन्विता अब्बी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लुप्त प्राय स्वदेशी भाषाओं पर व्यापक शोध कार्य किया गया है। फादर हाफमैन द्वारा संकलित मुंडा गीतों का भी यहाँ जिक्र करना जरूरी है। जब मैं कहती हूँ कि एक भाषा में एक समाज का ज्ञान संरक्षित होता है तो मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी। राजस्थान, क्योंकि एक मरुस्थल क्षेत्र है, वहाँ बरसात का बहुत महत्व है। आप देखेंगे कि राजस्थानी भाषा में हर एक माह में होने वाली बारिश के लिए एक अलग शब्द है। वहाँ ऊंट के लिए 270 से भी ज्यादा पर्यायवाची शब्द मौजूद है। तो ऐसे में राजस्थानी संस्कृति को समझने के लिए उसकी भाषा को समझना और उसको सहेजना बहुत जरूरी है। अंडमान द्वीप समूह में एक भाषा है बो, जिसके बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। अंत में बोआ नाम की एक महिला बची जो उस भाषा को बोलती थी, समझती थी। उस भाषा का संरक्षण नहीं किया गया और 2010 में उसकी मृत्यु के साथ वो भाषा खत्म हो गई। आदिवासी साहित्य में स्वानुभूति बनाम सहानुभूति की बहस नहीं है, वहाँ अनुभव की आधिकारिकता पर बल है। और इसीलिए आप देखेंगे कि गैर आदिवासी लेखक भी इसमें शामिल है आदिवासी साहित्य में, जैसे संजीव हैं, राकेश कुमार सिंह, महुआ मांझी, गणेश देवी। और इसके साथ ही आप देखेंगे 90 के दशक के बाद आदिवासी भाषाओं में जो लेखक हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। रामदयाल मुंडा, हेराल्ड तोपनो, वॉल्टर भेंगरा, मंगल सिंह मुंडा, महादेव टोप्पो, निर्मल मिंज, अनुज लुगुन, हरिराम मीना, शंकर लाल मीना, और स्त्रियां भी आदिवासी लेखन में बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। आदिवासी समाज का चित्रण उनकी रचनाओं में बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। इनमें आप देख सकते हैं मंजू ज्योत्सना, वंदना टेटे, सरोज केरकेट्टा, एलिस एक्का, जसिंता केरकेट्टा, वासवी कीड़ो, जिन्होंने आदिवासी जो योद्धा महिलाएं हैं उनके बारे में एक बहुत अच्छी किताब उनकी निकली है। शांति खलको है, बिटिया मुर्मू है, सुषमा असुर है, बहुत सारे नाम है। सुशीला सामत जो कि पहली आदिवासी कवित्री और संपादक हैं और 1930 के दशक में लिख रही थी जब महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान लिख रही थी, लेकिन इनका कहीं जिक्र नहीं मिलता। सीता रत्नमाला जिनकी आत्मकथा जो अभी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगी है, 1968 में उनकी आत्मकथा लिखी गई थी और उससे पहले बहुत सारी कविताएं और नाटक उन्होंने लिखे हैं जो कि विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहे थे, लेकिन हिंदी के लोग उससे परिचित नहीं थे। हिंदी में परिचय तब होता है जब अश्विनी कुमार पंकज उनकी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद करते हैं।
1: अकादमिक समझ के साथ साथ इस साहित्य को जमीनी स्तर पर सहेजने की कोशिश भी उतनी ही जरूरी है। इसी सिलसिले में हमारे अगले मेहमान डॉक्टर करमचंद हंसदा बीते कई वर्षों से जनजातीय समुदाय के बीच काम कर रहे हैं।
3: जब हम जनजातीय साहित्य को करीब से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यह महज शब्दों का मेल नहीं बल्कि हमारे समाज के जीने का ढंग है। अक्सर हम बिरसा मुंडा को एक योद्धा के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में एक नए विचार विशेष की शुरुआत की थी जो सादगी और प्रकृति की पूजा पर आधारित था। साहित्यिक दुनिया में अगर हम देखें एलिस इका का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। वो हिंदी की पहली जनजातीय महिला कहानीकार मानी जाती है। वहीं निर्मला पुतुल जब वो आधुनिक समाज से सवाल करती है कि आपकी प्रगति हमारे विनाश की कीमत पर होगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में तैमसुला आओ जैसे लेखक हैं जिन्होंने नागालैंड की लोक कथाओं को दुनिया के सामने रखा। यह लेखक हमें सिखाते हैं कि जनजातीय समाज में कोई सुपर हीरो नहीं होता, यहाँ पर समुदाय ही नायक है। हमारी कहानियों में चींटी से लेकर हाथी तक और पहाड़ से लेकर नदी तक सबका बराबर का सम्मान है। आज जब हम जनजातीय साहित्य महोत्सव की बात करते हैं तो हम दरअसल इसी सामूहिक चेतना को बता रहे होते हैं। यह साहित्य समाज को बताता है कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं है। अंत में यही कहूंगा कि इन आवाजों को सुनना और पढ़ना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है।
0: जनजातीय साहित्य क्रांति की गर्जना, चेतना की पुकार, सशक्तिकरण का शंखनाद और प्रकृति के साथ मनुष्य के उस शाश्वत संवाद की अभिव्यक्ति है जो सदियों से अटल है।
1: असल में ये वो साहित्य है जहां एलिस इक्का की संवेदनाएं बोलती हैं और निर्मला पुतुल की कविताएं हमें उन इलाकों में ले जाती हैं जहां हमारी आदिम सभ्यता के गीत बस गए हैं। साहित्य भारती के लिए मैं नेत्रा
0: और मैं प्रांजल।
4: अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आकाशवाणी में उप महानिदेशक और वरिष्ठ प्रसारक रहे स्वर्गीय के नायर की पुस्तक उसने कुछ मुझसे कहा पर एक लघु चर्चा। एक किताब जब किसी के जीवन की कहानी हो तो वो केवल साहित्य नहीं रहती, वो एक धरोहर बन जाती है। उसने कुछ मुझसे कहा ये शीर्षक ही अपने भीतर एक पूरा संसार समेटे हुए है। किसने कहा, क्या कहा और सुनने वाला कौन था? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम आज इस पुस्तक के सबसे करीबी साक्षियों से बात कर रहे हैं। उनकी बेटियां सीमा सागर और सुजाता सहाय जिन्होंने विनोद सहगल के संगीत निर्देशन में अपने पिता की इन रचनाओं को सुरों में भी बांधा है। सुनते हैं ये बातचीत। सुजाता जी, आप पहले तो इस किताब के बारे में ही हमारे श्रोताओं को बताइए।
5: पापा सब जानते हैं कि वो बहुत ही मशहूर ब्रॉडकास्टर थे, बहुत नामी, बहुत ज्ञानी, बहुत जाने माने, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता था कि वो लिखते थे। एक दौर था जब वो मुशायरों में जाते थे बाकायदा, लेकिन फिर वो दौर कुछ दिनों बाद नहीं रहा, पर उनका लिखना चलता रहा। वो जो लिखते थे वो खुद के लिए लिखते थे, वो किसी को बहुत आसानी से ना सुनाते थे ना वो शेयर करते थे। जब उन्हें लगता था कि सामने वाला इस लायक है कि उसको सुनाया जाए तभी वो सुनाते थे। तो डायरियां थी उनकी बहुत सारी जिनमें वो लिखते थे, वो डायरियां खो गई, सामान इधर से उधर हुआ, तो जो भी हमें मिला, हमें कोई राइटिंग पैड, जिस उनको जहां जगह मिलती थी वो थोड़ा सा लिख लेते थे, तो जो जो हमें मिलता गया हम उसको इकट्ठा करते गए। परेशानी ये थी कि वो उर्दू में था। एक और परेशानी ये थी कि उन्हें स्ट्रोक हुआ 98 में, तो उसके बाद उनका हाथ हिलता था लिखने में, तो वो आम आदमी जो उर्दू पढ़ लेता था वो नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि वो जो लिखावट थी
6: रही
5: उसमें बहुत शेकी था। तो बड़ी किस्मत से हमें एक शायर साहब मिले, तो उन्होंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ। फिर उन्होंने किन्हीं के साथ, ये बहुत हाल ही की बात है, अभी शायद पिछले महीने की, उन्होंने उसको हिंदी लिपि में किया, मेरी बहन ने उसको एक किताब का रूप दिया, क्योंकि हम चाहते थे इतना खूबसूरत वो लिखते हैं, आप भी पढ़ेंगी तो आपको एहसास होगा कि कहाँ जा रहा है ये, तो आपको भी वो सोचने पे मजबूर करता है। तो हम चाहते थे कि ये जो भी उन्होंने लिखा है वो दुनिया तक।
6: सीमा जी, ये यात्रा कैसे शुरू हुई कि आपको कुछ पुराने लिखे हुए उनके कुछ मजमून मिले जिनको आपने सोचा कि आपको ये को पहले तो आपको लिप्यांतरण ही कराना पड़ा इसका कि वो उर्दू में थी, फिर आपको इसे देवनागरी में करना था, अच्छी खासी मशक्कत का काम था। तो सीमा जी आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जब आपके हाथ लगा, आपके पिताजी होते तो क्या चाहते इसे पब्लिश करना या नहीं?
7: पापा शायद ना चाहते, क्योंकि वो बहुत संकोच करते थे, जैसे सुजाता ने बताया कि अपनी शायरी भी वो बहुत गिने चुने लोगों को सुनाते थे। लेकिन मुझे एज अ डॉटर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये हमको दुनिया को, दुनिया के साथ ही शेयर करनी चाहिए इनकी शायरी, और इरादा हमारा बिल्कुल पक्का था, तो ये तो हमको काम करना ही था, और ये बहुत खूबसूरती से ये काम हुआ है।
6: और लगे तो ये सवाल भी पूछते चले, जैसे अभी हमें मौका मिला था कि कुछ दिनों पहले आपने जो एक आयोजन किया जहां आपने इनमें से कुछ चुनी हुई गजलों को, नज्मों को आपने संगीत में ढाला है और आपने गाया, आप दोनों बहनों ने उसमें स्वर दिए हैं अपने, और साथ में विनोद सहगल जी का भी साथ आपको मिला। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, आपको क्यों लगा कि ये संगीत में इसे ढाला जाना चाहिए, क्या इसके पीछे मोटिवेशन रहा?
7: जी बिल्कुल, हम दोनों को ये लगा कि इसे संगीत में डालना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि संगीत बहुत लोगों तक पहुंचता है। सब लोग शायद पोइट्री शायरी को ना पढ़ना चाहें, और लेकिन संगीत तो हर कोई सुनता है, और लगा कि इसको अगर हम संगीत में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये बहुत लोगों तक पहुंचेगा। इसमें जिनका सबसे बड़ा हाथ है वो है विनोद सहगल जी, जो अचानक ही एक प्रोग्राम के दौरान लखनऊ में मेरे फादर को मिले, और क्योंकि वो अंबाला में रहते हैं, मैं उनसे अक्सर मिलती रहती हूँ, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि सर आप जा रहे हैं लखनऊ तो आप उनको, मेरे फादर को जरूर मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा उन्हें मिलके। तो वो उन्होंने वक्त निकाला, वो घर गए, उनसे मिले, और बातचीत के दौरान ही उनको ये रियलाइजेशन हुई कि ये तो बहुत अच्छा लिखते हैं, और ये पोइट्री ऐसी है इतने खूबसूरती से मीटर में सेट है, तो इसको मैं, इसमें मैं म्यूजिक में इसको कंपोज कर सकता हूँ, वो ख्याल उनको आया। और बाद में जब वो वापस लौटे अंबाला तो उन्होंने ऐसे बात करा, इसका जिक्र किया, तो मुझे लगा कि हाँ क्यों ना हम ये काम करें। और देखते ही देखते वो खुद कहते हैं, ये उनके शब्द हैं, कि ये नैयर साहब की पोइट्री है, मैं इसे इतना प्रभावित हुआ कि मेरे अंदर से धुन अपने आप बनती चली गई, और ये तो पोइट्री का कमाल है कि इतनी खूबसूरत धुनें बन गई, और जब बन गई तो मुझे ख्याल आया कि इसको हम रिकॉर्ड क्यों ना करें।
6: आप लोग क्योंकि बहुत गहरे जुड़े हैं, ज्यादा गहरा जुड़ा क्या होगा, आप पैदा हुए उसी
5: माहौल में,
6: छत्र छाया में, तो आप ये बताइए कि आकाशवाणी का एज एन इंस्टीट्यूशन क्या था, अभी क्या है, और आपको क्या उम्मीदें हैं?
5: हम तो पले बड़े इसमें, बच्चों के प्रोग्राम करने से, फिर थोड़े बड़े हुए तो वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम करने से, फिर हर रात हम इंतजार करते थे हवा महल का, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स और पापा के प्रोग्राम्स तो हम सुनते ही थे, तो रेडियो तो चलता ही रहता था, कभी बंद ही नहीं होता था घर पे।
7: जो प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज ऑफ डिक्शन जो आकाशवाणी में है, जो आपके अनाउंसर्स हैं, आपके जो प्रोडक्शन इंजीनियर्स हैं, जो आप भाषा यूज करते हैं और किस तरह से आप उन शब्दों को कहते हैं, हम, मुझे याद है बचपन में जब मैं कोई गलत वर्ड यूज करती थी, मेरे फादर मुझे इमीडिएटली टोकते थे कि तुम ये गलत कह रही हो, और फिर मैं ध्यान से आकाशवाणी का प्रोग्राम सुनती थी कि अच्छा ये लव्स कैसे कहा गया, और मैं उससे सीखती थी। दैट वॉज माई बैरोमीटर, आई लर्नड लैंग्वेज, आई लर्नड डिक्शन
5: कल्चर
7: फ्रॉम कल्चर। सो आकाशवाणी इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया. जो युवा पीढ़ी है ये जिम्मेदारी उनके कंधों पे है कि वो इस ट्रेडिशन को, इस परंपरा को आगे ले जाए और बाखूबी ले जाए. ये बहुत जरूरी बात है.
8: बस एक आखिरी बात, आपने पूछा कि पापा क्या पापा चाहते कि ये किताब छपे, तो मैं कहती हूँ शायद वो मना करते, ऊपर से कहते नहीं नहीं ये मैं नहीं चाहता, लेकिन अंदर से वो बहुत,
7: वो दिली दिल बहुत खुश होते हैं कि ये सब गई है.
6: आपसे एक दरख्वास्त है कि आप लोग एक एक अपनी पसंदीदा कविता या नज़्म में अगर कुछ उसकी कुछ पंक्तियाँ आप हमें पहले सुझाता जी.
8: इसको पढ़ के मैंने सोचा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं. तो ये है वो पहली बारिश. जब जब आई बरखा रुत की पहली बारिश, भीगी भीगी बौर आई सी चले हवाएं, चेहरे को छूकर निकले गीले गीले पोरों से पलकें सहलाएं, बरखा भीगी सड़क लगे जब खाली खाली, तभी अचानक एक कोने में हंसते गाते धूम मचाते, सावन की पहली बूंदों का शगुन मनाते, आ जाएं अपने साई जी, लंबी पलकें प्यारी आंखें सावर चेहरा, चेहरे पर झूमे लहराए सावन, भीगी लंबी काली घट अलबेली हाथ में चिमटा, ताल से ताल मिलाएं. इसको पढ़ के मैंने सोचा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि हम जब बारिश आती है तो हम निकलते बाहर नहाते हैं खेलते हैं कूदते, ये साईं जी कौन है? मुझे लगा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा शायद साईं जी के बारे में बात कर रहे हैं. तो मुझे पता चला कि पुराने जमाने में जब बारिश होती थी तो एक उनको कहते थे मलंग, वो आते थे और उनका अटायर ये होती थी, लंबे बाल हाथ में चिमटा यहाँ रस्सियाँ कमर में रस्सियाँ, और वो नाचते गाते थे बारिश में, जैसे वो बारिश का ऐलान करने आते थे. तो मुझे इतनी खूबसूरत ये बात लगी, और जो है नहीं अब ना,
7: जिस पर ये किताब का शीर्षक भी दिया गया है उसने कुछ मुझसे कहा.
6: बिल्कुल सीमा जी स्वागत है.
7: उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, एक परिंदा सा उड़ा हो जैसे, नूर ही नूर फजा हो जैसे, फिर किसी लब पे दुआ हो जैसे, आज लगता नहीं पहले जैसा, आज लगता नहीं पहले जैसा, कोई पैबंद लगा हो जैसे. अक्स आईने में बदला बदला, अक्स आईने में बदला बदला, सामने गैर खड़ा हो जैसे, दूर जाते हुए कदमों के निशा, दूर जाते हुए कदमों के निशा, आके वो लौट गया हो जैसे. रात ने चौंक के देखा किसको, रात ने चौंक के किस देखा किसको, एक शोला सा उठा हो जैसे. ओस के कांपते मोती थामे, ओस के कांपते मोती थामे, बर्फ ही दस्ते दुआ हो जैसे.
6: क्या बात है.
7: वही मानूस पुराना बरगद, वही मानूस पुराना बरगद, कोई कुछ सोच रहा हो जैसे.
6: क्या बात है, बहुत खूबसूरत है. बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका, आप यहाँ आए, आपने हमें, हमारे सुनने वालों को कम से कम के नैयर साहब से कुछ तारुफ तो कराया जो नहीं जानते थे उन्हें, और जो हम जो नाम से उन्हें जानते थे उनसे थोड़ा और मिलवाया. बहुत शुक्रिया
7: आपका, बहुत शुक्रिया.
9: उसने कुछ मुझसे कहा नैयर साहब की खुद की आवाज, जिसने उनसे जीवन भर संवाद किया, और अब वो संवाद इस किताब के पन्नों में उतर आया है, सबके लिए, हमेशा के लिए. साहित्य जीवित रहे, भाषाएं जीवित रहें, और 90 वर्षों का आकाशवाणी का ये सफर यूं ही चलता रहे, इसी कामना के साथ साहित्य भारती का ये अंक अब संपन्न होता है. नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए. नमस्कार.

0: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में हम सिंधु सुचेतन और H.M. स्मिता का वायलिन युगलवादन प्रस्तुत कर रहे हैं। एक विशिष्ट संगीत परंपरा में जन्मी ये बहनें सुप्रसिद्ध वायलिन वादक विद्वान A.V. वेंकट नारायण की पौत्रियां हैं, जो संगीत कला निधि मैसूरती चौड़ैया के शिष्य थे। इस समृद्ध विरासत ने इनके लिए सुदृढ़ आधार प्रदान किया, किंतु निरंतर साधना और उत्कृष्टता की अनवरत खोज ने इन्हें आज के सफल कलाकारों के रूप में प्रतिष्ठित किया है। गान कला भूषण H.K. नरसिम्हा मूर्ति तथा विदुषी H.N. राजलक्ष्मी के मार्गदर्शन में और विदुषी पुष्पा श्रीनिवासन, श्री T.K. श्रीनिवासन तथा विख्यात वायलिन वादक विद्वान H.N. भास्कर के सानिध्य में इन्होंने ऐसी शैली विकसित की है जिसमें गहनता और गतिशीलता का सुंदर समन्वय है। आपका संगीत एक अनुभूति है जहां भावपूर्ण अभिव्यक्ति और तकनीकी कौशल का अद्भुत संगम होता है। वायलिन पर आपकी सशक्त पकड़ आपकी प्रस्तुति को एक विशिष्ट आयाम देती है, जिससे आपका संगीत अत्यंत भावपूर्ण और आकर्षक बन जाता है। अपनी कला के माध्यम से ये बहनें ऐसा संगीत अनुभव सृजित करती हैं जो श्रोताओं के हृदय को स्पर्श कर जाता है। अपनी उत्कृष्टता के लिए सम्मानित सिंधु और स्मिता आकाशवाणी बेंगलुरु की ए ग्रेड कलाकार हैं, और उन्होंने गायन तथा वायलिन दोनों ही विधाओं में लगातार सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए हैं। आपकी कला को मद्रास म्यूजिक अकादमी, अनन्या युवा पुरस्कार, युवा पुरंदर पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित M.S. सुबुलक्ष्मी फेलोशिप सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सिंधु और स्मिता केवल कलाकार ही नहीं बल्कि एक समृद्ध परंपरा की संवाहक हैं, जो कर्नाटक संगीत की अमर धरोहर को गरिमा, नवोन्मेष और समर्पण के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड H.M. स्मिता। Born into a distinguished musical lineage, the sisters are the granddaughters of the legendary violinist Vidwan A.V. Venkata Narayana, a direct disciple of Sangeeta Kalanidhi Mysore T. Chaudhaya. This rich inheritance laid a strong foundation, but it is their relentless pursuit of perfection that has shaped them into the accomplished artists they are today. Under the guidance of eminent gurus, like Gana Kalabhushana, Vidwan H.K. Narasimha Murthy and Vidushi H.N. Rajalakshmi, along with mentorship from Vidushi Pushpa Srinivasan, Sri T.K. Srinivasan and Vidwan H.N. Bhaskar, Sindhu and Smita have honed a style that seamlessly blends depth with dynamism. Their music is a journey where soulful bhava meets technical finesse. Their command over the violin adds a rare dimension, making their performances both immersive and distinctive. The sisters create an experience that resonates deeply with audiences. Recognized for their excellence, Sindhu and Smita are A-grade artists of Akashvani Bengaluru and have consistently earned top honors in both vocal and violin disciplines. Their artistry has been celebrated with prestigious awards, including accolades from the Madras Music Academy, the Ananya Yuva Puraskara, Yuva Purundara Award, and the distinguished M.S. Subbalakshmi Fellowship. Sindhu and Smita are torchbearers of a legacy, carrying forward the timeless beauty of Carnatic music with grace, innovation, and unwavering dedication.
0: आज के इस प्रसारण में आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं B.S. प्रशांत, घटम पर G. ओंकार राव।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट दे आर अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय B.S. प्रशांत, घटम बाय G. ओंकार राव।
0: सिंधु सुचेतन और H.M. स्मिता अपने वायलिन युगल वादन का आरंभ पटनम सुब्रमण्या अय्यर की रचना इरना पाई के साथ कर रही हैं। यह राग तोड़ी में आदि ताल पर निबद्ध है।
1: सिंधु सुचेतन एंड H.M. स्मिता बिगिन द वायलिन ड्यूएट रिसाइटल विद एरनपाई, अ कॉम्पोजिशन ऑफ पटनम सुब्रमण्य अय्यर इन राग तोड़ी सेट टू आदि ताल।

0: अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वे अब संत त्यागराज की रचना गिरिराज सुता प्रस्तुत करेंगी, जो राग बंगाला तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट दे विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा गिरिराज सुता इन राग बंगाला सेट टू आदि ताल।

0: राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सिंधु सुचेतन और एच एन स्मिता द्वारा वायलिन युगल वादन सुन रहे हैं। आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं बी एस प्रशांत, घटम पर जी ओंकार राव। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता अब प्रस्तुत करेंगी संत त्यागराज की रचना ललिते, जो राग भैरवी तथा आदिताल पर निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता। दे आर अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय बी एस प्रशांत, घटम बाय जी ओमकार राव। कंटिन्यूइंग द परफॉर्मेंस, Sindhu Suchetan and H.M. Smitha will now present Lalite, a composition of Saint Tyagaraja in Bhairavi Raga set to Adi Tal.

0: सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता प्रस्तुत करेंगी मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना मीनाक्षी। यह राग पूर्वी कल्याणी में आदि ताल पर निबद्ध है।
1: सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता विल नाउ प्रेजेंट मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदि ताल।

0: अभी आपने तानी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर बी एस प्रशांत और घटम पर जी ओंकार राव ने प्रस्तुत किया।
1: That was तानी आवर्तनम presented on मृदंगम by बी एस प्रशांत and on घटम by जी ओंकार राव।
0: सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता अपने वायलिन युगल वादन का समापन राग देश में तिलाना से करेंगी, जो विद्वान लालगुड़ी जयरामन की रचना है।
1: सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता विल कंक्लूड देयर वायलिन ड्यूएट रिसाइटल विद तिलाना इन राग देश, अ कॉम्पोजिशन ऑफ विद्वान लालगुड़ी जयरामन।

इसी के साथ राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में सिंधु सुचेतन और एचएम स्मिता का वायलिन युगल वादन संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर बीएस प्रशांत तथा घटा

0: पर जी ओंकार राव. विद दैट वी कंक्लूड वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक. दे वर अकॉम्पनीड ऑन मृदंगम.
1: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा. पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया. मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए. शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ.
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा. चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था. इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे. पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी. असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था. तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया. कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा.
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है. मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं. राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था. मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी. सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है. आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया. सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा. वोटों की गिनती 24 मई को होगी. छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए. इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई. पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालसुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी. प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है. श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है. हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है. इंडियन प्रीमियर लीग